राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः भारतीय विमानचालकेन कैप्टन स्मिथ मछार इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन संवादं कृतवान्। सः चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् अशीत्यधिकैकशतं यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृतविवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमन्त्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मिथः साहसेन यथासमयम् उचितनिर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमन्त्री स्मिथस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं सङ्कटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मिथः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः दूरभाषसंवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मैं अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल से पीछे और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी ऑफिसाई कर रहे, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका देश से मिलवौकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माणक्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु, आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलम्बीकर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुम् आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल

0: की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। कहा, इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का

0: स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
4: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही हैं। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50

0: महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीखकर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
0: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रखे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India calls for WTO compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agreed

0: और एशियन गेम्स में भारतीय तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम का मुकाबला फाइनल में मलेशिया से होगा। अब खबरें। भारत ने अमेरिका के शहर मिलवाकी में G20 के वज़रा तिजारत की मीटिंग के आखिरी दिन आलमी सतह पर तिजारत में बिगड़े हुए तौर तरीकों की तसहीह के मकसद से WTO के उसूलों पर अमल करने के लिए कहा है। तिजारत और सनत के वजीर ने मांग में कमी की वजह से सलाहियत के बावजूद अशिया को मुनज़्ज़म तरीके से कम तादाद में तैयार करने के बारे में कहा कि कई रुकन मुल्कों की तरह भारत को भी यही तशवीश लाहक है कि कुछ मईशतों में तिजारत के बिगड़े हुए तौर तरीकों से अशिया की भरमार और इनकी कीमत इंतहाई कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तशवीश WTO के लगातार इकदाम से दूर की जा सकती है, जिनमें अशिया की भरमार की रोकथाम और दरामदात पर टैक्स लगाना भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने खास तौर पर कहा है कि G20 रुकन मुल्कों के साथ भारत की तिजारत का इन्हिसार एक शफाफ बिला तफरीक और उसूलों पर मबनी तिजारती निज़ाम पर है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क का तरीका इस निज़ाम की जमानत है। उन्होंने यकीन दिलाया कि यही शर्तें सबसे छोटे कारोबारी और सबसे बड़े कारोबारी पर भी लागू होती हैं। आलमी सप्लाई चेन में लोगों से जबरदस्ती काम लिए जाने के बारे में जनाब गोयल ने कहा कि इस बुराई के खात्मे के तहत भारत का अज़्म कतई और गैर मशरूत है। वज़ीर मौसूफ ने उसूलों पर मबनी मुनसिफाना, मुसावियाना, बिला तफरीक, शफाफ, खुले, सबकी शमूलियत वाले और एक ऐसे कसीर मुल्की तजारती निज़ाम के तई भारत के अज़्म को दोहराया जिसमें WTO को मरकजी हैसियत हासिल हो। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए पॉलिसी साजी की गुंजाइश की अहमियत पर जोर दिया ताकि वो इतफाक राय के साथ किए गए फैसलों को बरकरार रखते हुए तरक्की कर सकें और आवाम की फलाह कर सकें। जनाब गोयल ने इससे अलग ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया और दीगर मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मीटिंग्स की। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: 7 मुल्कों के ग्रुप G7 ने 4 महीने में 10 करोड़ बैरल तेल जारी करने से इत्तेफाक किया है, जो ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने की एक कोशिश है, जिसके तहत इब्तदाई 20 दिन के दौरान डीजल की खातिर खास सप्लाई की जाएगी। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीका में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं, जिसे नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया पर दबाव में मजीद इजाफा हो गया है। जनाब ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों ने अपने जखीरों से बड़े पैमाने पर डीजल जारी करने और इस अमल को जल्द शुरू करने से इत्तेफाक किया था। यह ऐलान ट्रंप और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के दरमियान रात भर की गुफ्तगू के बाद किया गया है। मीटिंग के बाद फ्रांस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक बैनुल अक्वामी तवानाई एजेंसी IEA तेल जारी करने के अमल में तालमेल रखेगी। अक्वामी मुत्तहदा ने माहौल के लिए साजगार राहदारी के तीसरे मरहले GEC-SOM के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपए की भारत की तरफ से दी गई मंजूरी का खैर मकदम किया है। उसने कहा है कि ग्रिड को मजबूत बनाना और बैटरी स्टोरेज एक बड़ा कदम है जिससे मुल्क के अवाम और मईशत को बड़ा फायदा फराहम होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: आबोहवा की तब्दीली के उमूर से मुंसलिक अक्वामे मुत्तहदा के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील ने कहा कि माहौल के लिए साजगार तवानाई की राहदारी के तीसरे मरहले से भारत को बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की अपनी बढ़ती हुई सलाहियत में इजाफा करने, बिजली की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने और तवानाई के शोबे में खुद की एक आलमी रहनुमा के तौर पर शनाख्त कायम करने में मजीद मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई को भारत के बिजली के निज़ाम से मरबूत करने में मदद मिलेगी और इसके साथ साथ इक्तसादी तरक्की को भी मदद हासिल होगी। जनाब स्टील ने खास तौर पर तवानाई की यकीनी फराहमी और इक्तसादी तरक्की के ज़िम्न में भारत जैसी बड़ी मईशतों के लिए बैटरी स्टोरेज की दिफाई अहमियत को भी उजागर किया। मरकजी काबीना ने GEC-SOM को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1,86,405 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें 54,082 करोड़ रुपए मरकज़ की तरफ से हैं, जिसका मकसद बैन रियासती तरसीली निज़ाम को मुस्तहकम बनाना और बैटरी तवानाई स्टोरेज निज़ाम की तैयारी में मदद फराहम करना है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स सभी तरह के तिब्बी इलाज में एक अहम आलाकार बन सकती है, जिसे तशखीस, इलाज मुआलजे और थेरेपी में इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोटिक सर्जरी की सोसाइटी की बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि

0: हमने इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रूपए तक की इनकम कर ली।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज दूध की पैदावार और डेयरी के शोबे के फरोग के लिए एक अहम प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह और वजीर आला डॉ मोहन यादव गौ पालक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आज रियासती सतह पर गौ पालक सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है, जहां उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इज्तम से खिताब करेंगे। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जनाब अमित शाह मवेशी परवरी के शोबे में नुमाया कारकर्दगी करने वाली खवातीन के इज्जत अफजाई करेंगे, जहां जनाब शाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के मुस्तफिदीन को मंजूरी नामे भी तकसीम करेंगे। उम्मीद है कि इस तकरीब में 35,000 से ज्यादा मवेशी परवर और डेयरी की इमदाद बाहमी अंजुमनों के अरकान शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, विदिशा और दीगर जिलों के मवेशी परवरी से वाबस्ता काश्तकार शिरकत करेंगे। भोपाल और इंदौर की दूध की यूनिटों से वाबस्ता दूध की पैदावार करने वाले किसानों को बोनस रकम की अदायगी भी की जाएगी। इस मौके पर उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से एक डेयरी प्लांट और भोपाल में दूध की पैदावार से मुतालिक एक मरकज समेत कई डेयरी प्रोजेक्टों का आगाज किया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा खित्ते में बागबानी के आलमी मरकज से बागबानी के शोबे को इस्तेकाम हासिल होगा और किसानों के लिए बेहतर मौके पैदा होंगे। मोहतरमा सीतारमन ने कल अन्नामैया जिले के मदनापल्ले इलाके में रायलसीमा आलमी बागबानी मरकज के प्रोजेक्ट और जरात के भारतीय स्कूल का संगे बुनियाद रखा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और नायब वजीर आला पवन कल्याण भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर खजाना ने कहा कि मरकज और रियासत आंध्र प्रदेश को बागवानी के एक बड़े मरकज के तौर पर तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पानी के बेहतर बंदोबस्त, जदीद टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की जरूरत को उजागर किया ताकि किसानों की मदद की जा सके और उनकी आमदनी को बेहतर बनाया जा सके। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय जहाजरानी की कॉरपोरेशन से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क को जहाज साजी और बहरी सलाहियत में आलमी मुसाबिकत पैदा करने और खुद कफील बनाने में कायदाना रोल अदा करे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फाल होने के 65 बरस मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने भारत के तवानाई और तिजारती सिक्योरिटी, खासतौर पर आबनाए हुरमुस के हालिया बहरान के हवाले से कॉरपोरेशन के नुमाया रोल को उजागर किया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत भारत के 2047 तक जहाज साजी और जहाजरानी में नुमाया ताकत बनने के लिए एक मजबूत

0: आते हैं आपके लिए ऐसे डॉक्टर्स, ऐसी सलाह जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकती है। तो बिल्कुल, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस मौसम में खास तौर पर होती हैं, और ये बीमारियां जब हर आयु वर्ग को प्रभावित करती हैं तो हम कैसे इससे बच सकते हैं, इसको भी जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। आज इसी विषय पर हम लेकर आए हैं जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं मेडिकल ऑफिसर CGHS में डॉक्टर रेहान चौधरी। आपसे बात कर रही हैं रश्मि गुप्ता। विषय है बदलते मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मौसम में बदलाव अपने साथ बहुत सी परेशानियां लेकर आता है। वातावरण में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे यह है कि मौसम के बदलने के साथ ही आम व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये कमजोर इम्यूनिटी की वजह से होता है या फिर हमारे लाइफस्टाइल और एक्सपोजर में बदलाव का नतीजा है?
2: देखिए, मौसम बदलने पर होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण केवल कमजोर इम्यूनिटी नहीं, इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में बदलाव हो जाता है जिसके कारण हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो थोड़ा और सेंसिटिव हो सकता है। साथ ही मौसम बदलने पर वायरस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन भी बढ़ सकता है, खासकर जब लोग बंद या क्राउडेड जगहों में ज्यादा समय बिताते हैं। इसके अलावा डस्ट हो गया, पोलन हो गया, पोल्यूशन हो गया और अचानक टेम्परेचर चेंजेस कुछ लोगों में एलर्जी या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं।
1: तो जैसे मौसम बदलता है तो अक्सर लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, क्या इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें होती हैं?
2: बिल्कुल, मौसम खराब होने पर लोग अक्सर आउटडोर एक्टिविटी और जो एक्सरसाइज होती है वो कम कर देते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी कम नहीं करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज हमारी कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फिटनेस को मेंटेन करने में मदद करता है और साथ ही मूड तथा स्लीप क्वालिटी पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए मौसम बदलने पर एक्सरसाइज पूरी तरह बंद करने के बजाय एक्टिविटी को परिस्थिति के अनुसार मॉडिफाई करना चाहिए। आउटडोर एक्सरसाइज संभव न हो तो इनडोर वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या होम वर्कआउट किया जा सकता है।
1: तापमान में अचानक से उतार चढ़ाव जब होता है तो क्या इसके पीछे या इसकी वजह से इसका असर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है?
2: बिल्कुल, टेम्परेचर में जब भी बदलाव होता है तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी उसके साथ प्रभावित होता है। ठंडे वातावरण में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है जिससे कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ सकता है। साथ ही जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी हाइपरटेंसिव के पेशेंट हैं और कार्डियक डिजीज के जो पेशेंट हैं उनमें अचानक बहुत गर्म वातावरण से बहुत ठंडे वातावरण या इसके उल्टे जाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बार बार बीपी या हार्ट रेट में सिग्निफिकेंट बदलाव महसूस हो रहा है तो उसे केवल मौसम के कारण मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा, जिन लोगों को अस्थमा है या सांस से संबंधी पहले से ही कोई परेशानी है तो उन मरीजों को इन दिनों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
2: अस्थमा पेशेंट जो होते हैं उनको सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि जो प्रिस्क्राइब्ड उनके मेडिसिन हो गया या जो इनहेलर्स जो वो ले रहे हैं वो नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। साथ ही जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, पोल्यूशन हो गया, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स और बहुत ठंडी हवा जैसे ट्रिगर से बचने की कोशिश भी करनी चाहिए।
1: जी, जनरली होता क्या है कि कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो आम आदमी ये समझ नहीं पाता कि ये वायरल इन्फेक्शन है या एलर्जी है। जैसे आपने अभी बताया पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं या पोल्यूशन की वजह से भी होता है, तो ये कैसे पहचाने कि सिंपल वायरल इन्फेक्शन है या एलर्जी?
2: देखिए, इसका डिफरेंशिएशन का ये रहता है कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है आमतौर पर वो सोर थ्रोट कोज करता है, साथ ही कफ हो गया, फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया और कभी कभी नेजल सिम्टम्स भी होते हैं। ये अक्सर कुछ दिनों में धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। जबकि जो एलर्जी होती है, एलर्जी में क्या होता है, बार बार छींक आना, साथ में नाक या आंखों से ईचिंग होना, वाटरी आईज होना और क्लियर जो वाटर नेजल डिस्चार्ज जो होता है वो ज्यादा कॉमन होता है। आमतौर पर हाई फीवर या सिग्निफिकेंट बॉडी एक नहीं होता और कई बार जो सिम्टम्स होते हैं वो दोनों के ओवरलैप भी हो सकते हैं।
1: अच्छा, कौन से ऐसे सिम्टम्स हों कि जब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है?
2: देखिए, अगर बार बार सोर थ्रोट हो रहा है, बुखार जो है कई दिनों से है ठीक नहीं हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे सिम्टम्स में अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
1: कितने दिन तक मतलब ये सिम्टम्स रहे?
2: लगभग जैसे 5 से 7 दिन में रेगुलर जो होता है रिकवरी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर सीवियर वीकनेस है, डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत थ्रोट हो रही है, अगर ये सिंपल दवाई लेने के बाद भी अगर हम नॉर्मली हमें सोर थ्रोट के लिए गार्गल्स वगैरह करना चाहिए, अगर 5 से 7 दिन में ये अगर ठीक नहीं होता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
1: अच्छा, जैसे आपने बताया कि सिंपल यदि वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो क्या इनके लिए कोई घरेलू उपचार भी है कि जब शुरुआत में हमें पता चले या हमें महसूस हो कि

0: गला खराब है या कोई इस तरह की दिक्कत हो रही है बदलते मौसम की वजह से, तो उस समय कौन से घरेलू उपचार लिए जा सकते हैं कि बिना डॉक्टर के पास जाए वो पहले ही ठीक हो जाएं?
1: बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर हमें लेना चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी जिसको बोलते हैं, साथ में सोल्ट वाटर से गार्गल्स करने चाहिए, स्टीम लेना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन होना चाहिए कि पानी हम बराबर पीते रहें। अगर इन चीज़ों का रेगुलर हम ध्यान रखेंगे तो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है।
0: अच्छा, बहुत से लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं या ले लेते हैं, मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं, तो अपने आप से वो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स भी ले लेते हैं, ये कितना सही है और कितना जरूरी है?
1: देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर मौसम बदलने पर मल्टीविटामिन या इम्यूनिटी सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तब उनको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही सप्लीमेंट लेना चाहिए, और एंटीबायोटिक को तो बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन कोल्ड होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है और जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, तो ऐसे में तो एंटीबायोटिक का अननेसेसरी यूज करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी होते हैं, तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर या बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं लेना चाहिए।
0: तो अच्छा, एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, घरेलू उपचार से भी आप ठीक कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा वैक्सीनेशन है या कोई ऐसी वैक्सीन है जो बदलते मौसम से पहले ली जा सकती है?
1: देखिए, वैक्सीनेशन की बात करें तो जो बच्चे होते हैं, जो यंगर बच्चे होते हैं, उनमें हमें जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनमें कोमोर्बिडिटीज है, जैसे वो हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है या उनको कोई कार्डियक डिजीज है, तो उनमें तो वैक्सीनेशन ईयरली वैक्सीनेशन दिया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गया और निमोकोकल वैक्सीन हो गया। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है बेसिकली जो फ्लू इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, और जो निमोकोकल वैक्सीन है वो लंग इन्फेक्शन वगैरह को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, तो ये एल्डरली और कोमोर्बिड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें दी जाती है।
0: और जो बहुत ही छोटा बच्चा जो जस्ट अभी जिसका बर्थ हुआ है, कुछ एक महीने का है, तो क्या उनके लिए भी कोई स्पेसिफाई वैक्सीनेशन या कोई ऐसा उनकी केयर की जा सके?
1: बिल्कुल, जो छोटे बच्चे हैं उनमें तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है हमारा जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है वो फॉलो होता है, उनको रेगुलर वैक्सीन दी जाती है। बाकी उनके एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो चेंजेस में नहीं ले जाना है कि एक्सट्रीम ठंडे से गर्म टेम्परेचर में ले गया, गर्म टेम्परेचर से ठंडे में ले गए, तो ये सब अवॉइड करना है ये चीज।
0: अच्छा, जैसे आपने भी बताया कि गर्म से ठंडे में एकदम नहीं जाना है और ठंडे से गर्म में नहीं आना है, इन दिनों एसी का टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना चाहिए कि शरीर पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े? क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बड़े अपने हिसाब से एसी का टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, एसी का जो टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर इस टाइम 24 से 26 डिग्री हमें रखना चाहिए, जो कि एक कंफर्टेबल टेम्परेचर है। बहुत ठंडे एसी रूम से अचानक गर्म और ह्यूमिड आउटडोर एनवायरनमेंट में जाने से टेम्परेचर शॉक जैसा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, खासकर जो कि जिनका रेस्पिरेटरी ट्रैक सेंसिटिव होता है। साथ ही जो एसी होता है उसकी रेगुलर क्लीनिंग और जो फिल्टर मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
0: जी, तो मतलब एसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है प्ले करता है बदलते मौसम में
1: बिल्कुल,
0: किसी भी व्यक्ति के लिए। अच्छा सर, बहुत सारी हमने बातें की, सिम्टम्स भी आपने बताए, लेकिन खास तौर पे जो लोग जिम जाते हैं और बदलते मौसम में वो अपना वर्कआउट उन्हें चेंज करना चाहिए या किस तरह से वो वर्कआउट करें कि बदलते मौसम में उनके बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, उनके लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखिए, मौसम बदलने पर जिम बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉडी को अचानक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी देने से बचें। वर्कआउट से पहले प्रॉपर जो वार्म अप होता है वो करना जरूरी है, और एक्सरसाइज के दौरान ना जो हाइड्रेशन होता है उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। अगर आपको फीवर है, बॉडी एक है, चेस्ट सिम्टम्स है या एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, तो वर्कआउट थोड़े समय के लिए आप वर्कआउट को बंद कर सकते हैं, फिर वापस से एक बार रिकवरी हो जाए तो फिर वापस स्टार्ट कर सकते हैं। हेल्दी व्यक्ति के लिए जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और मोबिलिटी एक्सरसाइज का बैलेंस कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है।
0: अपनी डाइट में किसी भी व्यक्ति को ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए कि वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सके और बीमार ना पड़े?
1: देखिए, कोई एक मैजिक फूड इम्यूनिटी को ओवरनाइट स्ट्रांग नहीं बनाता है, हमें ओवरऑल बैलेंस डाइट पर ध्यान देना चाहिए,
0: जी।
1: जैसे डाइट में प्रोटीन हो गया, डाइट में फ्रूट हो गया, सीजनल वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन हो गया, पल्सेज हो गया, नट्स हो गया, और सीड भी शामिल करना चाहिए। वाइटामिन और मिनरल रिच फूड जैसे सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स लें। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड जैसे एक्सेस शुगर हो गया या फ्राइड फूड वगैरह को लिमिट करना ज्यादा बेहतर रहेगा।
0: अच्छा, कुछ लोग इन दिनों में पानी पीना कम कर देते हैं, कुछ तो प्यास ही कम लगती है, ये भी एक वजह होती है, तो ये कितना सही है?
1: बिल्कुल नहीं, ठंड या बारिश के मौसम में थर्स्ट जो होती है, अपने को जो प्यास होती है वो कम लग सकती है, लेकिन शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत तो फिर भी रहती है, तो इसलिए थर्स्ट का इंतजार किए बिना पूरे दिन एडिक्वेट फ्लूइड लेते रहें, पानी के अलावा।

0: सूप हो गया, दूध हो गया, या फिर हेल्दी फ्लूइड भी साथ में ले सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की वाटर रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ जो किडनी के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, और जो कोई मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, उनको अपनी डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही फ्लूइड में चेंजेस करने चाहिए।
1: मौसम बदल रहा है और इस वक्त कुछ लोग अपनी एक्सरसाइज रूटीन को चेंज कर देते हैं या फिर एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है?
0: जी बिल्कुल, अगर व्यक्ति हेल्दी है तो सिर्फ मौसम बदलने की वजह से एक्सरसाइज बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हमारी ओवरऑल फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें मौसम और अपनी बॉडी की कंडीशन के अनुसार एक्सरसाइज को मॉडिफाई करना चाहिए।
1: तो इस वक्त इंडोर एक्सरसाइज ज़्यादा सही रहती है या बाहर जाकर भी की जा सकती है?
0: देखिए, अगर सुबह मॉर्निंग में अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंडोर एक्सरसाइज, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, इंडोर कर लें। जैसे बाहर का तापमान, जो टेम्परेचर है, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो हम आउटडोर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
1: और जो लोग अस्थमेटिक हैं या किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं पहले से, उनके लिए कितना सही है एक्सरसाइज करना और खास तौर पे सुबह के समय करना? जैसे कुछ लोगों को सुबह की सैर की बहुत आदत होती है, लेकिन मौसम बदलने के साथ ही थोड़ा उन्हें वो सोच में डूब जाते हैं कि उन्हें वो जाएं बाहर या नहीं जाएं।
0: देखिए, जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर कोल्ड टेम्परेचर हो गया, डस्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो एक तरीके से ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो इन्हें कोशिश करना चाहिए, अगर बाहर का पॉसिबल नहीं है, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये घर के अंदर ही नॉर्मल वॉकिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब घर के अंदर कर सकते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है फिर ये बाहर एक्टिविटीज़ अपनी, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज इनको नहीं करनी है।
1: डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी बातें बताई बदलते मौसम में किस तरह से व्यक्ति अपने शरीर का रख रखाव करे, डाइट में क्या चेंजेस करे, तो जो लिसनर्स, जो श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं लिसनर्स को यही कहना चाहूंगा कि मौसम बदलना अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन यह हमारे शरीर और रूटीन के लिए एक एडजस्टमेंट पीरियड जरूर होता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप हो गया, डाइट हो गया, हाइड्रेशन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी जो होता है उसको रेगुलर रखें, मौसम के अनुसार कपड़े पहने, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन से बचें, डस्ट और पोल्यूशन से एक्सपोजर कम करें, और हाथों की हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप अस्थमेटिक हो या क्रोनिक डिजीज है तो रेगुलर मेडिकेशंस लें, और सिम्टम्स बढ़ने पर टाइमली मेडिकल एडवाइस लें। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है, छोटी समस्या पर एंटीबायोटिक्स या अननेसेसरी सप्लीमेंट जो होता है वो ना लें। अगर हम सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करें तो अपने रूटीन को मौसम के अनुसार थोड़ा अडेप्ट करें, तो चेंजिंग वेदर में भी हम हेल्दी, एक्टिव और फिट रह सकते हैं।
1: तो आज डॉक्टर रेहान चौधरी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने बदलते मौसम में किस तरह से एक आम व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य समस्या से निजात पा सकता है, इस पर चर्चा की। डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आए और आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
2: बदलते मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल, अभी आप डॉक्टर रेहान चौधरी से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आप मेडिकल ऑफिसर हैं CGHS नई दिल्ली में। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
2: श्रोताओं, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जो रक्त में असामान्य कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके लक्षणों और उपचार के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनामिका बाकलीवाल। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, और भेंट करता है राज लक्ष्मी स्वाई।
4: ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, क्या ये बीमारी वाकई उतनी जानलेवा है जितनी मानी जाती है? आज के दौर में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे लेकर क्या क्या नई खोजें और उपचार आए हैं, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी बेहद खास मेहमान डॉक्टर अनामिका बाकलीवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू मैम।
4: मैम, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बहुत ही सरल शब्दों में बताइए कि ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर क्या होता है, ये हमारे शरीर में कैसे पनपता है?
5: देखिए, ल्यूकेमिया जो है वो अमूमन दो प्रकार का होता है, एक होता है अक्यूट ल्यूकेमिया, एक होता है क्रॉनिक ल्यूकेमिया। यानी अक्यूट ल्यूकेमिया ऐसे टाइप का ब्लड कैंसर होता है जो अचानक से होता है, यानी इसके कोई ऐसा नहीं कि किसी को एक या डेढ़ साल से प्रॉब्लम है तो हम उसे अक्यूट ल्यूकेमिया बोलेंगे। एक या डेढ़ महीने में ही इसके सिम्टम्स एंड साइंस दिखते हैं, इसलिए उसे अक्यूट बोलते हैं। क्रॉनिक ल्यूकेमिया वो होता है जो एक या डेढ़ साल से किसी पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स है और वो तब हमारे पास आता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्लड कैंसर। सो अक्यूट ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है, हमारी अस्थि मज्जा जो होती

0: तीन तरीके की सेल कोशिकाएं होती है, लाल, पीली और सफेद। तो ये जो सफेद कोशिका का कैंसर होता है, जो दो प्रकार का हो सकता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक।
1: मैम आपने बताया कि ब्लड कैंसर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या ये बच्चे और बड़ों दोनों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं?
0: यस, ये बच्चे और बड़े दोनों को अलग अलग तरीके से इसलिए प्रभावित करते हैं क्योंकि बच्चे और बड़ों में इनका प्रोग्नोसिस यानी आउटकम बहुत डिफरेंट होता है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया दो टाइप के कैंसर होते हैं, अक्यूट और क्रॉनिक, तो दोनों ही अलग तरीके से बिहेव करते हैं।
1: तो आमतौर पर इसके शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर सकते हैं?
0: देखो, कोई भी ऐसा बुखार जो लंबे समय तक यानी 3-4 हफ्ते तक कंटिन्यूसली चल रहा है और नॉर्मल पैरासिटामोल लेने के बाद या डॉक्टर को दिखाने के बाद एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करने के बाद भी नहीं जा रहा हो, वो सबसे पहला सिम्टम या लक्षण हो सकता है। दूसरा, एक्सेसिव थकान महसूस होना। थकान इस तरीके की कि आप अगर अपनी आम जिंदगी में किचन में काम करना, ऑफिस में काम करना, इन सब चीजों में भी थकना शुरू हो जाए, तो एक्सेसिव टायर्डनेस या फटीगेबिलिटी। तीसरा, कहीं से खून आना, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन लाइक जबड़ों से खून आना, लैटरिन से खून आना, पेशाब से खून आना, किसी भी बॉडी पार्ट से खून आना, या स्किन पे पर्पल ब्रूजेज या पेटीकी, ऐसे कोई साइंस एंड सिम्टम्स दिखना। चौथा, इनवॉलंटरी वेट लॉस, यानी जिस वेट लॉस के लिए आपने कुछ किया नहीं और अचानक से खुद ही हुआ। एंड हाउ मच वेट लॉस, ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर बॉडी वेट इज लॉस्ट। एंड पांचवा, जो एक सिम्टम है जो काफी लोग मिस कर देते हैं, विच इज ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, यानी इतना पसीना आना रात में कि चादर भीग जाए, दैट इज कॉल्ड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। और बच्चों में खासकर और इवन बड़ों में लास्ट सिम्टम मैं बोलना चाहूंगी, बोनी पेन्स, मतलब इतना दर्द होता है शरीर में जिसको हम थकान थकान बोलते रहते हैं, बट दैट इज नथिंग बट बोनी पेन।
1: इन बीमारियों को मैम अगर शुरुआती लक्षणों को हम पकड़ लें तो क्या ब्लड कैंसर के समय ये अर्ली डायग्नोसिस से इसकी रिकवरी के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं?
0: देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि इसके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें ना कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। जैसे ब्रेस्ट कैंसर या कोलोन कैंसर में हम मैमोग्राफी या कोलोनोस्कोपी रेकमेंड करते हैं, इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। इन लक्षण जो मैंने आपको बताए, साइंस एंड सिम्टम्स, इन्हीं का प्रमुख तौर पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई पेशेंट हमारे पास इन सिम्टम्स और साइंस को ध्यान देते हुए पहले पहुंच गया तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी और समय पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट ने इसका ध्यान नहीं दिया और हमारे पास एकदम एंड में पहुंचा तो ऑफ कोर्स इट विल बी मोर फेटल।
1: तो मैम आपने कहा कि इसमें कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, तो किस प्रकार के हम टेस्ट करते हैं जिससे इसका डायग्नोसिस हो सके कि ये बीमारी ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया को ही पॉइंट आउट कर रहा है?
0: सो पहली बार जैसे मैंने बोला, स्क्रीनिंग नहीं हो सकती, तो पेशेंट कोई स्क्रीनिंग से पता नहीं कर पाएगा। अब जब पेशेंट इन साइंस एंड सिम्टम्स के पास हमारे पास पहुंचेगा तो सबसे एक बहुत ही सस्ता टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जो सब लोग जानते हैं आजकल, CBC। वो अगर हम कराएंगे और अगर वो किसी अच्छे पैथोलॉजिस्ट ने देखा है तो यू नो दे कैन फाइंड आउट कि इसमें कोई कैंसर सेल्स हैं, यानी ब्लास्ट सेल्स जिसको कहते हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स ऑफ ल्यूकीमिया जिनको कहते हैं। अब कई बार कंप्लीट ब्लड काउंट में भी ये प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ सकती, जिसके लिए हमें बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी करने की जरूरत होती है, जिसे अस्थि मज्जा का टेस्ट कहते हैं। आपके रेडियो प्रोग्राम के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग इस टेस्ट को कराने से डरते हैं और एक गलत नोशन रखते हैं कि बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है। नॉट एट ऑल, इससे बिल्कुल कैंसर नहीं फैलता है और इससे ना इसमें दर्द होता है, इसे स्पेशलिस्ट करते हैं, इसमें थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है, बट आपका प्राइमरी डायग्नोसिस इसी से होगा।
1: तो कैंसर से जुड़ा एक टर्म है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, वो है कीमोथेरेपी। पिछले कुछ साल से कैंसर के इलाज में भी काफी बदलाव आया है, तो आज के टाइम पे क्या ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी का कितना रोल है और क्या इसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव है?
0: अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, मैं कहूंगी बच्चों के ब्लड कैंसर में या एडल्ट के ब्लड कैंसर में भी। बहुत सारे नए नए चीजें आती रहती हैं, बट ये एक ऐसी चीज है कीमोथेरेपी जो एक मतलब कहते हैं लैंडमार्क ट्रीटमेंट है ब्लड कैंसर का। और बच्चों में तो मतलब इसका, अगर किसी को अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया नाम का ब्लड कैंसर है तो इसका प्रोग्नोसिस 90% तक है, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड द चांसेस ऑफ ब्लड कैंसर कमिंग बैक आर वेरी लेस। ऑफकोर्स इसके बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम इतने छोटे से प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते, बट द ट्रीटमेंट हैज वेरी गुड प्रोग्नोसिस।
1: तो दैट मीन्स कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो ऐसे असरदार तरीके हैं जिससे हम ल्यूकेमिया को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं।
0: इनफैक्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तो बच्चों में जरूरत ही नहीं पड़ती है। ALL ऐसा ब्लड कैंसर है जिसमें आई से ओनली 5-7% ऑफ केसेस माइट रिक्वायर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अगर उनको हाई रिस्क डिजीज है या फिर रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी यानी बार बार जिद्दी टाइप का कैंसर है, कीमोथेरेपी से भी वो ठीक नहीं हो रहा, तब उनमें ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। एडल्ट्स में अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में और कुछ पेशेंट्स में अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
1: मैम इन दोनों ही तरीके के ल्यूकेमिया में क्या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का भी, जो आधुनिक तकनीकें हैं आजकल हमारी चिकित्सा प्रणाली में, तो उसमें कितनी राहत मिलती है मरीजों को?
0: यस, बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा करके एक बीमारी होती है जो ब्लड कैंसर ही होता है, जो हमारे ब्लड के गांठों की बीमारी होती है। लिम्फोमा नाम ही आप समझ रहे हो, नाम से ही पता लग रहा है।
1: गांठें मैम शरीर के किन?
0: सो बेसिकली लिम्फ नोड्स हैं हमारी बॉडी, हम सबकी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं, राइट? उन्हीं लिम्फ नोड्स में अगर अचानक से कैंसर सेल्स प्रोलिफरेट करने लगे, इस तरीके के कैंसर को हम लिम्फोमा कहते हैं। और डीएल LBCL, diffuse large

0: से लिम्फोमाइन सब में तो बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज यूज होती हैं, इवन एएमएल एएलएल में इनका बहुत अच्छा और प्रभावशाली रोल है. रिटुक्सिमैब नाम की एक दवाई है दैट एक्चुअली स्टार्टेड द रेवोल्यूशन फॉर इम्यूनोथेरेपी. ये टारगेटेड ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिक टारगेट्स पे काम करती हैं, यानी जब हम बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी करते हैं और उनमें वो टारगेट्स लगाते हैं, तो अगर किसी का CD20 पॉजिटिव कैंसर है तो वो दवाई उस पर काम करेगी. ऐसी अलग अलग टारगेटेड थेरेपीज अलग अलग मार्कर्स पे काम करती हैं, एंड यस इनका बहुत अच्छा रोल है.
1: मैम आपने जेनेटिक डिजीज का नाम आपने बोले थे, तो इसमें क्या ये जो ब्लड कैंसर है ये हमारे अनुवांशिक हो सकते हैं, क्या जेनेटिक हो सकता है, और या फिर हमारी लाइफस्टाइल जो आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम लोगों ने फूड हैबिट्स चेंज कर लिए, स्लीप हैबिट्स चेंज कर लिए, उसका कितना रोल है किसी भी कैंसर या स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर के?
0: देखो इस थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. बहुत सारे लोग ओपीडी में आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स बहुत गिल्टी होते हैं अनफॉर्चुनेटली जब उनके बच्चे को ब्लड कैंसर डायग्नोस होता है, तो पहला क्वेश्चन उनका होता है हम बहुत मोबाइल यूज करते हैं इससे तो नहीं होता. तो बिल्कुल भी मोबाइल यूज करने से या उसके रेडिएशन से ब्लड कैंसर नहीं होता, ना ही किसी पर्टिकुलर तरीके के खान पान से, क्योंकि हम सब सेम ही हवा में रह रहे हैं, सेम ही चीज खा रहे हैं, तो ब्लड कैंसर का इससे कोई लेना देना नहीं है. जहां तक जेनेटिक की बात है, जेनेटिक्स प्ले अ वेरी वेरी स्मॉल रोल इन दीज काइंड ऑफ ब्लड कैंसर. हाँ, हम सबकी बॉडी में वो म्यूटेशन है, अब वो म्यूटेशन कब प्रोलिफरेट होने लगे और कब वो एक कैंसर का रूप ले लें वो कोई नहीं जानता. सो अक्यूट ल्यूकीमिया अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट अ वेरी मेजर एसोसिएशन विद दीज जेनेटिक्स. जब हम बोन मैरो करते हैं तब जब कुछ टेस्ट हम जेनेटिक मार्कर्स के लिए भी भेजते हैं और उसी से प्रूफ होता है वेदर इट्स स्टैंडर्ड रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क, उसी के बिहाफ पे हम पेशेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं.
1: इसी से जुड़ा एक और सवाल कई महिलाओं के मन में स्पेसिफिकली आता है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग से अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो क्या कैंसर होने की संभावना घट जाती है? और इसी के साथ एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी कि कोई प्रेग्नेंट महिला है प्रेगनेंसी के दौरान और अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है?
0: पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि यस, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, ये स्टडीज कई बार हो चुकी हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की रेट्स उन महिलाओं में कम होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं. बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने नहीं कराया उसमें वो रेट ज्यादा हो जाएगी, वो उसी सब स्टैंडर्ड रेट पे रहते हैं, बट जो कराती हैं उनमें डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर की रेट्स कम होती हैं. कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि क्या कोई महिला व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद ब्लड कैंसर तो वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है? देखो हमारा पहला टारगेट ये होता है कि मदर एकदम प्रोटेक्टिव रहे और बेबी प्रोटेक्टिव रहे. यूजुअली ऐसे टाइम में हम कीमोथेरेपी स्टार्ट कर चुके होते हैं मदर में इवन व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट, और कीमोथेरेपी भी बहुत ही ज्यादा समझदारी से देने की जरूरत होती है, बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने की जरूरत होती है. तो यूजुअली क्योंकि वो कीमोथेरेपी पे होती है ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है बिकॉज दे आर ऑन ट्रीटमेंट, इट कैन कॉज प्रॉब्लम इन द बेबीज.
1: ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैम हमने इतनी बात की और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े और ल्यूकेमिया से जुड़ाव के बारे में बात की, मैम इससे जुड़े भी आपने कई काम किए हैं, कई रिसर्च पेपर्स हैं, तो उस बारे में आप अपने वर्क के बारे में थोड़ा सा बताएं.
0: सो मतलब अभी मैंने रिसेंटली एक बुक भी लिखी है अपने खुद के पूरे एक्सपीरियंस पर. तो ब्रेस्ट फीडिंग यस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा हर किसी महिला को यही कहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अगर हम पहले ही एंटीनेटली प्रिपेयर्ड रहे तो आफ्टर बिकमिंग अ मदर वो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है. उसके बारे में इस पूरे रेडियो प्रोग्राम में बोलना बहुत नामुमकिन है, और पूरी फैमिली को साथ में रहकर एक ब्रेस्ट फीडिंग महिला की हेल्प करनी चाहिए.
1: तो जो लोग आज ब्लड कैंसर से जंग लड़ रहे हैं या उनके परिवार में ऐसा कोई मरीज है तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: आई मीन आई ऑलवेज से एंड आई लुक एट ऑल दीज पीपल विद अ लॉट ऑफ एम्पथी. हमेशा पहले एज अ डॉक्टर मुझे लगता है एम्पथी एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें कूट कूट के एक डॉक्टर में होनी चाहिए. और मेरा उनसे यही मतलब संदेश रहेगा कि प्लीज डोंट लूज होप, स्पेशली जैसे मैंने बताया प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है माना कीमोथेरेपी के दौरान, बहुत सब कुछ झेलना भी पड़ता है, देर कैन बी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेन. बट कई लोग क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली दे गो टूवर्ड्स नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, जैसे कुछ यू नो इस प्रकार की दवाइयां ले ली जिनका कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है. तो आप कीमोथेरेपी से मत घबराइए, जैसे कि आपने सुना होगा लोहा ही लोहे को काटता है, तो लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए. कीमोथेरेपी यस कैन बी स्ट्रांग बट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर.
1: मैम आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर इतनी सरल और सटीक जानकारी दी और हमारे श्रोताओं की भ्रांतियों को दूर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच.
1: श्रोताओं आज के हमारी सेहत कार्यक्रम में हमने जाना कि ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर से डरने के बजाय समय पर सही जांच और आधुनिक इलाज अपनाना कितना जरूरी है. सही जानकारी ही बचाव की पहली सीढ़ी है. इसी के साथ अब राजलक्ष्मी को दीजिए अनुमति. सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. नमस्कार.
2: ल्यूकेमिया, अभी आप इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे विशेषज्ञ हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनामिका बाकलीवाल से. भेंटकर्ता थी राजलक्ष्मी स्वाई. इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं या आप हमारे कार्यक्रमों का फीडबैक हमें भेजना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें लिख सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। हम आपके लिए नए नए कार्यक्रम लाएंगे और आपकी स्वास्थ्य की चिंता करना ही हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो सुनते रहिए हमारी सेहत और इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरनेट चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, TRM 810 किलो हर्ट्ज पर।
5: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
4: नौ बज के 30 मिनट पे कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और उसके बाद कार्यक्रम होगा 10:10 पे आपकी फरमाइश यानी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: और 11:30 पर कार्यक्रम होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: आज हम सब जानते हैं कि ऊर्जा केवल बिजली की जरूरत पूरी करने का माध्यम नहीं है, बल्कि तकनीक, डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरण और सतत विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बदलती ऊर्जा जरूरतों के बीच उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने और बिजली क्षेत्र को अधिक स्मार्ट एवं टिकाऊ बनाने में नई तकनीकों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इन महत्वपूर्ण विषयों पर और विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं BSES राजधानी पावर लिमिटेड में कंज्यूमर कनेक्ट, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस एवं ISO अनुपालन समूह के प्रमुख श्री मुनीश शर्मा जी। श्री मुनीश शर्मा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: मुनीश जी, आप राजधानी पावर लिमिटेड जो BSES का है उसमें आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, एनवायरनमेंट

0: अपनी भूमिका निभा रहा है।
1: बिजली का वितरण एक किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी किस्म का प्रावधान है। जब हम बिजली के वितरण की आज के दिन में बात करते हैं तो सिर्फ हम बिजली को वितरण ही नहीं करते जनरेटिंग स्टेशन से लाकर कस्टमर तक, उसके बीच में आज की डेट में हर कस्टमर अपने घरों में भी सोलर पैनल लगा के या बैटरी के द्वारा कहीं ना कहीं बिजली को स्टोर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब चीजें जो अभी पिछले 10-12-15 साल में हम सब ने देखी और आज हमारा देश 2070 के नेट जीरो टारगेट की तरफ भी बढ़ रहा है, तो ये इतना महत्वपूर्ण लक्ष्य जो हमारे देश के सामने है, इन सब चीजों को पूरा करने के लिए एक पावर वितरण कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि हम किस तरह से ये सारा सिस्टम इस तरह से चलाएं कि किसी भी तरह से उपभोक्ता को पावर की कमी ना रहे और साथ में वो जो पावर प्रोड्यूस कर पा रहा है वो वापस से हमारे ग्रिड स्टेशन में आए और सारे हमारे एरिया में उस तरह से सर्व हो जहां जहां पे पावर की कमी है। तो कहने का मतलब है इसके पीछे बैकएंड में जो हमारा सिस्टम चलता है उसमें खूब सारे एल्गोरिथम्स चलते हैं, डिजिटाइजेशन है, ऑटोमेशन है। आज हमारे जितने ग्रिड स्टेशंस हैं सारे के सारे सारों का डेटा हमारे पास पीछे बैकएंड में अवेलेबल है कंप्यूटराइज तरीके से, जिनको कि हम आगे तक के लिए देख सकते हैं कि कल यदि क्लाइमेट इस एरिया में ऐसा रहेगा या मौसम ऐसा रहेगा तो इस एरिया में कितना पावर लगेगा, रिक्वायरमेंट कितना रहेगा इतने कंज्यूमर्स के साथ। तो ये जो सारा का सारा कैलकुलेशन है बैकएंड पे, ये होने के लिए सारा डेटा को डिजिटाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिजिटाइजेशन का एस्पेक्ट, ऑटोमेशन का एस्पेक्ट और किस तरह से हमें एक सारे सिस्टम का एक बैकएंड पे रेप्लिका बना लें, जिसे कि एक भाषा में कहा जाता है डिजिटल ट्विन। मतलब हमने जो बिजली का नेटवर्क फिजिकली अवेलेबल है, तारें, ट्रांसफार्मर, मीटर, उन्हीं सब का एक रेप्लिका अपने सिस्टम में बना रखा है हमारे बैकएंड सिस्टम में, जिसके थ्रू हम उसे कंट्रोल करते हैं और उन सब की प्रोजेक्शन फ्यूचर की देखते हैं। तो ये सब तरीकों से हम उपभोक्ता को 24/7 सप्लाई प्रबंध
0: कराते हैं। जी, आपने एक बात कही कि भारत का जो 2070 तक जो है कार्बन इमिशन के लिए नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, साथ ही आपने सौर ऊर्जा की बात की, पवन ऊर्जा का भी विस्तार हो रहा है, अब परमाणविक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया है ताकि वो ग्रीन एनर्जी का भी फायदा मिल सके। एक होता है कि जो विकास के साथ साथ ऊर्जा खपत के साथ साथ पर्यावरण की भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि वो एक पर्यावरण के शर्तों पे ही ये सारे उत्पादन किए जा रहे हैं। तो जो स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि पर्यावरण चिंता के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा का महत्व कितना है और इसके लिए ये जो आजकल बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्मार्ट बिजली की, ये भविष्य में किस तरह का बदलाव ला सकता है?
1: टेक्नोलॉजी जो है वो हम सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक तरह का टूल है, उसको अगर हम बहुत ही इफिशियंट तरीके से यूज करें चैलेंजेस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, तो हम ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसे हम पा ना सके। आज जो सिस्टम बन गया है पूरे भारत का या पूरे विश्व का, कि हम सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, बिजली का कंजम्पशन किसी भी एरिया में सिर्फ उस जगह के लोगों पे या उस जगह की इंडस्ट्रीज या कमर्शियल जो इकाइयां हैं उन्हीं पे निर्भर नहीं करता है, वो क्लाइमेट पे भी निर्भर करता है कि किस तरह का क्लाइमेट है, वो टाइम ऑफ द डे पे भी निर्भर करता है कि दिन में कितना कंजम्पशन है, रात में कितना कंजम्पशन है। तो जब हम इन सभी वेरिएबल्स की बात करते हैं तो पहले सिस्टम क्या था, बड़ा सीधा सिस्टम था, जनरेटिंग सिस्टम से पावर आई, जितनी पावर आई उतनी बांट दी गई, वितरण कर दी गई, अगर वो पूरी नहीं पड़ी बाकी जगह लोड शेडिंग हो गई। हम बचपन से सुनते होंगे काफी स्टेट्स में बिजली कट जाती है, कटौती होती। आज की डेट में कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, जनरेशन हमारी उपयुक्त है और कंज्यूमर भी अपने घर में सोलर लगाया है तो वो भी प्रोड्यूस करता है, तो बिजली का काटना एक ऑप्शन है नहीं किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास या किसी भी जनरेटिंग कंपनी के पास। तो ये सब चीजों को एस्टीमेट करना और फोरकास्ट करना एक एल्गोरिथम के तहत, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाया कि सारा डेटा जो हमारे पास अभी तक हिस्ट्री का है और किस तरह के कस्टमर उस इलाके में रहते हैं और उस इलाके में पहले तमाम सालों में किस तरह का मौसम रहा है, उससे कितनी बिजली की यूजेज हुई है उन इलाकों में और ये सब करते हुए आगे 5 साल में कैसी होगी या आगे 5 दिन बाद कैसी होगी, आज ये AI के थ्रू ही संभव हुआ है। अभी हमने रिसेंटली सुना, पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस को जो सप्लीमेंट करता है और उसको करने के लिए जो लैंग्वेज होती थी वो मशीन लर्निंग के थ्रू कोई कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेता था और फिर वो जो जो हम चैलेंजेस देते थे वो करता था। आज इसको हम सुपर इंटेलिजेंस कहने लग पड़े हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अपने आप में ही एक पूरा रिपोजिटरी बन गया है जो अपने आप से ही सीख भी रहा है। तो ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हम बात करते हैं काफी सारे विभागों में, क्षेत्रों में, कि जैसे कंप्यूटराइजेशन आने से क्या गति तेज होगी काम की या लोगों की नौकरियों पे अफेक्ट होगा, तो AI आज की डेट में जिस स्टेट में है उसमें जॉब में अफेक्ट उन चीजों में होगा जहां पे कि रिपीटेटिव जॉब्स होती थी या जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन एक बहुत मिनिमम लेवल

0: पे था, उसको हमने ऑटोमेट कर दिया, एआई उसको आसानी से कर लेता है, जैसे कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता है चीजें, आपको बता देता है। तो अब एजेंटिक एआई और नया नया लेवल का एआई आने के बाद तो ऐसा हो गया है कि एआई अपने आप से सीखता भी है और उसके बाद वो आपको समाधान भी बताता है। कहने का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हमने अभी डिस्कस किया कि एक उपभोक्ता आज सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहा है, वो पावर बनाता भी है,
1: बिल्कुल
0: तो उस सारे सिचुएशन को कैलकुलेट करके, उसका सही आंकलन करके, बिना इन तकनीकी टूलों के बिना कोई भी कंपनी आज आगे फ्यूचर में नहीं बढ़ पाएगी। तो ये बहुत जरूरी एक परिपेक्ष है इन सब चीजों का, जो कि जिसके बिना कंपनी आगे बढ़ नहीं पाएगी। बट हाँ, हमें ये देखना है बस कि जो हमारी बेसिक नीड्स है, कि हमें पावर चाहिए और हमें जो जो भी हम फ्यूचर में चीजें, क्लीन पावर चाहिए, सस्ती पावर चाहिए और लगातार पावर चाहिए और सेफ पावर चाहिए, ये चार चीजें हैं। तो ये चारों चीजें हम टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से अराइव करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और जैसा कि आपने एआई की चर्चा की, एआई का उपयोग तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी एक हाल ही के वैज्ञानिक और अध्ययन में ये सामने आया है कि जो एआई को जब कहा जाता है कि 15 से 20 मिनट का एक स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, तो उस समय जो डाटा सर्वर पे जो उनका हीट जनरेट होता है बिजली की मांग के कारण, बिजली उपयोग के कारण, तो उसको उस सिस्टम को कूल करने के लिए लगभग आधा लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। एक तो हम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में पानी को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि जल ही जीवन है। दूसरी बात है बिजली वर्तमान युग की आवश्यकता है जिसकी मांग बढ़ती जा रही है, तो दोनों बातें हो रही है क्योंकि सिस्टम को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए, कूलिंग चाहिए, तो एक सब्स्टिट्यूट चाहिए पानी का, क्या हो सकता है, वितरण है बिजली का तो उसमें लॉस की भी बात होती है। ऐसी स्थिति में ये प्रणाली को किस तरह से सज होना चाहिए अपने आप को, चूंकि समस्या भी आ रही है, एडजस्ट करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे कि आप अपने यहाँ इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के प्रमुख भी हैं, तो ये क्या है इसे समझाइए।
0: जिस तरह से कोई देश तरक्की करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू में सारी प्रजा को बेसिक नीड्स पहुंचाना होता है, जिसे कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद फिर उसकी बाकी की नीड्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर चीजें, और ताकि ताकि देश तब तरक्की करेगा जब उसकी प्रजा तरक्की करेगी। तो सिमिलरली जब हमारे कॉरपोरेट्स में, इंडस्ट्रीज में हम एम कर रहे हैं 2070 में एक GDP के लिए, तो हमारी सारी कंपनियों का, जितनी भी कंपनियां भारत में हैं इस समय, उन सबका कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल टारगेट होगा। तो वो टारगेट तो हुआ फाइनेंशियल टारगेट, पर जहां तक होती है कि सारी कंपनियां समाज की ही सेवा में हैं, भले वो आईटी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या बिजली वितरण कंपनी हो, या पानी वितरण कंपनी हो, या गैस वितरण कंपनी हो, वो समाज की ही सेवा में है। तो समाज की सेवा से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं, जो कि उन कंपनियों को अपने फाइनेंशियल से ज्यादा जिन पे ध्यान रखने की आवश्यकता है और कंप्लायंस दिखाने की आवश्यकता है, वो सब चीजों का समावेश ESG में आता है। इसमें E का मतलब है एनवायरमेंटल, मतलब पर्यावरण रिलेटेड जो कंपनी की ड्यूटीज हैं, वो कितनी वो निभा पाती है। S का मतलब है सोशल, मतलब समाज से रिलेटेड। अब समाज में दो तरीके के हैं, कस्टमर जिनके लिए वो काम कर रही है, और जो इम्प्लॉइज जो कंपनी में खुद से काम कर रहे हैं, कार्यरत है, उनके लिए भी कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या दायित्व है। तीसरा, गवर्नेंस। तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, हमारे इंडिया में जो रेगुलेट कर रहा है ESG और सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव को, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कुछ मापदंड बनाए हैं। तो जो 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं हमारी, वो उन मापदंडों के तहत हर साल कुछ कंप्लायंस सबमिट करती हैं, तो वो सारा का सारा जो कवरेज है वो ESG के तहत आता है। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं दुनिया भर में, वो सारी की सारी अपनी ग्रोथ के अलावा अपने इस दायित्व के कारण अडिग है कि उनको ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी, ग्रोथ प्रॉफिट से मिलती है, या कितना सामान बेचा जाता है या कितना मार्जिन मिलता है उसको, बट जो दायित्व उसका समाज की तरफ है, की तरफ, कि जिन रिसोर्सेस के कारण वो कंपनी है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी रिसोर्स इस दुनिया से बाहर का नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है वो कहे कि मैंने ये चीज मार्स से लेकर बनाई है, आई तो इस पृथ्वी से ही है, तो वो उसी एनवायरमेंट से आई है निकल के, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो एनवायरमेंट के प्रति हम किस तरह से अपना दायित्व निभा रहे हैं, समाज के प्रति किस तरह से दायित्व निभा रहे हैं, और गवर्नेंस मतलब इन चीजों को हम किस तरह से एक कंप्लायंस फॉर्मेट में लाके ताकि कोई भी अछूता ना रहे, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आज की डेट में बढ़ गया है।
1: आपने बिजली क्षेत्र में एक नवीकरणीय ऊर्जा की भी बात की, सोलर की बात की, और बहुत सारे क्षेत्र उससे जुड़े हुए हैं। एक हमारे यहाँ हाइड्रोजन ऊर्जा भी है, हाइड्रोजन की ट्रेन चलाई गई है और आगे भी है कि ये भविष्य होगा हाइड्रोजन के अत्यधिक उपयोग से, और आपने जैव हाइड्रोजन पर भी अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है। तो ये जैव हाइड्रोजन क्या है और भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था में इसकी क्या संभावित भूमिका हो सकती है?
0: जब हम एनर्जी के स्त्रोतों पे जाते हैं तो ज्यादातर स्त्रोत जो कि फॉसिल होते हैं, जैविक होते हैं, उनके अलावा जब हम बाकी देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऐसा स्रोत निकालें कि जिसका बाई प्रोडक्ट वापस से नेचर को खराब नहीं करे, तो हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा रोल वहां प्ले करता है। अब हाइड्रोजन कई

0: तरह का होता है। हम सुनते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब वो प्रकार हैं जिस तरह से वो हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन को फ्यूल बनाया। बायो हाइड्रोजन फ्यूल, जो मेरा पेपर था 2016 में ये हमने प्रस्तुत किया था, वो ये बताता है कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेस से हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, ताकि उसका बाई प्रोडक्ट वाटर ही निकलेगा, और वो वाटर वापस से, इस पृथ्वी में भी 2/3 पानी ही है, तो वो पृथ्वी को वापस से पॉल्यूट नहीं करेगा किसी भी तरह से। तो इसके ऊपर काफी शोध हुआ है तब से लेकर अभी तक, टेक्निकल सोर्सेज और इसके कमर्शियलाइजेशन के ऊपर काफी कंपनीज ने पहल भी करी है। तो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि जिस तरह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिस तरह से अभी हमने एक गाड़ी भी चलाई है इंडिया में हाइड्रोजन के ऊपर जो चलती है, इवन आप देखेंगे कि इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना के साथ मिलकर एक टाई अप में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बसेस भी बनाई है जो इंडियन आर्मी यूज करती है। तो इसी तरह से यूज में ये आएगा और फिर स्केल अप होगा फ्यूचर में। हाइड्रोजन के साथ बस एक ही रिस्क इन्वॉल्व है, सेफ्टी। तो कहीं ना कहीं हम किसी भी चीज को लाएं तो समाज में उस तरह से लाएं कि वो सेफ। तो उन चीजों पे काफी शोध हो रहा है अभी, तो आने वाले टाइम पे हम अवश्य देखेंगे कि वो सब चीजें हम पार पाके और इसको यूज किया करें।
1: इसमें तो कुछ कुशलता भी चाहिए, कौशल विकास भी होना चाहिए, और युवाओं के लिए रोजगार भी एक समस्या रही है। तो जो बैटरी का बढ़ता क्षेत्र है, सोलर का, इलेक्ट्रिक वाहन का, स्मार्ट ग्रिड का और AI जैसे क्षेत्रों की बात आपने की, तो आज के युवाओं को इस बदलती ऊर्जा दुनिया के लिए किस तरह के कौशल सीखनी चाहिए? आम उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: इन दोनों का एक ही जवाब है, एनर्जी का संरक्षण। जो उपभोक्ता है आज की डेट में, वो जितना संरक्षण की तरफ ध्यान देंगे तो उससे ना केवल उनके घर के लिए बल्कि देश के लिए, समाज के लिए एक ऐसा पूल क्रिएट हो जाएगा कि जो पावर वेस्ट होती थी, क्योंकि जो भी पावर बनी है वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ही बनी है, तो वो अगर हमने कंज्यूम नहीं करी है तो वो वेस्ट भी नहीं होनी चाहिए। और सिमिलरली जो हमारे आज की डेट में युवा है, उनको आगे के लिए काम करने के लिए या किस क्षेत्र में जाने के लिए जो एक एरिया निकल के आ रहा है, वो यही निकल के आ रहा है कि किस तरह से हम ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करें जिनसे कि पावर जहां पे कम कंज्यूम हो, तो वो सर्कुलर इकोनॉमी, हमने एक नाम सुना होगा, रिसाइकलिंग, रिप्लेसमेंट, तो उसी में वो यूज हो जाए। तो इन एरियाज में अगर सर्कुलरिटी में, सिंगुलैरिटी में, इन एरियाज में अगर आज की डेट में हमारा यूथ थोड़ा फोकस करेगा, तो आने वाले टाइम पे वो या उसकी इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस करेगी, वो ये नहीं कि वो ये सारे के सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम ही करेगी, वो उसका संरक्षण भी करेगी और बाकी आने वाली जनरेशंस के लिए बचा के भी जाएगी। तो इसमें मेरा एक स्टेटमेंट यही रहेगा, प्रधानमंत्री साहब ने एक और शब्द भी उसमें बोला था, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा विश्व हमारा एक कुटुंब है, वो सिर्फ हम अलग अलग जगह रह रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफीज में रह रहे हैं। तो हम अगर इसको एक सोर्स ऑफ एनर्जी सोच के इस फैमिली की बात करें, तो अगर वो सोच लेके चलेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा।
1: श्री मुनीश शर्मा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और जो स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य के जो तकनीक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपने सरल शब्दों में समझाया। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमरीका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा।

0: उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policy makers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President noted that India's ongoing economic reforms are rooted in the country's democratic traditions and the process of consensus building. He said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.
1: Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production and the dairy sector. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah and Chief Minister Dr. Mohan Yadav will attend the Gaur Palak Sammelan in Bhopal. Mr. Shah will also address the gathering. A state-level Gaur Palak Sammelan is being held at the Bhel Dashehra Maidan in Bhopal. Mr. Shah will honour women cattle farmers who have done good work in the field of animal husbandry. He will also distribute approval letters to beneficiaries of Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Yojana. The United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the grid strengthening and battery storage scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader in solar energy. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that chartered accountants have a pivotal role in strengthening India-US economic partnership by helping businesses navigate cross-border taxation, regulatory compliance and financial governance while making Indian enterprises investment ready for global capital. He said this during an interaction with the leadership

0: घर आंगन
1: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
2: मंजुला का प्यार भरा
1: नमस्कार।
2: और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: बिल्कुल। और देखो मंजुला, सोच सकारात्मक हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, क्योंकि सकारात्मकता हमें उस ऊर्जा, आत्मविश्वास और दृढ़ शक्ति से भर देती है जो जीवन के हर पथ पर हमें आगे बढ़ाता है। तो इसी विचार के साथ कि हम जीवन में हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाएंगे और जीवन के हर पड़ाव को सहजता से पार करते चलेंगे।
2: बहुत ही खूबसूरत बात और प्रतिभा, आज है जितिया पर्व, माँ के प्रेम, त्याग और संतान की लंबी उम्र की कामना का पर्व। कहते हैं माँ की ममता से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, तो आइए इस पावन अवसर पर हर माँ के त्याग और प्रेम को नमन करें। आप सभी को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी आराधना।
1: और प्रतिभा कुछ रिकॉर्ड समय नहीं बताते, वे बताते हैं कि एक पीढ़ी ने जहां अपनी सीमा खींची थी, अगली पीढ़ी ने वहीं से दौड़ना शुरू किया। और 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, भारत की पीटी उषा ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 55.42 सेकंड का समय दर्ज किया।
0: और फिर इस जो ये आंकड़ा था, सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं रहा, भारतीय एथलेटिक्स की एक ऐसी दीवार बन गया जिसे अगली कई पीढ़ियां छूती रहीं लेकिन पार नहीं कर पाई। फिर आई कोयम्बटूर की विद्या रामराज।
1: और 2023 के एशियन गेम्स में उन्होंने 55.42 सेकंड का समय निकालकर पीटी उषा के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, लेकिन शायद बराबरी उनकी मंजिल नहीं थी।
0: 2026 के एशियन गेम्स में नागोया में विद्या ने वही दौड़ फिर से दौड़ी और इस बार घड़ी रुकी 54.75 सेकंड पर,
1: यानी 42 साल पुराने रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 0.67 सेकंड आगे।
0: और इसी दौड़ के साथ विद्या भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में 55 सेकंड की सीमा भी पार की और नतीजा
1: भारत के लिए कांस्य पदक और भारतीय एथलेटिक्स के रिकॉर्ड बुक में एक नया अध्याय। विद्या की रफ्तार यहीं नहीं रुकी दोस्तों, एक ही एशियन गेम्स में 3 पदक, मिक्स्ड 400 मीटर रिले में रजत और महिला 400 मीटर रिले में स्वर्ण मिला।
0: और देखो अभी बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिला बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है।

0: और यही नहीं, 42 साल के बाद महिला हॉकी टीम को भी इन एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक मिला, और सभी पदक विजेताओं को देखो मंजुला,
1: हाँ,
0: हम FM गोल्ड परिवार की तरफ से
1: बधाई
0: बधाई देते।

0: चक दे इंडिया भी इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज थी हेमा सरदेसाई की।
1: और प्रतिभा, कभी सोचा है यात्रा से लौटकर हम वही इंसान क्यों नहीं रहते जो घर से निकले थे? दरअसल यात्रा सिर्फ नए शहर, पहाड़, समुद्र या खूबसूरत नज़ारे देखने का नाम नहीं है दोस्तों। यात्रा हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारा व्यक्तित्व भी बदलती है। हर यात्रा शुरुआत होती है जिज्ञासा से, मन में सवाल उठता है, आखिर उस पहाड़ के पार क्या है, उस शहर के लोग कैसे रहते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली कैसी है। यही जिज्ञासा हमें अपनी सीमाओं से बाहर ले जाती है।
0: बिल्कुल, और देखो फिर आता है रोमांच, अनजान रास्ते, अचानक बदलता मौसम और नई भाषा और कभी कभी मुश्किल परिस्थितियां। यही हम सीखते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। यात्रा हमें डर से ज्यादा साहस पर भरोसा करना सिखाती है।
1: और धीरे धीरे यात्रा शौक से जुनून बन जाती है। अब सिर्फ जगह देखना पर्याप्त नहीं लगता, हम उसे समझना चाहते हैं। स्थानीय लोगों से मिलना, उनका खाना चखना, उनकी कहानियां सुनना, उनकी संस्कृति को महसूस करना, और यही यात्रा का असली आनंद है।
0: और फिर बनता है जुड़ाव,
1: कनेक्शन,
0: है ना। और अजनबी लोग दोस्त बन जाते हैं, अलग संस्कृतियां अपनी सी लगने लगती हैं, और हमें एहसास होता है कि दुनिया भले ही अलग अलग दिखती हो, इंसानी भावनाएं लगभग एक जैसी हैं।
1: यात्रा हमें भीतर से गहरा भी बनाती है। हम अपनी सुविधाओं, पूर्वाग्रहों और छोटी छोटी शिकायतों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। हमें समझ आता है कि दुनिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं बड़ी है।
0: और आखिर में आता

0: है सबसे खूबसूरत पड़ाव, परिवर्तन यात्रा से. बिल्कुल. यात्रा से लौटकर हमारा सामान भले ही वही हो लेकिन हमारी सोच बदल चुकी होती है. हम थोड़ा अधिक आत्मनिर्भर, थोड़ा अधिक सहनशील, थोड़ा अधिक आत्मविश्वासी और सबसे बढ़कर थोड़ा बेहतर इंसान बन चुके होते हैं.
1: क्या बात है. तो अगली बार जब मौका मिले सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए नहीं, खुद को थोड़ा और जानने के लिए भी यात्रा पर निकल पड़िए.

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी अभिलाषा। और प्रतिभा त्योहारों का मौसम है तो साड़ी के साथ इस बार जरा आभूषणों का अंदाज भी बदलिए, क्योंकि हर साड़ी के साथ सोने का हार ही जरूरी नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला को मिलाकर भी बेहद खूबसूरत आपका लुक तैयार हो सकता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला तुमने। जैसे कलमकारी साड़ी की बात करें तो इसके साथ दक्षिण भारत के टेम्पल ज्वेलरी, लक्ष्मी हार, पारंपरिक झुमके या पुराने सोने जैसी नक्काशी वाले गहने,
0: अच्छे
1: अजरक
0: लगते
1: के
0: हैं।
1: साथ, हाँ अजरक के साथ चांदी का बड़ा हार गले में पहने और बड़े चांदी के झुमके या जनजातीय शैली के आभूषण बहुत सुंदर लगेंगे।
0: बिल्कुल सही। और कांथा के साथ बंगाल की तारकशी, डोकरा आभूषण, बनारसी के साथ कुंदन।

0: चढ़ाऊ पोल की या मीनाकारी के आभूषण बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर साड़ी बहुत हेवी है तो आभूषणों में से किसी एक को हाईलाइट कीजिए।
1: और देखो चिकनकारी के साथ की बात करें तो चिकनकारी की जो साड़ी होती है उसके साथ मोती, नाजुक कुंदन या छोटे पारंपरिक झुमके बेहद सलीकेदार रूप
0: आपको लुक
1: मतलब
0: देंगे।
1: बिल्कुल देंगे,
0: हाँ
1: है ना। और पैठनी के साथ ठुसी, कोलापुरी साज या पारंपरिक नथ, और आपका पूरा रूप जो है वो
0: क्या
1: महाराष्ट्र की
0: बात
1: खूबसूरत
0: है।
1: झलक बन जाएगा।
0: हाँ, और बंधनी या लहरिया के साथ राजस्थानी बोरला, लाख की चूड़ियां, मीनाकारी के आभूषण, उसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। संबलपुरी के साथ ओडिशा की तारकशी वाले चांदी के ज्वेलरी, और कांजीवरम के साथ टेम्पल ज्वेलरी बहुत ही अच्छे
1: और देखो
0: लगेंगे।
1: एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगी कि आभूषण और साड़ी का बिल्कुल एक जैसा
0: मैची मैची
1: होना
0: बिल
1: जरूरी नहीं है, है ना। और कभी कभी अलग अलग राज्यों की दो कलाएं जब साथ आती हैं तो एक बिल्कुल नया और खूबसूरत रूप बनता है।
0: बिल्कुल। तो इस फेस्टिवल आप प्रतिभा के इस टिप को जरूर याद रखिए। तो इस त्योहार सिर्फ सजिए नहीं, भारत की कला पहनिए, भारत की कारीगरी पहनिए, और हमारे कारीगरों के मेहनत को भी अपने उत्सव का हिस्सा बनाइए।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म अभिमान से।
1: और देखो मंजुला, अब बात करते हैं शुरू से अपनी पहचान बनाने वाली एक प्रेरक आवाज़ की। जी हाँ, वाइकोम विजय लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। केरल की रहने वाली वाइकोम विजय लक्ष्मी जन्म से दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें देश भर में एक नई पहचान दिलाई है।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत सीखना शुरू किया और गायन के साथ साथ वीणा वादन में भी दक्षता हासिल की। वो गायत्री वीणा नामक एक दुर्लभ वाद्य यंत्र बजाने में निपुण हैं।
1: मलयालम सहित कई भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी विजय लक्ष्मी को उनके संगीत के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। और विजय लक्ष्मी को मंजुला देखो, हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और उन्हें ये सम्मान मलयालम फिल्म के गीत के लिए मिला है।
0: और उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष, आत्मविश्वास और संगीत के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण मानी जाती है। उनकी कहानी हमें यही संदेश देती है कि हमें अपनी कमियों पर नहीं, अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए और अपने हुनर और उसको अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि आत्मविश्वास, मेहनत और अपने हुनर पर विश्वास हो तो हर चुनौती को पार कर अपनी पहचान बनाई जा सकती है।

0: अभी हम सुन रहे थे वाणी जयराम को फिल्म गुड्डी से।
1: और मंजुला देखो, हमारे देश के पास अपनी एक विरासत है, और ये विरासत ना जाने कितनी कलाओं, परंपरा, संस्कृति और रिवाजों का बेजोड़ संगम है। और देखो, जब हम बात कला की करते हैं तो हर राज्य, हर क्षेत्र किसी ना किसी कला को संजोए हुए है।
0: बिल्कुल सही। और ऐसी ही एक प्राचीन हस्तशिल्प कला है बंगाल बाटिक। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को बाटिक कला का मुख्य केंद्र माना जाता है।
1: और देखो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस कला को इंडोनेशिया से भारत लेकर आए थे। इसमें कपड़ों के जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता, वहां पिघला हुआ मोम लगाया जाता है, और इसके बाद कपड़े को रंगा जाता है, और मोम लगने से उस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ता।
0: बिल्कुल। और कारीगर इस कला का उपयोग करके खूबसूरत साड़ियां, दुपट्टा और फैब्रिक तैयार करते हैं। यकीन मानो, हर एक पीस अपने आप में अनूठा होता है, क्योंकि मोम लगाने से कपड़ा रंग के ने मतलब मोम को हटाने तक का काम हाथ से किया जाता है। ये सारा का सारा हैंडवर्क होता है।
1: बिल्कुल। और देखो, हर एक कपड़ा कारीगर की कारीगरी की अनूठी मिसाल पेश करता है। बाटिक सिर्फ कला नहीं, बल्कि बंगाल के कारीगरों की रचनात्मक परंपरा और हस्तशिल्प कला की पहचान भी है। तो अगर आप कभी बाटिक की साड़ी या दुपट्टा देखें, तो उसे अपने वार्डरोब में जगह जरूर दें।
0: बिल्कुल
1: और
0: देंगे।
1: देखो, ये कलाकारों की मेहनत के लिए हमारी तरफ से, आपकी तरफ से एक सम्मान होगा, है ना?

0: बहारों के सपने। अभी इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की।
1: तो सपनों की दुनिया से रियलिटी वर्ल्ड में आते हैं, और जीवन में संवाद बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संवाद यानी आपसी जो कम्युनिकेशन होता है, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संवाद बोलकर, इशारों से हो या फिर लिख कर हो, ये प्रभावी होने
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: ठीक कहा मंजुला तुमने। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब हम लोगों के बीच होते हैं ना, तब संवाद बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में संवाद सार्थक हो, स्पष्ट हो और सम्मान पूर्वक हो, तो संवाद प्रभावी के साथ साथ सफल संवाद माना जाता है।
1: क्या बात है। और एक बेहतरीन संवाद केवल बोलने के बारे में नहीं होता है, बल्कि सामने वाले को समझने और अपनी बात को सही ढंग से पहुंचने की कला है।
0: बिल्कुल। और देखो अपने संवाद के दौरान हमें सक्रिय श्रवण रखने की जरूरत है, यानी एक्टिव लिसनर हमें बने रहना चाहिए। साथ ही बात को घुमावदार तरीके की बजाय स्पष्ट और सीधे शब्दों में ही कहा जाए तो संवाद बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल सही। और बातचीत के दौरान सामने वाले की भावनाओं और परिस्थिति का सम्मान करना ना भूले, क्योंकि उनका जो नजरिया है वो भी मायने रखता है, जिसका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल ठीक मंजिला। और देखो संवाद की एक और शर्त होती है, जो होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। बात करते समय आंखों से संपर्क, चेहरे पे मुस्कुराहट और आपकी सकारात्मक मुद्रा भी संवाद को प्रभावी और सफल बनाती है।
1: और एक जरूरी बात कि ये संवेदनशील या गंभीर विषयों पर बात करने के लिए गुस्से या तनाव की स्थिति में संवाद से बचें, यानी मूड खराब हो तो बातचीत थोड़ा सा अवॉइड करना
0: बिल्कुल। और देखो
1: चाहिए।
0: ये छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारा संवाद प्रभावी तो होगा ही, साथ ही आपको एक सौम्य और प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी बनाएगा। तो क्यों ना आज से ही पहल करें एक सफल और सार्थक संवाद की।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी आपकी कसम।
1: और दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े फैसलों की नहीं, बस अपने मन से बात कहने के तरीके को बदलने की ज़रूरत होती है। जापान के कुछ बेहद खूबसूरत विचार जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान उसे बदल देना नहीं होता है, कभी कभी उसे स्वीकार करने, उसे थोड़ा सा पीछे हटना और अपने अगले कदम, छोटे कदम पर ध्यान देना उसका समाधान होता है।
0: बिल्कुल, देखो कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जो हो चुका है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे बार बार सोचकर हम अतीत नहीं बदल सकते। इसलिए हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ों को जाने देना भी ज़रूरी।
1: बिल्कुल। और दूसरा, कितनी बार हम थकान को, चिंता, भूख को, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी को जिंदगी की समस्या समझ लेते हैं। कभी कभी मन को सलाह नहीं, बस खाना और नींद चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखो, हर संदेश का तुरंत जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, हर खामोशी को भरना ज़रूरी नहीं है, जिंदगी में कुछ खाली जगह भी रहने देनी चाहिए, क्योंकि हर खालीपन को तुरंत किसी जवाब, किसी व्यक्ति या किसी शोर से भरना ज़रूरी नहीं है।
1: और ना कहना भी सेल्फ केयर है, हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर जिम्मेदारी उठा लेना और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना आपकी अच्छाई का प्रमाण नहीं है दोस्तों। कभी कभी एक बिल्कुल क्लियर नहीं आपके समय, ऊर्जा और मन की रक्षा करता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजरा तुमने। और शिनरिन योकू, जब मन बहुत शोर करने लगे, कुछ पेड़ों के बीच जाइए और उसे देखिए। प्रकृति हमेशा हमारे सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन वो हमारे भीतर का जो शोर है वो थोड़ा कम जरूर कर देती है।
1: बिल्कुल। और वाबी साबी तो सबने सुना है, एक गलती ये तय नहीं करती है कि आप कौन है। आपका कोई असफल निर्णय या कोई टूटा रिश्ता, कोई अधूरा सपना आपकी पूरी पहचान नहीं है दोस्तों। अपूर्णता भी जीवन का हिस्सा है और कई बार उसी में हमारी सबसे सच्ची खूबसूरती छिपी होती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजरा तुमने। देखो, और काइजेन की बात करें तो पूरी सीढ़ी को मत देखिए, बस एक कदम उठाइए। जब मंजिल बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए।

0: मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी पतंग। और कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है। जाते जाते आज की छोटी सी टिप, हर दिन अपने लिए कम से कम 15 मिनट जरूर निकालिए, फोन से दूर, शोर से दूर, बस अपने साथ, क्योंकि दूसरे का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना ना भूलें।
1: और देखो मंजुला, अभी हम अपने श्रोताओं को आज की प्रस्तुति का आखिरी गीत सुनवाएंगे फिल्म बातों बातों से, जिसमें आवाजें हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की।
0: तो फिर मिलेंगे एक नई बातचीत, नए विषय और नई ऊर्जा के साथ।
1: तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। दीजिए प्रतिभा को
0: और मंजुला को इजाजत।
1: नमस्कार।
2: उठ सबके कदम, देखो रम पम

0: 지
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
2: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: फास्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ की इस खास फिल्मी सफर में मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं और प्रस्तुत है आपका मनपसंदा सेगमेंट एक ही फिल्म से। सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है। आज की फिल्म भी कुछ ऐसी ही है। एक ईमानदार प्रोफेसर, एक प्रभावशाली कारोबारी, उसका बिगड़ैल बेटा और कुछ ऐसे लोग जिनके इरादे नेक नहीं हैं, और इन सब के बीच फंस जाता है एक इंसान जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी ईमानदारी। आज हम याद करेंगे वर्ष 1981 की फिल्म बुलंदी। राजकुमार की दमदार अदाकारी, आशा पारे की गरिमापूर्ण मौजूदगी, डैनी डेंजोंगपा की दोहरी भूमिका और आर डी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, आइए इस सफर में शुरू करते हैं इसी फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की जो फिल्म है वो है बुलंदी। इस फिल्म में राजकुमार ने प्रोफेसर सतीश खुराना का किरदार निभाया था, एक आदर्श शिक्षक, एक जिम्मेदार पति और एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने ज्ञान और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। सतीश खुराना जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। उनके लिए शिक्षक होना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि विद्यार्थियों को सिर्फ किताबों का ज्ञान देना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझाना भी जरूरी है। और साथ ही सतीश खुराना की जिंदगी में उनका परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। फिल्म में आशा पारेख ने सतीश की पत्नी सरला की भूमिका निभाई थी। तो श्रोताओं, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल सुरों में।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है सन 1981 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी है। अगर हम इस फिल्म के किरदारों की बात करें तो प्रोफेसर सतीश खुराना के रूप में राजकुमार है, आशा पारेक सरला खुराना के किरदार में है, रंजीत सिंह लोबो और मनजीत सिंह लोबो के रूप में डैनी जो कि दोहरी भूमिका में है, किम लीना खुराना के रूप में विक्रम, विक्की तेजा के रूप में राजकिरण, वीजू मोहंती के रूप में कुलभूषण खरबंदा, मदन तेजा के रूप में कादर खान, जीवन बाबूलाल भाकरी के रूप में राकेश बेदी, पवन भाकरी के रूप में। अगर हम इस फिल्म के कहानी की बात करें तो प्रोफेसर सतीश खुराना अपनी पत्नी सरला और बहन लीना के साथ रहते हैं, और जिस कॉलेज में वे कार्यरत हैं वहां उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है। एक दिन उनके मित्र विजय मोहंती ने फ़ोन पर उनसे अनुरोध किया कि वे एक धनी व्यापारी रणजीत सिंह लोबो से मिले और उनके बेटे मनजीत को ट्यूशन दे। सतीश पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन रणजीत से मिलने के बाद वे मान जाते हैं। मनजीत हर काम में समय का पाबंद था, लेकिन शुरू में थोड़ा घमंडी और जो आज्ञाकारी था वो थोड़ा कम था, पर सतीश से मिलने के बाद उसमें सुधार आ गया। यह देखकर रणजीत के मित्र मदन तेजा और बाबूलाल भाकरी भी अपने बेटों विक्रम और पवन के लिए सतीश से ट्यूशन का अनुरोध करते हैं। इसके बाद सतीश पर निजी ट्यूशन के माध्यम से प्रश्न लीक करने का

आरोप लगता है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब सतीश को रणजीत, मदन और बाबूलाल के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वे उनका इस्तेमाल अपने अवैध काम के लिए करना चाहते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में मैं आपकी आपके साथ बनी हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। और हमारे पास भर भर के मेल सारे हैं, चलिए उनको हम शामिल करते हैं। जो हमारे पास पहला मेल है वो है भूषण खेड़ा का, फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार। इनके साथ हैं विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवानशी खेड़ा। और जो अगला संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर का, इनके साथ है कविता गौर मेरठ कैंट से। साथ ही जो अगला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से। इनके साथ हैं पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, गुरमीत सिंह का अगला संदेश है साउथ एक्सटेंशन से। और साथ ही इशक मोहम्मद हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा। और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। जो अगला संदेश है कमलकांत गुप्ता का है, पिपरिया से श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता। आर कुमार वंडिंग खेड़ा से हमें लिखकर भेज रहे हैं, पंजाब से पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश है हरजिंदर शिंदे का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव नथाना पंजाब से। इनके साथ है जसवीर, जसी, सीता और गीता। तो श्रोताओ, आगे भी हम संदेशों को शामिल करेंगे, तब तक के लिए अपने सभी लिसनर्स को कहना चाहेंगे कि जो चाहते हैं कि उनका भी नाम शामिल हो, वो हमें ipradio@gmail.com पर लिखकर भेज सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा जीमेल है ipradiodelhi@gmail.com।

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट लगभग 1 करोड़ था, और जो इसकी कमाई थी वो भारत में लगभग 2 करोड़ और दुनिया भर में 4 करोड़ थी, जिससे ये फिल्म काफ़ी हिट घोषित हुई। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। इसे 1985 में तमिल भाषा में निर्माई नाम से रीमेक किया गया था।

0: श्रोताओं, हमारे पास और भी संदेश आ रहे हैं, तो चलिए इनको शामिल कर लेते हैं। जो अगला संदेश है वो है संदीप मक्कर का। इनके साथ है ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गुराया, जालंधर से। जो अगला संदेश है कमलकांत गुप्ता का। इनके साथ है श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता, ये मिलकर भेज रहे पिपरिया से। झाकर राम साहू जी का अगला संदेश इनके साथ है जमुना जामुन देवी साहू, बबलू साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, ये हमें लेकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ से। और जो अगला संदेश है राजकुमार डूडी का, इनके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरांसी, जिला हिसार से। बिट्टू गजनेजा में संदेश भेज रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से। हीरा मनी वर्मा में संदेश भेज रहे हैं भाटापारा से। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमें लिख रहे हैं। और आपका संदेश हम तक पहुंच रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय ढींगिया हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और उन्हें भी ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। जो अगला संदेश है वो है धर्मेंद्र छीपा का, और इनके साथ है कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहाल, भोपालगढ़, राजस्थान से। रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, जोन डिकैस्ट्रो हमें संदेश भेज रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं इस फिल्म का अंतिम गीत।
1: Let's go!
2: Yeah, let's go!
0: अजीत भावसर हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं प्रमिला भावसर, भावेश कुमार, सनी भावसर, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं वीरमगाम गुजरात से। और जो अगला संदेश है बसंत कुमार सिन्हा का है, इनके साथ है रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी, और साथ ही ये जो अगला संदेश आया है वो आया है मेहर अरोड़ा का, इनके साथ है ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं श्री गंगानगर राजस्थान से। अगला संदेश जो है वो है प्रवीण हागुड़े का, और इनके साथ योगिता हागुड़े, कुमारी प्रियाली, पार्थ हागुड़े और इनके परिवार के अन्य सदस्य, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से। सुधाकर जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है डॉक्टर प्रशांत और श्री सुधाकर राजे, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं समस्त जाफराबाद से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। संजय ढींगिया का अगला संदेश आया है।

पंकज शर्मा का अगला संदेश है और इन ये हमें लिख कर भेज रहे हैं मॉडल टाउन से नूतन संदीप और जगमोहन साथ ही अन्य लोग लालगिरी हमें लिख कर भेज रहे हैं के साथ हैं हिमलता हीना हर्षित और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं श्रीगंगानगर राजस्थान।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगी ये कार्यक्रम लेकर ठीक दिन के 1:10 पर। तब तक लिए मुझे यानी आपकी दोस्त दीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती नूं समाजिक मजबूती तो वक करके नहीं देखा जा सकता अते तेजी ने बदलती दुनिया च सारियां दी शमूलियत ही मजबूती दी बुनियाद है। सरकार ने नशीले पदार्थां दी तस्करी करन वाले मुख सरगना नवप्रीत सिंह नूं तुर्कीए तो भारत लियाउण च सफलता हासिल कीती। संयुक्त अरब अमीरात के अटारनी जनरल कौंसलर डॉक्टर हमद सैफ अल शमसी ने कहा फ्लाई दुबई उड़ान की जांच विच पाया गया कि सह पायलट ने दहशतगर्द कार्रवाई करने की कोशिश की सी। होरमुज जलमार्ग विच कुवैत के झंडे वाले टैंकर ते हुए हमले तो बाद पांच भारतीय नागरिकां नूं सुरक्षित तौर ते बचा लिया गया है अते भारत ने एशियाई खेडां च क्रिकेट के फाइनल विच पाकिस्तान 19 दौड़ां नाल हरा के सोने का तमगा अपने नां कीता। हुण खबरां विस्थार दे नाल। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती नूं समाजिक मजबूती तो वक करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी नाल बदलती दुनिया विच समावेशता यानी रलवी मिलवी शमूलियत ही मजबूती दी बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन अज नवी दिल्ली विच पंजवें कोटल्या आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन कर रहे सन। सम्मेलन का विशा सी बदलते समय विच मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति समावेशी पहुंच अते मौजूदा हालात के अनुकूल नीतियां बनाउण नाल लोकतंत्र अते विकास इकट्ठे अगे वध सकदे ने अते निरंतर विकास लई मजबूत नींह रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि असल मजबूती इस गल नूं यकीनी बनाउण विच है कि कोई भी नागरिक उद्यम या खेत्र पिछे ना रह जावे। उपराष्ट्रपति ने 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण लई समूहक यत्नों का सद्दा दिता। श्री राधा कृष्णन ने तेजी नाल बदलदियां आलमी तरजीहां आधुनिक तकनालोजी अते वध रहियां जलवायु चुनौतियां दौरान आपसी सहमति नाल फैसला कुण निर्णय लैण दी लोड़ ते जोर दिता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संकट दे वेले सहमति ते आधारित फैसलियां दी लोड़ होर वध जांदी है। उन्होंने कहा कि बहस अते चर्चा बेशक जरूरी ने पर अंत विच इसका नतीजा इहो जिहा होना चाहिए है जो सारियां नूं प्रवान होवे। सरकार ने नशीले पदार्थां दी तस्करी करन वाले सरगना नवप्रीत सिंह नूं तुर्कीए तो भारत वापस लियांदा है। देश दी एजेंसियां दी इस उपलब्धि नूं सांझा करदिआं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि नवप्रीत सिंह ने नवाब विरक दी जाली पछाण तहत तुर्कीए दी नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान तो भारत च हैरोइन अते मैथामफेटामाइन दी तस्करी कीती। सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विरक नां रख के तुर्कीए दी नागरिकता प्राप्त कर चुका सी। वह अफगानिस्तान तो भारत विच हैरोइन मैथामफेटामाइन ते होर नशे तस्करी करता रहा। उन्होंने एजेंसियां दी इस प्राप्ति ते वधाई दित्ती है। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सरहद पार टैक्सेशन नियमों की पालना ते भारतीय उद्यमों नूं आलमी पूंजी निवेश लई तैयार करके भारत अमरीका आर्थिक भाईवाले नूं मजबूत करन च भूमिका निभा सकदे ने। उन्होंने शिकागो मिशीगन अते ओहायो शाखावां दे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नाल गल्लबात दौरान यह प्रगटावा कीता। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि मीटिंग दौरान भारत अमरीका आर्थिक भाईवाली विच विस्थार दे मौकियां बारे भी विचार वटांदरा

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं हबीब रहमान। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आजादाना तिजारती समझौते आलमी मईशतों के 75% का इहाता करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज अपने 12 साल मुकम्मल कर रहा है। अबनाए हुरमुज में कुवैत के परचमबरदार बहरी जहाज पर हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बहिफाजत बचा लिया गया है। और एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं परनवी शरत उर्स गोल्फ में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। तिजारत व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज़ाद तिजारती ताल्लुकात का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसमें दुनिया भर की मईशतों का तकरीबन 75% से 80% हिस्सा शामिल किया जा सकता है। शिकागो में अमरीकी भारतीय कम्युनिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने बताया कि भारत ने हालिया बरसों में अपने तिजारती मुज़ाकरात में खातिरख्वाह औसत पैदा की है और कई मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। उन्होंने बताया कि इस बढ़ते हुए नेटवर्क से भारत में मौजूद कंपनियों वसी बैनुल अक्वामी बाजार तक रसाई फराहम होगी। जनाब गोयल ने कहा कि 2014 से पहले भारत का दुनिया की मईशतों के साथ आज़ादाना तजारती माहदे थे जिनकी मजमूई घरेलू पैदावार तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड आज ही के दिन साल 2014 में विजयदशमी के मौके पर नशर किया गया था। हाल ही में मन की बात का 138वां एपिसोड नशर किया गया। गुज़श्ता 12 साल के दौरान मन की बात ने मुल्क भर में रोनुमा होने वाली मुसबत यकसर तब्दीली को उजागर करने और भारत के तरक्की के सफर में लोगों की सरगर्म शिरकत की हौसला अफजाई के लिए एक बेमिसाल प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस माहाना प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम मुल्क भर के ऐसे लोगों की मुतासिर कुन कहानियाँ शेयर करते हैं जो तालीम, हिफ्जान सेहत, माहौलियाती तहफ़ इख्तरा और समाजी खिदमात के शोबों में इम्तियाजी काम अंजाम दे रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क्स पर नशर किया जाता है और ये AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब रहता है। ये प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इतलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी लाइव नशर किया जाता है। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में गौपालक सम्मेलन में शिरकत करेंगे जो कि दूध की पैदावार और डेयरी के शोबे की बड़ी तकरीब होगी। इस मौके पर जनाब शाह तकरीब से खिताब भी करेंगे। रियासती सतह का ये गौपालक सम्मेलन भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है। इस दौरान जनाब शाह मवेशी परवरी के शोबे से वाबस्ता और बेहतरीन काम करने वाली किसान खवातीन की हौसला अफजाई करेंगे। अबनाए हुरमुज में कुवैत के परचमबरदार टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। ओमान में भारतीय सफारतखाने ने आज एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय शहरियों को बहिफाजत निकालने में मदद की। मिशन ने इस बचाव कार्रवाई में ओमान के हुक्काम की लगातार मदद और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा है कि इक्तसादी मजाहमत को

0: समाजी मुजाहमत से अलग नहीं किया जा सकता और यही शमूलियत तेजी से बदलती दुनिया में मुजाहमत की बुनियाद है। जनाब राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 5वीं कौटिल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए यह बात कही। कॉन्क्लेव का मौजू है तेजी से बदलती दुनिया में मुजाहमत। नायब सदर ने कहा है कि इत्तफाक राय, शमूलियत और जिम्मेदारी पॉलिसी साजी से ही जमहूरियत और तरक्की साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और पायदार तरक्की की बुनियाद फराहम करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि असल मुजाहमत इस बात में पिन्हा होती है कि कोई भी शहरी, कंपनी या खित्ता पीछे न रहे। नायब सदर ने साल 2047 तक विकसित भारत के लिए तामीर के लिए इज्तमाई कोशिशों की अपील की।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वेयर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल अवर सेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरी वन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: जनाब राधाकृष्णन ने तेजी से बदलती आलमी तरजीहात, बदलती टेक्नोलॉजी और उभरते हुए माहौलियाती चैलेंजों के दरमियान इत्तफाक राय के जरिए फैसला साजी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि बहरान के दौरान इत्तफाक राय पर मबनी फैसलों की बहुत जरूरत होती है। नायब सदर ने मजीद कहा कि चूंकि बहसो मुबाहसे जरूरी हैं, लेकिन उनका सभी के लिए काबिल कबूल और आखिरी नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत मुनशियात की स्मगलिंग के एक बड़े मुलजिम नवप्रीत सिंह को तुर्किया से कामयाबी के साथ भारत ले आई है। मुल्क की नफाज कानून की एजेंसियों की इस कामयाबी का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह ने जाली शनाख्त नवाब विर्क के नाम से तुर्किया की शहरियत हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मैथम फेटामाइन गैर कानूनी तरीके से भारत भेजता था। उन्होंने बताया कि मुतालिका एजेंसियों ने मुलजिम का सुराग लगाया, इसकी असल शनाख्त बेनकाब की और उसे भारत लाने में कामयाबी हासिल की। वजीर मौसूफ ने बताया कि नवप्रीत सिंह को मुनशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम से मुतालिक कई मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। वस्मत तालुका के पांगरा शिंदे इलाके में सुबह तकरीबन 9:43 पर 4.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इससे कबल सुबह 7:47 पर 3.3 शिद्दत का जलजला आया था। इसके बाद 4.5 शिद्दत का निस्बतन ताकतवर झटका महसूस किया गया, जिसके बाद जलजले के कई हल्के झटके भी महसूस किए गए। हिंगोली शहर और ज़िले के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद कुछ लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले मकामात पर जमा हो गए। नेपाल में आज गंडकी सूबे में एक बस पलटने के वाकये में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 10 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक काठमांडू जाने वाली इस बस में 18 मुसाफिर सवार थे और ये वाकया नवलपरासी ज़िले के दून इलाके में पेश आया। जख्मी मुसाफिरों को इलाज मुआलजे के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया। एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के T20 फाइनल में भारत ने रवायती हरीफ पाकिस्तान को 19 रन से हराते हुए सोने का तमगा जीता। यह मैच आज जापान के निसहिन में खेला गया। भारत की जानिब से दिए गए 212 रन के जवाब में पाकिस्तानी की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 61 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 22 गेंदों में 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शिवम दुबे ने 14 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज ने 96 रन बनाए, वहीं बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अरफात मिनहाज और तेज गेंदबाज अहमद दालिया ने 2-2 विकेट लिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स 2026 में खवातीन के इन्फरादी स्ट्रोक प्ले में सोने का तमगा जीतने और गोल्फ इन्फरादी तौर पर पहला सोने का तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बनने पर परनवी शरत उर्स को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि परनवी शरत उर्स ने भारतीय गोल्फ की तारीख में यह कारनामा अंजाम दिया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि सोने का यह तमगा भारतीय खवातीन के गोल्फ में संगे मील की हैसियत रखता है। सदर जमहूरिया ने परनवी शरत उर्स के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में आज भारतीय तीरंदाज नीरज

0: and an LA 2028 Olympics quota. The match will start at 3:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. Five Indian nationals rescued safely after Kuwait flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई

मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों

0: लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75 से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफ़ी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत चार साढ़े चार वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और पब्लिक पर @airnewsalerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि कोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पाता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपका पास है ना नहीं है पूछा था, हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तथा सतत विकास की मजबूत नींव।

0: नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वेयर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल अवर सेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरी वन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
2: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाईपास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, पांच

भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओ, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। श्रोताओ, आज के जो हमारे कलाकार हैं वो भारतीय हिंदी सिनेमा के एक मशहूर फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता है। और सबसे बड़ी बात जो उनकी मुख्य पहचान है, उन्हें मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर देशभक्ति और युद्ध पर आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। अगर उनके बारे में एक खास पहचान और बताया जाए तो सन 1998 में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन से सम्मानित किया गया था। तो श्रोता, अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेपी दत्ता, ज्योति प्रकाश दत्ता जी के बारे में। तो आइए, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं गीतों के सफ़र को भी लेकर शुरू करते हैं, उन्हीं के उस फिल्म से इस गीत को सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं जेपी दत्ता के बारे में। जेपी दत्ता का जन्म फिल्म जगत से जुड़े परिवार में ही हुआ था। उनके पिता ओपी गुप्ता एक जाने माने फिल्म मेकर थे, जिनसे उन्होंने फिल्म निर्माण की कला सीखी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निर्देशक की थी। निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म सरहद होने वाली थी, जिसमें विनोद खन्ना

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभी बॉर्डर फिल्म का गीत। और इस फिल्म के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जेपी दत्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि वह बॉर्डर फिल्म की सफलता से काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्होंने बताया कि बॉर्डर से वह थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि इतने वर्षों में उन्होंने कई फिल्में बनाई लेकिन उनका नाम सिर्फ बॉर्डर की वजह से ही लिया जाता है, जिसका उन्हें थोड़ा बुरा भी लगता है। उन्होंने कहा कि हर स्वतंत्रता दिवस पर बॉर्डर टीवी पर आती है और इससे वे थोड़ा दुखी भी होते हैं। उन्होंने आगे कहा, आप LOC कारगिल के बारे में बात नहीं करते, इससे दुख होता है क्योंकि उन्होंने इन फिल्मों पर भी बहुत मेहनत की थी। तो श्रोताओं, आइए सुनवाते हैं। जैसा कि JP दत्ता जी ने कहा कि उन्हें थोड़ा इस बात का दुख भी लगता था कि उनकी और भी कई फिल्में, देशभक्ति फिल्में बनाई लेकिन उस बारे में उतना जिक्र नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं जो अगला गीत है हमारा, LOC कारगिल फिल्म से ही, रूप कुमार राठौर, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में। सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, चलिए अपने इस कार्यक्रम में संदेशों को शामिल कर लेते हैं। जो हमारे पास जो संदेश आए वो आए स्वर्ण सिंह के, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ताज मोहम्मद, दिग्दर्शन गौर, कविता गौर मेरठ कैन से। और अगला जो संदेश है धर्मेंद्र चीपा का है, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, हरजिंदर शिंदा का अगला संदेश आया है, गाँव नथाना पंजाब से, प्रवीण हागुड़े और इन और अन्य हागुड़े परिवार। जो अगला संदेश है आर कुमार का है, तुलसी मस्कीन, स्वर्ण सिंह हमें संदेश भेज रहे हैं। साथ ही जो अगला संदेश है वो है मेहर अरोड़ा का, और इनके साथ है ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, मस्कीन, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिद्धाना खुराना, प्रकाश शर्मा। और साथ ही जो अगला संदेश है वो है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा का। और अगला संदेश है संजय ढींगिया, साथ ही सुदर्शन मुखिया में संदेश भेज रहा, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही कलाकार यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे ये कार्यक्रम लेकर ठीक दिन के 2:30 पर। तब तक ले मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त अपराह्न के 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो आश्विन मास शुरू हो गयो है और या को जो पहलो पखवाड़ो है ना वो पितृ पक्ष के रूप में यानी कि कुवार कनागतन के रूप में ना मनायो जाय रहो है।
1: जी हाँ चंपा, कि ये जो पितृ पक्ष चल रहे हो है ना, या मैं हूँ ब्रजधरा की उत्सव धर्मी जो संस्कृति है वहां को बड़ो सुंदर सो स्वरूप दिखाई पड़ रहे हो है, जहाँ पे सांझी कला उत्सव ब्रज के मंदिरन में देवालयन में मनाए जा रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, सांझी को बनाए के और अपने इष्ट को रिझाए के ना लाड़ लड़ायो जाए रहो है के जो प्रतिपदा तिथि है ना
1: जी
0: आश्विन मास की वाही ते और आश्विन अमावस तक यानी कि पूरे एक पखवाड़े तक ये जो सांझी को त्योहार है ना मनायो जाए रहो है।
1: इन 16 दिनान में नित्य उत्सव हुए हैं और ऐसे ऐसे मंगल मनोरथ है रहे हैं कि तनिक देखें आपके सूखे रंगनते फूलनते फल पानी जाके ताई ब्रिज बहुत जानो जाए है कि
0: जी
1: गोबर ते जो गोबर सांझी बना में है वाकी छवि तो अनुपम होए है।
0: बड़ो अनूठो ही मेल है सांझी को और गोबर को और ऐसी मान्यता है कि ब्रजराज कृष्ण अपने ग्वाल वालन के संग अपने सखान के संग जब गोचारण करके आते ना तो राधा रानी ना अपने सखियन के संग फूलन की सांझी बनाए करती यानी कि उनको स्वागत करती।
1: चंपा जी, ये जो आप सांझी की बात कर रहे हो जाकू के ब्रिज में देवालय सांझी कहो जाए है, और हमारे वाणी कारण ने हमने बड़ी सुंदर सुंदर रचना करके हैं जो कि कन्हैया के प्रति प्रेम भाव में प्रकट भयो है। तनिक देखो तो सही, कैसे कहो कि राधा प्यारी कहो सखिन सो सांझी धरोरी माई।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, आप देखो ना कि हमारे ब्रज धरा की जो वृंदावनी उपासना है ना वहाँ में सांझी को बड़ो अहम स्थान है और राधा माधव की जो लीला है ना वो या सांझी के माध्यम से ना जीवंत तो हो ही रही है। कुवार कनागत मावस दिन 15 सांझी को श्रृंगार रस रस रसिक रसिक है काना कलाकार करतार कनुआ मनुआ मन भावन को सांझी को त्योहार।
1: त्योहार।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये सांझी को समर्पित ब्रज को लोकगीत सुन रहे थे। तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो सांझी को जो उत्सव है, ब्रज की देवालय परंपरा में ये तो प्रतिदिन मनायो ही जा रहे हो है। पर हम संपूर्ण ब्रज मंडल की बात करें ना, तो यह सांझी के ही मेले में देखो जो हमारे ब्रज की लोक नाट्य विधा है ना, उनको भी मंचन हो रहे हो है।
1: जी हाँ चंपा, तनिक देखो तो सही, ये जो सांझी को उत्सव है ना, ये सामान्य उत्सव ना है, ये तो
0: जी
1: हमारे सामाजिक सौहार्द, प्रेम और बालकान की कला के प्रदर्शन को उत्सव
0: तो
1: है।
0: नृत्य गोपाल जी, जब लोक विधान को, लोक कलान को प्रदर्शन हो रहे हो है, तो ऐसी काउ विदा की ओर अपने भैया बहनान को ले चलें।
1: हाँ हाँ चंपा जी ले चलो।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये नौटंकी सुदामा चरित, और या के लेखक हैं सत्यनारायण केशव रई।

0: अरे ओ भैया द्वारपाल।
1: हाँ भैया, हाँ क्या बात
0: भैया, द्वारकापुरी यही है ना?
1: हाँ यही है भैया, जाइते कहें द्वारका।
0: अरे भैया यहाँ कन्हैया रहे, यहाँ भीतर
1: जाइए। कन्हैया कन्हैया मत करे भैया, महाराजा धराज।
0: अच्छा अच्छा,
1: कन्हैया कौन, कहाँ से आए हो?
0: अच्छा भैया, हाँ महाराजा धराज कृष्ण कन्हैया से जाके कहो भैया कि तुम्हारो एक मित्र आयो है सुदामा।
1: ओ मित्र, अरे भैया जा जा अपनो काम कर भैया, अपने घर को जा, ऐसे ही मित्र हो।
0: भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ भैया, बड़ा थके हारे हूँ मैं, जल्दी जाके कह दे भैया।
1: तो कह देंगे भैया, कह देंगे, जा हाँ। बैठ जा, बैठ जा।
0: अच्छा हाँ। अच्छा,
2: अरे कहा भैया द्वारपाल, कहा कह रहे हो? कौन सुदामा? सुदामा सुदामा तो मेरे बचपन को परम मित्र है। अरे भैया वह जल्दी से बुलाए के ले आओ।

0: रख में रहे कहां के ही
1: मदा भैया
2: भैया कछु ना दियो
1: जी
2: कछु ना दियो।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप नौटंकी सुदामा चरित सुन रहे हते, या के लेखक है सत्यनारायण केशोरैया और निर्देशक है डॉक्टर कांता पंत, संगीत निर्देशक है गोकुल चंद गोसाई
1: और यहाँ में भाग लेवे वाले कलाकार है मदन मोहन ब्रजवासी, माया निगम, रामदयाल शर्मा, कुमुद कुमार, गोकुल चंद गोसाई और नगाड़े पे संगत कर रहे अत्तन खां। चंपा देखो तो सही, आपने कितनी बढ़िया नौटंकी सुनवाई है। और ये जो उत्सव हैं, मेले हैं, उनमें लोक कलान को जो स्वरूप जहां जहां दिखाए जा रहे हो है, यहाँ में वृंदावन के ब्रह्म कुंड की चर्चा जरूर हुए है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और यहाँ मेले को जो समय है ना, प्रतिदिन संध्या को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो हम तो अपने प्यारे भैया बहनानते कह में ब्रह्म कुंड को जो ये सांझी को मेलो चल रहे हो है, कल यानी 4 अक्टूबर तक चलेगो, तो हमारा तो आप यही निवेदन है, आप ब्रज वसुंधरा में या सांझी के मेले देखवे को पधारो और आगामी जो मेले लगवे वारे हैं उनने भी देखवे को ब्रज धरा में पधारो। हाँ प्यारे भैया बहनाओं, आप तो जानो हो, बात तो करवे के काजे बहुत सारी हैं, समय को अपनो संकेत हो रहे है, तो इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यही सम्पन्न होवे है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग जायवी की अनुमति प्रदान करें।
0: नमस्कार।

सुनते हैं नाटक इंतजार, लेखिका आकांक्षा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनेंगे।

0: ठीक है रिमझिम, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना अपना,
1: तुम भी, और हर रोज बताना ठीक हो या नहीं।
0: ठीक है, जब भी डर लगे याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो।
1: जाओ, देश का इंतजार है और मेरा भी, पर मेरा थोड़ा लंबा होगा।
0: चलता हूं।
1: हाँ।
2: उस दिन रिमझिम ने पहली बार समझा एक फौजी की पत्नी होने का मतलब क्या होता है। दरवाजे पर खड़े होकर अपने सबसे करीबी इंसान को जाते देखना और फिर भी मुस्कुराते रहना।
3: लद्दाख, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और एक ऐसी ड्यूटी जहां नेटवर्क भी मुश्किल से साथ देता है। हर कॉल किसी तोहफे की तरह लगती थी।
4: हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है?
5: हेलो
4: रिमझिम, हेलो।
5: हाँ, सुनाई दे रहा है। कैसे हो? खाना खाया?
4: हाँ खा लिया, यहाँ सब ठीक है।
5: हाँ।
4: बस ठंड बहुत है। तुम बताओ, लिखना वगैरह चल रहा है?
5: हाँ, एक नया आर्टिकल लिख रही हूँ, एक फौजी की पत्नी के इंतजार पर।
4: अच्छा, तो मैं उसका इंस्पिरेशन हूँ?
5: तुम और तुम्हारी ये दोरिया, दोनों। ऋषि,
1: हेलो हेलो ऋषि। फिर कट गया।
3: ऐसे ही दिन बीतते गए, कभी कॉल पूरी होती कभी बीच में कट जाती, पर हर बार रिमझिम फिर से फोन के पास इंतजार करती अगली घंटी के लिए। 6 महीने बीत गए और दोनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, छुट्टी कब मिलेगी।
2: ऋषि सच बता, घर की याद आती है या नहीं?
4: हर पल आती है दोस्त, पर तू बता, शादी को 13 भी तो ज्यादा साल नहीं हुए, श्रुति को कैसे संभालता है इतनी दूर से?
2: वो मुझसे भी ज्यादा मजबूत है भाई, और तेरी रिमझिम भी तो वैसी ही लग रही थी जब आखिरी बार मिला था।
4: हाँ, वो डरती बहुत है पर हिम्मत भी बहुत रखती है, बस उसे अभी समय लग रहा है ये सब समझने में।
2: अरे समझ जाएगी दोस्त, हम सब समझ जाते हैं, बस वक्त लगता है। चल छुट्टी मिले तो साथ ही चलते हैं।
4: पक्का यश, तू मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। इस पोस्ट पर तेरे बिना ये ठंड और भी मुश्किल होती।
2: और नहीं तो क्या। चल एक और चाय पीते हैं।
4: चल।
6: उस बंजर बर्फीली जमीन पर ऋषि और यश की दोस्ती एक नई गहराई पा रही थी, एक ऐसा रिश्ता जो आगे आने वाले तूफान में दोनों परिवारों को एक दूसरे के करीब ला देगा।
3: रिमझिम, सच बताऊं, यश के जाने के बाद घर बहुत सूना लगता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या?
1: हर रोज श्रुति, पर तुमसे बात करके थोड़ा हल्का लगता है, लगता है कोई तो है जो ये सब समझता है।
3: हम फौजी पत्नियां ना शायद इसीलिए एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं, क्योंकि कोई और इतनी आसानी से नहीं समझ सकता ये इंतजार।
1: सच कहा। चलो एक वादा करते हैं, जब तक यश और ऋषि दोनों वापस नहीं आते हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।

उस दिन से श्रुति और रिमझिम की दोस्ती सिर्फ एक रिश्तेदारी नहीं रही, वो एक दूसरे का सहारा बन गई उस इंतजार में जो दोनों एक साथ काट रही थीं।

हर फौजी की पत्नी एक अलग किस्म की ज़िंदगी जीती है, जहाँ प्यार चिट्ठियों में, कॉल की घंटियों में और कभी कभी सिर्फ खामोशियों में महसूस होता है। ऋषि, तुमने कहा था ना, जब आसमान देखूं तो तुम्हें याद कर लूं। आज भी देख रही हूँ और लग रहा है तुम कहीं उतनी दूर नहीं हो जितना नक्शे पे दिखता है।

0: हेलो
1: आवाज आ रही है?
0: ऋषि, आज आवाज साफ आ रही है, गुड साइन है। हाँ
1: आवाज आ रही है? हाँ, आज नेटवर्क मेहरबान है। कैसी हो?
0: ठीक हूँ, बस तुम्हारा इंतजार है। छुट्टी का कुछ पता चला?
1: अभी कुछ पता नहीं मैडम। और सुनो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा। थोड़ी और स्ट्रांग हो जाओ। अगर मैं वापस नहीं आया तो
0: ऋषि,
1: तब भी तो तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना है ना।
0: ये किस तरह का मजाक है ऋषि?
1: अरे अरे, मैं तो बस मतलब मैं मजाक कर रहा था रेम जेम। अब रोना मत शुरू कर देना।
0: मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसी बातें मजाक में कैसी लगती हैं। तुम नहीं समझते ऋषि, हर बार जब फोन की घंटी नहीं बजती ना, तो मेरा दिल कितनी बार रुकता है, और तुम ये कह रहे हो।
1: रिम जिम, सॉरी, मुझे एहसास नहीं था कि ये इतना गहरा लगेगा। मैं बस तुम्हें मजबूत देखना चाहता था, इसीलिए।
0: मुझे मजबूत करने के लिए तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है ऋषि, बस सही सलामत वापस आ जाओ, यही काफी है।
1: अच्छा सुनो सुनो रिम जिम, गुड न्यूज़ है, मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है। अगले हफ्ते वापिस आ रहा हूं।
0: सच सच में ऋषि ऋषि, ये तो सबसे अच्छी खबर
1: हाँ, बस अब कुछ दिन और।
0: है। मैं अभी से प्लान बनाना शुरू करती हूँ, वही वो पुरानी दिल्ली वाली चाट, छत पर रात की चाय, और हाँ, इस बार मैं तुम्हारी पसंद के राजमा चावल भी बनाऊंगी।
1: मैडम, इतनी प्लानिंग में तो छुट्टी कम पड़ जाएगी।
0: हाँ तो ठीक है ना, अगली बार ज्यादा छुट्टियों की मांग करना मेजर साहब।
1: हाहाहाहा

0: महीने का इंतजार और अब बस गिनती के कुछ दिन। शायद यही फौजी पत्नियों की सबसे बड़ी ताकत है, इंतजार को उम्मीद में बदल देना।
1: छह महीनों का इंतजार अब बस कुछ दिनों में बदलने वाला था। रिमझिम का हर पल अब सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहा था, ऋषि का घर वापस आना।
2: रिमझिम।
3: हाँ?
2: निकल चुके हैं, पठानकोट से होते हुए आ रहे हैं, शाम तक घर पहुंच जाऊंगा।
3: सच?
2: हाँ
3: ठीक है, हर अपडेट देना, मैं इंतजार कर रही हूँ।
2: ठीक है।
1: सुबह से दोपहर तक दोनों लगातार कॉल पर अपडेट लेते रहे। फिर सुबह 5 बजे के बाद ऋषि का फोन बंद आने लगा।
0: क्या हो गया होगा, फोन क्यों नहीं लग रहा?

0: हाँ शायद बैटरी खत्म हो गई होगी या रास्ते में नेटवर्क नहीं होगा। पहाड़ी इलाका है ना, ऐसा होता रहता है। मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ? आ जाएगा फोन अभी उनका।
1: दोपहर बीती, फिर शाम 3 बज गए, वो वक्त जब तक ऋषि को घर पहुंच जाना चाहिए था, पर कोई कॉल नहीं आई।
0: तीन बज गए, ऋषि कहाँ है? उसने तो कहा था कि शाम तक पहुंच जाएगा, क्या करूं? हाँ श्रुति को फोन करके पूछती हूँ, उसकी बात हुई होगी शायद।
2: हेलो। हाँ श्रुति।
3: हाँ
2: यश का फोन लग रहा है क्या? ऋषि का तो सुबह से बंद आ रहा है।
3: नहीं रिमझिम, यश का भी नहीं लग रहा। शायद रास्ते में कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, पहाड़ी इलाका है ना।
2: हाँ शायद हो सकता है ऐसा ही हो। अच्छा ठीक है, कुछ पता चले ना तो बताना मुझे भी।
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: हो सकता है रास्ते में देर हो गई हो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है रिमझिम, प्लीज शांत रहो। क्या करूं? एक बार यूनिट ऑफिस फोन करूं।
2: हेलो, मैं मेजर ऋषि सिंह की वाइफ बोल रही हूँ। उनका फोन सुबह से बंद आ रहा है, क्या आपको कोई अपडेट है?
4: मैडम हमें कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है अभी। उनका कॉन्वॉय पठानकोट के रास्ते से आ रहा था, हो सकता है रास्ते में नेटवर्क इशू हो। हम मिलते ही आपको बताएंगे।
2: ओके ठीक है, पर प्लीज जैसे ही कुछ पता चले बताइएगा।
4: यस मैडम।
1: दोपहर से शाम ढल गई, रात हो गई, घड़ी की सुइयां 12 की तरफ बढ़ रही थी और ऋषि का अभी तक कोई अता पता नहीं था।
0: ऋषि ऋषि ऋषि प्लीज कॉल करो, प्लीज बस एक बार ये बता दो कि तुम ठीक हो प्लीज। श्रुति तुम क्या हुआ?
5: रिमझिम एक्सीडेंट हो गया।
0: क्या?
5: गाड़ी का?
0: किसकी गाड़ी? कैसे एक्सीडेंट? अरे कुछ साफ साफ बताओ ना।
5: मुझे ठीक से नहीं पता, पर यश और ऋषि सर दोनों उस गाड़ी में।
0: श्रुति क्या बोल रही हो तुम? रुको टीवी देखते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो न्यूज में आएगा।
6: ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, पठानकोट के पास लैंडस्लाइड में एक आर्मी व्हीकल बुरी तरह डैमेज हो गया है। जी हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अधिकारी और 1 जवान बुरी तरह जख्मी है।
1: यूनिट ऑफिस पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत RR हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की। पूरे रास्ते रिमझिम और श्रुति दोनों खामोश रहे। हर एक पल भारी था और हर एक सवाल का जवाब अनजान था।
7: मैम प्लीज डोंट बी पैनिक, घबराइए नहीं, हम लोग साथ चल रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचते ही पूरी जानकारी मिलेगी, प्लीज कम।
0: श्रुति क्या होगा अगर?
3: रिमझिम अभी कुछ मत सोचो, बस हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर देखेंगे।
8: अरे सिस्टर
0: प्लीज
8: हटिए, रास्ता दीजिए।
0: सिस्टर मेजर ऋषि सिंह किधर है? अभी अभी एडमिट हुए हैं लैंडस्लाइड एक्सीडेंट से।
9: मैडम डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे, थोड़ा वेटिंग एरिया में रुकिए प्लीज।

0: उस वेटिंग एरिया में हर बेंच पर एक कहानी बैठी हुई थी। किसी की मां, किसी की बीवी, किसी का भाई। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था और एक ही डर।
1: डॉक्टर साहब, मेजर ऋषि सिंह कैसे हैं? प्लीज बताइए।
2: मैम, आई डू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूं आपकी हालत। देखिए, मेजर ऋषि सिंह के सर और दोनों पैरों में गहरी चोट आई है। वो अभी बेहोश हैं, इसलिए हमने उन्हें आईसीयू में रखा है।
1: बेहोश हैं? पर वो ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर?
2: हमें थोड़ा वक्त चाहिए उनकी हालत स्टेबल करने के लिए, पर हाँ, उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज, रिकवरी में थोड़ा वक्त लगता है।
1: डॉक्टर साहब, मेजर यश, मेरे पति।
2: मैम, मेजर यशवीर की हालत थोड़ी ज्यादा गंभीर है। उन्हें सिर में गहरी चोट आई है। सॉरी, अभी वो कोमा में है।
1: कोमा? नहीं, ये नहीं हो सकता। यश, यश। श्रुति, श्रुति, हिम्मत रखो। हम दोनों को हिम्मत रखनी होगी। डॉक्टर ने कहा है वक्त लगेगा, पर वो ठीक हो जाएंगे। हिम्मत रखो प्लीज।
2: मैम, मैं वादा नहीं कर सकता कि कितना वक्त लगेगा। इतना यकीन से कह सकता हूँ, दोनों ऑफिसर्स लड़ रहे हैं और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज, आपको बस उनके लिए मजबूत रहना है। बी स्ट्रॉन्ग।
1: डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ बस एक मिनट के लिए?
2: नो, नॉट नाउ। अभी नहीं मैम, वो आईसीयू में है। थोड़े दिन बाद जब हालत स्टेबल हो जाएगी हम आपको बुला लेंगे। फिलहाल आप यहीं आराम कीजिए। रात भर का सफर मुश्किल रहा होगा आपके लिए भी।
1: ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया। तुमने कहा था ना ऋषि, तुम एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हो, तुम्हें स्ट्रांग रहना है। अब वक्त आ गया है, मुझे वो वादा निभाना है।
3: हेलो माँ जी, मैं रिमझिम।
4: इतनी रात को कॉल, सब ठीक तो है ना बेटा?
3: माँ, माँ जी।
4: बोलो रिमझिम।
3: ऋषि का एक्सीडेंट हो गया है और हम अभी आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में हैं। पर आप टेंशन मत लेना, डॉक्टर कह रहे हैं वो स्टेबल हैं, बस उनके सिर और पैरों में चोट है।
4: ओह मेरा बेटा, हे भगवान, हम अभी निकलते हैं बेटा, तो बस उसके पास रहना।
3: माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं यही हूँ, इनके पास ही हूँ। बस आप लोग आराम से संभल कर आइएगा, रास्ते की चिंता मत कीजिएगा, मैं हूँ यहाँ पर।
4: हाँ बेटा, उसका हाथ मत छोड़ना बच्चा।
3: जी माँ।
0: उस रात जम्मू से दिल्ली का सफर ऋषि के माता पिता के लिए सबसे लंबी रात बन गया, और रिमझिम हॉस्पिटल के उस बरामदे में अकेली खड़ी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रही, क्योंकि अब उसे सबके लिए मजबूत रहना था।
1: माँ जी, आ गए आप।
5: रिमझिम बेटा, तू ठीक तो है ना?
1: जी।
5: रात भर अकेली यहाँ रही।
1: माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि ऋषि ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा।
6: हमारा बेटा फौजी है बेटा, वो लड़ना जानता है, जिंदगी से भी और मुश्किलों से भी। हम सब साथ हैं, हिम्मत नहीं हारनी है बेटा।
1: जी पापा।
6: बेटा, मैंने भी फौज में 30 साल दिए हैं, 30 long years। ये जो रात तूने काटी है अकेले इंतजार करते हुए, ये वही रात है जो मेरी पत्नी ने कई बार काटी थी जब मैं ड्यूटी पर होता था।
1: हाँ जी पापा जी, अब समझ में आता है कि ये परिवार कैसे इतना मजबूत है। आप सबने यही सिखाया है ना, डर के साथ भी हिम्मत से चलना।
6: और तुमने वो सीख आज ही अपना लिया बेटा, मुझे गर्व है तुम पर भी और ऋषि पर भी। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ
1: पापा। ऋषि, ऋषि, ऋषि, तुम सुन सकते हो मुझे?
7: रिमझिम।
1: हाँ ऋषि, हाँ मैं हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ ऋषि। तुम वापस आ गए, तुमने अपना वादा निभाया ऋषि।

0: एक पल बस कुछ सेकंड का था, पर रिमझिम के लिए वो 6 महीनों के इंतजार का जवाब था। डॉक्टर ने बताया ऋषि खतरे से बाहर आ चुके थे, अब सिर्फ धीरे धीरे ठीक होने का वक्त बाकी था।
1: अगले 6 महीने धीरे धीरे बीतते गए, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आया और हर हफ्ता थोड़ी थोड़ी रिकवरी। मेजर यश विर्क धीरे धीरे कोमा से बाहर आए और मेजर ऋषि सिंह के सिर और पैरों की चोटें भी आहिस्ता आहिस्ता भरने लगी।
2: रिमझिम, डॉक्टर ने कहा है यश को अब घर ले जा सकते हैं।
3: सच?
2: हाँ, और कह रहे हैं कि घर पर रहकर यश की रिकवरी बेहतर होगी।
3: ये तो बहुत अच्छी खबर है श्रुति, सच कहूँ तुमने जो हिम्मत दिखाई ना इन 6 महीनों में वो काबिले तारीफ है।
2: तुम भी रिमझिम, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनी रही, वरना ये वक्त निकालना बहुत मुश्किल था रिमझिम।
3: बिल्कुल ठीक कह रही हो श्रुति।
1: ऋषि मेरे दोस्त, आखिरकार बोल पा रहा हूं मैं तुझसे। कैसा है तू?
4: तुझसे बेहतर हूं शायद। कोमा से वापसी का तेरा रास्ता थोड़ा लंबा था दोस्त।
1: हाँ, पर वापस तो आ गया ना। तू बता, चलना फिरना शुरू हुआ?
4: हाँ, थोड़ा थोड़ा, सहारे के साथ। डॉक्टर कहते हैं 3-4 महीने और लगेंगे।
1: ठीक है, तब तक दोनों फैमिलीज मिलकर वो पुराना प्लान पूरा करते हैं जो हमने पोस्ट पर बनाया था, याद है?
4: हाँ।
1: एक साथ छुट्टी, दोनों फैमिलीज एक जगह।
4: यश, उस दिन गाड़ी में तू मेरे बगल में था, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
1: बेकार बात मत कर ऋषि, हम दोनों फौजी हैं, ये रिस्क हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। जो हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं, पहाड़ ने अपना रास्ता दिखाया और हमने अपनी जिंदगी जी, समझा?
4: ठीक कह रहे हो दोस्त।
5: अरे श्रुति बैठो ना, माँ बैठी, चाय मैं बना के लाती हूँ।
6: कोई नहीं, कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं यार।
5: माँ चलो, पसंद है? हाँ, कॉफी बनाई है हरी वाली। हाँ, खाने माँ अभी लेकर आई। रुको,
6: आज के गाने नहीं, आज के शुक्रवार के गाने बजेंगे।
5: लीजिए पापा जी, चाय लीजिए।
7: आज तो घर में फिर से वही रौनक लग रही है जो ऋषि की शादी के वक्त थी।
1: बिल्कुल सही कहा जी आपने।
7: बस,
1: अरे ऋषि, तू तो वैसे ही हीरो बन गया टीवी पर, मैं तो तेरे साथ बस कोमा में नींद पूरी करने गया था।
8: चलो, अब आपकी नींद पूरी हो गई है ना। अच्छा रिमझिम सुनो ना, अगली बार जब हम मिले तो हंसी मजाक के लिए मिले, हॉस्पिटल के बरामदे में नहीं प्लीज। हाँ पक्का श्रुति, अगली मुलाकात सिर्फ खुशियों के लिए होगी। बिल्कुल,
6: वेरी गुड, वेरी गुड।
4: कौन सी किताब पढ़ रही हो रिमझिम?
3: अपनी ही लिखी हुई एक नई कहानी, एक फौजी की पत्नी के इंतजार पर।
4: इस बार भी मैं इंस्पिरेशन हूँ।
3: हाँ, पर इस बार कहानी का अंत बदल गया है। पहले सिर्फ इंतजार था, पर अब उस इंतजार के बाद वापस आना भी है।
4: तुमने वायदा निभाया रिमझिम, तुम सच में मुझसे ज्यादा मजबूत निकली।
3: तुम्हें ने सिखाया था कि दूरियां भी प्यार को कमजोर नहीं कर सकती, बस इंतजार को थोड़ा भारी बना देती हैं।
4: और अब जब मैं ठीक हो रहा हूं, अगली पोस्टिंग की भी कोई गारंटी नहीं, पर इस बार पता है हम दोनों उस इंतजार के लिए तैयार हैं।
3: हाँ, क्योंकि अब मुझे पता है दूर रहकर भी तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। ऋषि, ये मैंने लिखा है, सुनोगे?
4: सुनाओ।
3: इंतजार कोई सजा नहीं है, ये एक रिश्ते की परीक्षा है, और हर वो रिश्ता जो इस परीक्षा से गुजरकर भी टूटता नहीं वो हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है। मैं रिमझिम, एक फौजी की पत्नी, अब जानती हूं कि घर सिर्फ 4 दीवारी का नाम नहीं, घर वो इंतजार है जो हर बार किसी के वापस आने पर पूरा होता है। कैसा है?
4: खूबसूरत। बहुत अच्छा।

0: अच्छा लिखा है।
1: थैंक यू।
2: हर फौजी की कहानी में एक इंतजार होता है और हर इंतजार के पीछे एक ऐसी ताकत होती है जो खुद उस इंतजार ने जन्म दी होती है। ऋषि और रिमझिम की कहानी सिर्फ एक हादसे या एक पोस्टिंग की कहानी नहीं, ये कहानी है उस अनकहे रिश्ते की जो दूरियों में भी मजबूत होता चला गया।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक इंतजार। लेखिका थी आकांक्षा। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे अतुल जस्सी, काजल सूरी, शोभा जस्सी, ऋषि उनियाल, श्वेता शर्मा, मीनू शर्मा और संजय वर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर? अरे क्यों बैठी है मुंह लटका कर? खेल का टाइम है, कुछ खो गया है क्या?
2: खो ही जाएगा, आने वाले समय में लोग मैप लगा कर ढूंढेंगे। फोन में रास्ता बताने वाली दीदी का काम बढ़ने वाला है।
1: अरे क्या खो गया है?
2: इस बोतल का पानी जो अब नहीं है, तूने अपनी साइकिल की सीट पर डाल दिया फिजूल में।
1: अरे सीट गर्म हो गई थी।
2: मुझे प्यास लगी है, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
1: अरे तो ला देता हूँ ना पानी।
2: जा ढूंढ, आगे जीपीएस लगेगा तब पानी मिलेगा।
1: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी वाणी है तेरी।
2: याद रखियो, पानी वाणी और कहानी बचाकर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
1: बात तो तेरी काम की लगती है।
2: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में। फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा सा सेव कर, तभी तो मिलता रहेगा।

0: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची है।
1: अब से कुछ ही देर में यानी शाम के 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: 代理广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना

0: नमस्कार। खेल की दुनिया की हर बड़ी हलचल, खबर, जीत और संघर्ष के साथ मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिनव कुमार झा। स्वागत करते हैं आपका खेल खिलाड़ी के इस खास संस्करण में। और आज के संस्करण में खास बातचीत होगी एशियन गेम्स 2026 में आज खेले गए मुकाबलों की, साथ ही क्रिकेट में बात करेंगे इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए कल हुए ड्रॉ मैच मुकाबले के बारे में, साथ ही लाइव अपडेट्स देंगे आपको अभी चल रहे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मुकाबले की भी, और साथ ही आज शाम होने वाले इंडिया बनाम ब्राजील फुटबॉल मैच का रहेगा खास प्रीव्यू। तो चलिए सबसे पहले एक आज खेल खिलाड़ी की शुरुआत करते हैं एशियन गेम्स 2026 के साथ।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: चौदह दिनों से मैदानों में गूंज रही हैं तालियां, तिरंगे के साथ उठ रहे हैं हाथ और जीत के बाद छलक रहे हैं जज्बात।

0: एशियन गेम्स अब अपने आखिरी पड़ाव में, कई बड़ी कहानियां लिखी गईं, कई मुकाबलों के अनुकूल नतीजे आए तो कई भारतीय खिलाड़ी पदक के साथ चमके।
1: एशियन गेम्स 2026 के इस अहम दौर में भारत का एक्शन लगातार जारी है। क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच पुरुषों के स्वर्ण पदक मुकाबला, हॉकी में भारतीय पुरुष टीम के सामने मलेशिया की चुनौती, वहीं तीरंदाजी, कुश्ती, गोल्फ और कई दूसरे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की और भारत के लिए दिन की शुरुआत ही शानदार उपलब्धियों के साथ हुई।
0: शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां आज फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है।
1: भारत ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। भारतीय पारी की शुरुआत से ही बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाया। अभिषेक शर्मा ने शानदार 68 रन की पारी खेली और टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद तिलक वर्मा ने भी मोर्चा संभाला और तूफानी अंदाज में 51 रन बनाए। इन दो पारियों की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।
0: लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। उसके 3 विकेट महज 39 रन के स्कोर पर गिर गए थे और भारत पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद हसन नवाज और सैम अयूब ने पाकिस्तान की पारी को संभाल लिया। दोनों ने मिलकर 87 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और अचानक मुकाबला पूरी तरह खुल गया। पाकिस्तान की टीम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से मैच निकल सकता है। हसन नवाज खास तौर पर लगातार भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे।
1: ऐसे में 15वें ओवर में शिवम दुबे ने सैम अयूब को आउट कर भारत को बेहद जरूरी सफलता दिलाई। इस विकेट के बाद भारतीय टीम ने फिर से मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। हालांकि हसन नवाज ने हार नहीं मानी और आखिरी ओवर तक डटे रहे। हसन ने 96 रन की शानदार पारी खेली और पाकिस्तान को जीत के बेहद करीब बनाए रखा,
0: लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी चरण में दबाव बनाए रखा। जसप्रीत बुमराह का 19वां ओवर भी निर्णायक साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 11 रन दिए और भारत को मुकाबले पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। आखिरकार पाकिस्तान की टीम 212 रन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और भारत ने मुकाबला 19 रन से अपने नाम कर लिया।
1: इस जीत के साथ भारत ने एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीत लिया है। खास बात यह है कि इससे पहले भारतीय महिला टीम भी फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीत चुकी है। यानी एशियन गेम्स में क्रिकेट के दोनों गोल्ड मेडल इस बार भारत के नाम रहे। चलिए अब बात करते हैं गोल्फ की। गोल्फ में प्रणवी ओट्स ने महिलाओं की व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रणवी ने 15 अंडर 265 का स्कोर किया और सिंगापुर की शैनन श्याओ यिनटिन तथा चीन की यिंग रोनिन से एक शॉट आगे रही। दोनों खिलाड़ियों ने 14 अंडर 266 के स्कोर के साथ संयुक्त रजत पदक जीता। इस जीत के साथ प्रणवी एशियन गेम्स में महिलाओं की व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। गोल्फ की महिला टीम स्पर्धा में भी भारत को रजत पदक मिला। प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की टीम ने 14 अंडर 546 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। चीन ने 22 अंडर 538 के साथ स्वर्ण, जबकि चाइनीज ताइपे ने 10 अंडर 550 के साथ कांस्य पदक जीता। और अब रुक करते हैं तीरंदाजी का, जहां कुमकुम मोहोड़ ने व्यक्तिगत रिकर्व में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में उनका सामना साउथ कोरिया की ओ ये जिन से था और मुकाबला आखिरी तीर तक बेहद करीबी रहा। कुमकुम शुरुआत में 2-0 से पीछे थी, इसके बाद स्कोर 3-1 हुआ और फिर उन्होंने वापसी करते हुए मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। चौथे सेट के बाद ओ ये जिन ने 5-3 की बढ़त बना ली, लेकिन कुमकुम ने आखिरी सेट में 30-28 से जीत दर्ज कर मुकाबले को शूट ऑफ तक पहुंचाया। शूट ऑफ में ओ ये जिन ने 8 अंक हासिल किए, जबकि कुमकुम ने 10 का परफेक्ट निशाना लगाया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वो एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बन गई हैं। एशियन गेम्स में जाने से पहले ही कुमकुम अपनी परफॉर्मेंस और मेडल्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी। आइए सुनते हैं एशियन गेम्स में जाने से पहले उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की थी।
2: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी और मेडल तो आएगा, 100% आएगा। और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
1: इससे पहले सेमीफाइनल में कुमकुम ने चीन की वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट जू जिंगयेई को 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में पहुंचने के साथ ही उन्होंने अपने एनओसी के लिए एलए 2028 ओलंपिक कोटा भी सुनिश्चित कर लिया। महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व के दोनों फाइनलिस्ट एनओसी को यह कोटा मिला है। पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व में भी भारत के खाते में पदक आया।

0: नीरज चौहान ने अपने ही साथ धीरज बोम्बदेवरा को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। धीरज तीसरे सेट के बाद 4-2 से आगे थे, लेकिन नीरज ने चौथे सेट में 3-28 से वापसी की और फिर निर्णायक पांचवें सेट में 29-28 से जीत दर्ज की। इसके साथ नीरज एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। उनसे पहले तरुणदीप राय ने 2010 में रजत पदक जीता था।
1: अब बात करते हैं ताइक्वांडो की। भारतीय ताइक्वांडो अभियान का फोकस महिला खिलाड़ियों पर रहा। भारत की कशिश मलिक ने महिलाओं के -57 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में दक्षिण कोरिया की किम यू जिन का सामना किया। कशिश को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें 4-15 और 2-14 से दोनों राउंड में हार मिली, जिससे वे स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हो गई। इसके बाद महिलाओं के +67 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की ज्योति यादव राउंड ऑफ 16 में थाईलैंड की कन्ना लुकचुएन चुकलीन के खिलाफ उतरी। ज्योति को भी 0-2 से हार मिली। दोनों राउंड में स्कोर 4-15 और 2-15 रहा। इस परिणाम के साथ ताइक्वांडो में भारत का 2026 एशियाई खेल अभियान समाप्त हो गया।
0: अब चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की ओर, जहां भारत और थाईलैंड के बीच पांचवें स्थान के लिए मुकाबला आखिरी सेट तक पहुंचा और नतीजा भी बेहद करीबी रहा। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को पांचवें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर पांचवा स्थान हासिल किया, जबकि भारत छठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला पांचवे और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से चार्ल्स जेरेमी विनेथ, जोएल बेंजामिन जेबराज और अश्वल राय ने स्कोरिंग में अहम योगदान दिया। जोएल बेंजामिन जेबराज ने भी मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन मुकाबले के आखिरी पलों में उनका एक स्पाइक बाहर चला गया। इसके बाद थाईलैंड ने लगातार जरूरी अंक हासिल किए और मैच अपने नाम कर लिया। इस तरह भारत ने 2 बार पीछे रहने के बाद वापसी करते हुए मुकाबले को पांचवे सेट तक जरूर पहुंचाया, लेकिन निर्णायक सेट में 15-17 से हार गया। थाईलैंड ने पांचवा स्थान हासिल किया और भारत को छठे स्थान पर रहना पड़ा। और अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ और रुक करते हैं वाटर स्पोर्ट्स का, जहां आज सुबह सेलिंग में भी भारतीय चुनौती देखने को मिली। गर्ल्स डिंगी इवेंट में भारत की माही वर्मा ने अपनी ओपनिंग सीरीज की अंतिम दोनों रेस पूरी की। सुबह हुई रेस 11 में माही ने काफी संभल कर प्रदर्शन करते हुए छठा स्थान हासिल किया और इसके तुरंत बाद आयोजित हुई रेस 12 में उन्होंने अपनी निरंतरता बनाए रखते हुए एक बार फिर छठे स्थान पर ही फिनिश किया। अगर पूरी 12 रेस के अभियानों की ओवरऑल समरी देखें तो माही वर्मा का यह सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां उन्होंने रेस थ्री में पहला स्थान हासिल कर अपनी काबिलियत साबित की थी। हालांकि पहली रेस में मिली शुरुआती रुकावट आरईटी के कारण मिले 10 अंकों और कुल 57 नेट पॉइंट्स के साथ वो ओवरऑल स्टैंडिंग में 8वें स्थान पर ही रही। वहीं थाईलैंड की पिंचा चनोक 25 नेट पॉइंट्स के साथ शीर्ष स्थान पर रही।
1: अब बात करते हैं ताइक्वांडो की। भारतीय ताइक्वांडो अभियान का फोकस महिला खिलाड़ियों पर रहा। भारत की कशिश मलिक ने महिलाओं के -57 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में दक्षिण कोरिया की किम यू जिन का सामना किया। कशिश को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें 4-15 और 2-14 से दोनों राउंड में हार मिली, जिससे वे स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हो गई। इसके बाद महिलाओं के +67 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की ज्योति यादव राउंड ऑफ 16 में थाईलैंड की कन्ना लुकचुएन चुकलीन के खिलाफ उतरी। ज्योति को भी 0-2 से हार मिली। दोनों राउंड में स्कोर 4-15 और 2-15 रहा। इस परिणाम के साथ ताइक्वांडो में भारत का 2026 एशियाई खेल अभियान समाप्त हो गया। अब बात करें रग्बी टीम की, तो भारतीय महिला रग्बी सेवन्स टीम को 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में कजाकिस्तान से 0-20 से हार झेलनी पड़ी। ये मुकाबला नागोया सिटी के मिजूहो पार्क रग्बी फील्ड में खेला गया। दोनों हाफ में 0-10, 0-10 के एक

एकतरफा स्कोर के बाद कप्तान शिखा यादव की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम को छठे स्थान से संतोष करना पड़ा। इससे पहले पांचवें और आठवें स्थान के वर्गीकरण मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने सिंगापुर को 22-5 से हराया था। भारत की ये जीत महत्वपूर्ण रही क्योंकि इससे टीम ने पांचवें और आठवें स्थान के अगले मुकाबले के लिए अपनी स्थिति मजबूत की थी। भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत हांगकांग चीन के खिलाफ 7-33 की हार से की थी और इसके बाद गत चैंपियन चीन से 2-43 से हार मिली। हालांकि पूल चरण के अंतिम मैच में भारत ने मलेशिया को 26-5 से हराकर वापसी की। और अब श्रोताओं बात करते हैं कुश्ती के अंतिम दिन भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। नगोया के इनाई स्पोर्ट्स सेंटर में पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, 74 किलोग्राम और 97 किलोग्राम तथा महिला 53 किलोग्राम और 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले हुए। भारत की ओर से अमन शेरावत, अंतिम पंघाल, सागर जगलान, दीपक पूनिया और मनीषा भानवाला मैट पर उतरे। अमन शेरावत ने पुरुष 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जहां उनका सामना उत्तर कोरिया के विश्व चैंपियन चोंग सोंग हान से स्वर्ण के लिए होना था। पहले ही राउंड में अमन ने 4-1 की बढ़त बना ली। दूसरे राउंड में कोरियाई खिलाड़ी से टक्कर जरूर मिली, लेकिन वो राउंड भी अमन ने 7-6 से अपने नाम किया, जिसकी बदौलत फाइनल स्कोर 11-7 का रहा और गोल्ड मेडल अमन शेरावत का। इससे पहले आज के दिन की शानदार शुरुआत करते हुए अमन ने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से हराया और क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नुर्दनात एतानोव को 12-1 से मात दी। सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान के एयाल बेलोल्यूबस्की के खिलाफ वह शुरुआती दौर में 2-6 से पीछे थे, लेकिन दूसरे दौर में 12 अंक जुटाकर मुकाबला 14-8 से जीत लिया और फाइनल में इतिहास लिखने के लिए पहुंच गए। अब बात करें महिला 53 किलोग्राम में तो अंतिम पंघाल ने भी फाइनल में जगह बनाई। श्रोताओं, फाइनल में उनका सामना जापान की मोई कियोका से हुआ, जहां उन्हें 1-9 से हार मिली। पहले राउंड में जापानी खिलाड़ी ने 2-0 की बढ़त बनाई और दूसरे राउंड में 7-1 से अजय बढ़त के साथ मोई कियोका ने गोल्ड मेडल पर बाजी मारी, तो वहीं अंतिम पंघाल को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। बात करें उनके अभियान की तो उन्होंने राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान की शुगेला ओमरबेक को 9-0 और क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की सकीब जामल एसबोसिनोवा को 8-0 से हराया। सेमीफाइनल में चीन की झांग जिनके खिलाफ अंतिम शुरुआत में 0-1 से पीछे थी, लेकिन दूसरे दौर में वापसी करते हुए 6-1 से जीत दर्ज की। अब बात करें दीपक पूनिया की तो पुरुष 97 किलोग्राम के सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन उज्बेकिस्तान के शेरजोर्ड पोयोनोव से बेहद करीबी मुकाबले में 8-9 से हार गए। इससे उनका स्वर्ण पदक का मौका समाप्त हुआ। उसके बाद वो मंगोलिया के खिलाड़ी गन कुयाक के खिलाफ कांस्य पदक के मुकाबले में उतरे, जहां उन्हें 2-1 से जीत के साथ कांस्य पदक भी मिला। इससे पहले दीपक ने राउंड ऑफ 16 में चीन के जुनपेंग जोउ को 12-2 से हराया था, जबकि क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली फुई फुंग फिनसेट के हटने के कारण उन्हें वॉकओवर मिला था। पुरुष 74 किलोग्राम में सागर जगलान को क्वार्टर फाइनल में ईरान के यूनिस इमामी से 0-10 की हार मिली, लेकिन उन्होंने रेपचेज में वापसी करते हुए उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालोव को 7-3 से हराया। इस जीत के साथ सागर कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए और वहां कजाकिस्तान के नुरकोजा कायपानवोव के हाथों 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। महिला 57 किलोग्राम में मनीषा भानवाला ने दक्षिण कोरिया की यंगजीन क्वान को 8-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन जापान की अकारी फुजी नामी से

0: बहुत
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: करतार सिंह को अच्छी से राग नहीं सुनवा दी
1: जरूर सुनवाएंगे।
0: मैंने खजान सिंह, राम बख्शी, चंद्रकांता, अजय कुमार, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो शशि भाई का नमस्कार।
1: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: महेंद्र सिंह बोल रहे, विकासपुरी गांव बरहाना जिला बुलंदशहर।
1: महेंद्र भाई आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: करतार सिंह को सुनवा देना
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: और मेरे साथी आरती भारती स्वाति मिसेज कविता देवी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं हरी सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: करताल को सुनवा देना।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी, मुकेश, बलेश, डॉक्टर, गीता और मेरी पोती पोतान, नीतीश, हेमपाल, पुष्पंदर, जीतू, ललित, चंदन, भूमेश, छवि, निशा, कंचन, नीता और रिश्तेदार हैं कुछ, संजीव, ज्योति, शिवचरण, मनोहर, गोविंद और हरवंशी, मनवीर। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर करतार सिंह से ये रागनी। किस्सा रहेगा राजा महीपाल का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, शशि जी नमस्कार। हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: नमस्ते सैनी जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बबीता चौधरी को सुनना चाहूंगा। साथ में है गामुड़ी से बनवारी लाल यादव, शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा महेंद्रगढ़ से, और प्रकाश जी और राहुल जी सुनना चाहते हैं। राम राम जी।

0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: जितेंद्र सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज सुनना चाहेंगे जी बबीता चौधरी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम बोलूंगा जी, लगी संजना, अंशिका, टिंकल, कन्नू, प्राची, वीर सोलंकी, पिताजी श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माताजी श्रीमती निर्मला देवी, गांव करकोरा से गजेंद्र सिंह प्रधान जी, श्याम चौहान, सतवीर सिंह बैद जी।
0: हेलो ग्राम संसार
2: जी, हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: राजीव बोल रहा जी, अरसोली से।
0: राजीव भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: बबीता चौधरी को सुनेंगे जी।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी,
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं काशीराम दलाल, निवासी ग्राम घासरूर उपगाड़ी, तहसील और जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से बोल रहा जी।
0: काशीराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: अजय बबीता चौधरी को सुनवा दीजिए। कुछ नाम है
0: जी।
3: बलदेव सिंह आर्य, अनुज दलाल, नितिन दलाल, अर्पित दलाल, प्रियांशु दलाल, निकिता चौधरी, विक्की चौधरी, कोमल मटरमल, साहिल ठाकुर, पहलवान सुरेश पारडवास।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मोहल्ला दोजवाला, शिकारपुर, बुलंद शहर से बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ जी।
0: बबली भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: बबीता चौधरी जी की आवाज में छिछला में सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और हमारे परिवार वालों के नाम है सर जी, पत्नी है पुष्पा देवी, लड़की डोली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, लड़के पूजा रानी, लड़का छोटा भीम, शीशपाल अकेला और हवलदार पश्चता वाले और अनवर बिहारी जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं हीरालाल बोल रहा हूँ, गांव मुलेटा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश।
0: हीरालाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: बबीता चौधरी सुनवाएंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बबीता चौधरी से ये लोकगीत।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।
1: हाँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक

0: प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय नागरिकों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण, 97 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
4: नमस्कार।
3: अमित, जैसा कि हम सब चाहते हैं, हमारी सरकारें प्रयासरत हैं कि किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा उत्पादन और मिट्टी की सेहत मजबूत

0: मजबूत बनाए रखने के लिए उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। और इसके लिए विकल्प है कि हम जैविक एवं प्राकृतिक खेती करें, जो किसानों के लिए और हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा भाई, जैविक खेती का सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य से है।
0: और आज हम इसी विषय पर बातचीत भी सुनवाएंगे किसान भाइयों को, और साथ ही हम चर्चा करेंगे MSP पर, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर।
1: और भाई कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन भी कराते हैं, वहीं वहीं मौसम का जो पूर्वानुमान होता है वो भी उन तक पहुंचाते हैं।
0: वाकई में बहुत अनमोल जानकारियां आज हम लेकर आए हैं, साथ ही हम अपने जो कृषि वैज्ञानिकों की कृषि सलाह है, जिसे सुनकर हमारे किसान भाई बहन अपनी खेती बाड़ी के लिए अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, उन सलाहों को भी आप सभी से साझा करेंगे।
1: बिल्कुल प्रतिमा, आपने सही कहा, और कार्यक्रम में कोशिश होती है कि हमारे किसान भाई बहनों तक वो बात जरूर पहुंचे जो सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहती है और कोशिश करती है कि हमारे किसान भाइयों को समय पर उनकी जो खेती बाड़ी है, जो फसल है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहे।
0: बिल्कुल सही कहा, और हम आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। किसान भाइयों, खेती में किसान की मेहनत, समय और संसाधन तो लगते ही हैं, ऐसे में उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी उद्देश्य से सरकार प्रमुख कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करती है। MSP वो घोषित मूल्य है जिसके लिए आधार पर निर्धारित फसलों के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था संचालित की जाती है।
1: बिल्कुल प्रतिमा, और किसान चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जो परिश्रम करता है उसके परिश्रम का परिश्रमिक उसको मिलना चाहिए।
0: और सरकार हर वर्ष विभिन्न फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है ताकि किसानों को अपनी उपज के मूल्य से जुड़ी जानकारी पहले से मिल सके।
1: और कार्यक्रम किसान वाणी तो निश्चित रूप से उद्देश्य यही लेकर के चलता है कि हमारे किसानों तक जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे किसान भाई बहन ले सकते हैं उसकी जानकारी पहुंचती रहे।
0: बिल्कुल, और हम किसान भाइयों से यही कहेंगे कि अपनी फसल तैयार होने के बाद उसे बेचने से पहले अपने क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी खरीद केंद्र, खरीद की तारीख, पंजीकरण प्रक्रिया और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी जरूर ले लें।
1: और जब ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को होगी तो उन्हें उपज का सही दाम मिलेगा, और यही कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उत्पादन का जो लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए, जिससे लागत मूल्य कम हो, उत्पादन बढ़े। तो मित्रों, बिल्कुल आप इसका लाभ उठाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को जानें और कार्यक्रम किसान वाणी को भी लगातार सुने।
0: और साथ ही मैं एक बात अमित और कहना चाहूंगी अपने किसान भाइयों से कि अपनी उपज की तौल, भुगतान और खरीद से संबंधित रसीद अथवा आवश्यक दस्तावेज भी सुरक्षित रखें।
1: बिल्कुल प्रतिमा, और अब कार्यक्रम में समय है अपने श्रोताओं के लिए एक ऐसी जानकारी साझा करने का जिसमें वैज्ञानिक, विशेषज्ञ या डॉक्टर्स की सलाह हमारे किसान भाइयों तक पहुंचती है, और कोई ना कोई ऐसी जानकारी जरूर होती है कि जिसका लाभ उठा करके हमारे किसान भाई बहन अपने कृषि जीवन को उत्तम बनाते हैं।
0: बिल्कुल अमित, सही कहा तुमने। आज हम जो बातचीत सुनवाएंगे उसका विषय है जैविक एवं प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी कैसे।
1: और भाई इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवाधार मिश्रा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
0: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आप अपनी खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए बार बार खेती में अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहे हैं, और जब हम किसी भी मृदा में ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो एक बार तो उसका उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है, और स्थिति ये आ जाती है कि आप चाहे जितना उर्वरक डाल लें लेकिन उत्पादन स्थिर हो जाता है, और यहाँ तक कि धीरे धीरे कम होने लगता है, मृदा का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जो आप उर्वरक डालते हैं वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उसके पार्टिकल आपके खाने में भी आते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसकी वजह से देश में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती किस तरीके से किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, इसके बारे में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग हैं या इनमें

0: अंतर क्या है?
1: जैविक खेती और प्राकृतिक खेती थोड़ा ही अंतर है, उद्देश्य दोनों का एक ही है कि मानव स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य है, पर्यावरण स्वास्थ्य है। लेकिन अंतर इतना है कि जैविक खेती में उत्पादों को हमारे किसान भाई बाजार से भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे जो इनपुट्स हैं जो हम खेती में प्रयोग करते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट हैं जो बाजार से खरीदते हैं और उसे अपने खेत पे तैयार करना संभव नहीं होता है। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक खेती है वो पूर्णतः प्राकृतिक है, इसमें जो भी इनपुट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे खेत में ही तैयार होंगे और उनको हम अपने खेत में प्रयोग करें। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बाजार पर निर्भरता जो है वो बिल्कुल नहीं है प्राकृतिक खेती में, जबकि जैविक खेती में हम बाजार पर भी निर्भर रहते हैं।
0: यानी प्राकृतिक खेती में जो भी आपके खेत में उत्पादन होता है या जो भी आपके मृदा में उपस्थित पोषक तत्व हैं उन्हीं का ही प्रयोग होता है
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, जब बात जैविक और प्राकृतिक खेती की होती है तो निश्चित तौर पे हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो क्या यह पर्यावरण हितैषी है?
1: बिल्कुल, ये दोनों पर्यावरण हितैषी हैं। रासायनिक खातों के लगातार प्रयोग से हमारी जमीनों की उपजाऊपन कम होने लगा है और वो उतना उपज नहीं देती जितना पहले देती थी। कारण यह है कि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पोषक तत्व प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कभी कभी जिंक भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पौधों को तो 16 पोषक तत्व चाहिए। उन 16 पोषक तत्वों की पूर्ति पौधे जमीन से लेकर करते हैं जो कि जमीन में पहले से उपलब्ध हैं पोषक तत्व, और उन पोषक तत्वों की लगातार चूंकि पौधे ले रहे हैं, बाकी चीज़ें तो आप दे रहे हैं लेकिन ये चीज़ें जमीन से जा रही हैं, तो जमीन की इसको कहते हैं माइनिंग, हमारी जमीन की एक तरीके से माइनिंग हो रही है और जो उसका दोहन हो रहा है जमीन का, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी भूमि है वो कमजोर होती जा रही है, हमारी खेत कमजोर हो रहे हैं क्योंकि बाकी पोषक तत्व तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी कमी होती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो संतुलन है पोषक तत्वों को वो सारा का सारा बिगड़ जाता है और इससे जो हमारे उत्पाद तैयार होते हैं उनमें भी संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, किसी में कोई चीज़ कम है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मानव शरीर में जब जाता है तो वहाँ भी संतुलन बिगड़ जाता है। अब दूसरा पहलू ये है कि जब हम जैविक स्रोत प्रयोग करते हैं खेत में, तो जैविक स्रोतों की खूबी यह है कि वो पौधों से या पशुओं से प्राप्त अवशिष्टों से बने हुए होते हैं
0: जी, जैसे गोबर की खाद,
1: गोबर की खाद और भी कई तरीके की खादें हैं, हरी खाद भी है जो सिर्फ पौधों से ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि पौधे चूंकि 17 तत्व लेते हैं तो 17 के 17 पोषक तत्व पौधों के टिश्यू में या पौधों के अवशेषों में उपलब्ध होते हैं और उसी मात्रा में लगभग होते हैं जिस मात्रा में उनको आवश्यकता होती है। तो हम पुनर्चक्रीकरण कर रहे हैं, वही चीजें जो हमारी जमीन से निकल रही हैं उनको हम जमीन में पुनः प्रवेश करा दे रहे हैं और वो भी बड़ी संतुलित मात्रा में जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उन्हीं को हम प्रकृति को प्रकृति का चीज उसी अनुपात में दे रहे हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। जो उत्पाद हमारा तैयार हो रहा है उसमें भी संतुलन है, जो जमीन में जा रहा है वो भी संतुलित है। तो यही है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का मूल मंत्र।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे इसमें बायो उर्वरक जैसे रेजोबियम हो गया,
1: जी हाँ,
0: तो ये किसमें आता है?
1: जितनी जीवाणु युक्त खादें हम जिन्हें कहते हैं या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं
0: जी,
1: बायो फर्टिलाइजर भी हमारे जैविक खेती में आ जाता है। तो जैविक खेती में क्या है कि बायो फर्टिलाइजर कई तरीके के कवक हैं, फंजाई जिसको कहते हैं
0: जी,
1: कई तरीके के बैक्टीरिया हैं, कई तरीके के और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं
0: जी।
1: तो इन सब की खूबी क्या होती है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर और जमीन में दे देते हैं। वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है ही है, जो काम हम रासायनिक खादों में मशीनों के द्वारा फैक्ट्री द्वारा वायुमंडल से ही खींचते हैं वही चीज जमीन में हमारे ये सूक्ष्म जीव वही काम कर देते हैं। और एक तरीके के होते हैं जो फास्फोरस को घुलनशील बना देते हैं जो पौधों के लिए उपलब्ध हो, बहुत से ऐसे हैं जो पोटास को घुलनशील बना देते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जिंक को घुलनशील बना, तो कई तरीके के सूक्ष्म जीव अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और कई काम कर रहे होते हैं, जबकि हम रासायनिक खादों से कुछ ही पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाते हैं। तो जैविक खेती में इन बायो फर्टिलाइजर्स का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये जैविक खेती में उपयोग है, प्राकृतिक खेती में इनका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनको तैयार करने के लिए हमें बहुत अच्छी लैब चाहिए, लेबोरेटरी किसान भाई रख नहीं सकते, तो जाहिर है कहीं ना कहीं किसी लेबोरेटरी पे निर्भर रहना पड़ेगा, वहां से खरीदना पड़ेगा।
0: तो जैसे प्राकृतिक खेती की बात होती है उसमें गाय के गोबर गोमूत्र की बात होती है, तो उसका प्रयोग किस तरीके से होता है?
1: गाय के गोबर से, गाय के घी से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के छाछ से, गाय के मूत्र से, इन सब से मिला के हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं प्राकृतिक खेती के लिए, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, ये पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा पंचगव्य भी बनाते हैं, इसके अलावा हम अस्त्र शस्त्र नाम से कई हैं

0: प्रचलित
1: जी
0: हैं
1: जी
0: अलग अलग क्षेत्रों में, कि उसमें क्या करते हैं, गाय के गोबर और मूत्र के साथ में हम कई जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन या जो घास पात है उनका करते हैं, तो
1: जी
0: उनको मिला के वो हमारे पेस्टिसाइड का काम करते हैं, जो खेत में कीड़े मकोड़े बीमारियां उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो सब कुछ हमारे गाय से और हमारी जमीन से जो पैदा हो रहा है उसी से बना के तैयार कर देते हैं और सारी इनकी पूर्ति करते हैं। अब इनकी खासियत ये है, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, ये जब जमीन में जाता है तो ये पहले से ही इतना एनरिच्ड होता है, इतना ज्यादा उसमें प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं कि वो जाके बायोफर्टिलाइजर का काम करते हैं, और जमीन में जो उपलब्ध पहले से ही सूक्ष्म जीव हैं उनसे मिलके और तेजी से पूरे जो संगठक पोषक तत्वों के हैं, जो कई
1: जी
0: ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको तोड़ के और जो पौधे जिस फार्म में लेते हैं ना उस फार्म में ये बदल देते हैं, और पौधों को सुगमता से सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा चक्र है जो प्राकृतिक चक्र, और जैविक खेती के थ्रू हम जा सकते हैं, बायोफर्टिलाइजर के थ्रू जा सकते हैं। तो ये है हमारा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का मुख्य अंतर।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो अंतर की बात रही, और जैविक खेती प्राकृतिक खेती ये दोनों मिलकर के पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित करते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, जब पर्यावरण की बात आती है तो हम इनकी तुलना हमेशा रासायनिक उर्वरकों से या रासायनिक खेती से या जो वर्तमान में खेती हो रही है रसायनों से।
1: जी
0: अब आप खाद को ही लीजिए, हम यूरिया, डीएपी और इस तरीके की खादों को प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होता है, जमीन में डालते ही तुरंत इनमें जो भी तत्व है वो जमीन में आ जाता है, और पौधे तुरंत तो नहीं ले सकते, पौधों को धीरे धीरे जरूरत होती है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के जो अवयव हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट्स कर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे जैसे पौधों की आवश्यकता उसी आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व तो रिलीज होते हैं, जबकि इसमें तुरंत हो जाते हैं। अब तुरंत रिलीज हुए, पौधे ले नहीं पाए पूरा का पूरा, अपटेक हो नहीं पाया,
1: जी
0: जो बच गया वो या तो बरसात के पानी के साथ बह के बाहर चला जाता है, और अगर ज्यादा पानी जमीन में जा रहा है तो वो ग्राउंड वाटर को भी हमारे प्रदूषित कर देगा। इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल हम लोग यूज करते हैं, दवाइयां जो हर्बिसाइड है, जो घास पात
1: इंसेक्टिसाइड
0: मारने के लिए
1: है।
0: इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, मतलब कई तरीके के जो दवाइयां प्रयोग करते हैं, वो उनका कहीं ना कहीं से अवशेष रह जाता है, या अवशेष हमारे वायुमंडल में, हवा में, पानी में और जमीन में, तीनों को प्रदूषित कर देता है, तीनों की गुणवत्ता घटती है। जबकि जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि ज्यादा दिन तक टिकता हो, और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो हानिकारक हो। तो भूमि, जल, वायु तीनों को हम शुद्ध रख के और पैदावार ले सकते हैं, अच्छे उत्पाद ले सकते हैं।
1: जब डॉक्टर साहब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और उसके साथ साथ आपकी मृदा का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पानी भी स्वास्थ्य रहेगा, और जब हम प्राकृतिक या जैविक खेती करते हैं तो उसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी तो पड़ता है।
0: मानव स्वास्थ्य पे जो असर है वो एक तो सीधा सीधा है, प्रत्यक्ष रूप से
1: जी
0: जो उत्पाद जैविक खेती और इस
1: प्राकृतिक खेती
0: प्राकृतिक खेती से आएगा वो एकदम केमिकल फ्री होगा,
1: जी
0: और दूसरे उसमें संतुलित मात्रा में सब कुछ पोषक तत्व उपलब्ध होंगे जो कि नेचर में होते हैं।
1: जी
0: तो एक तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से आपको फायदा हुआ कि आप में बैलेंस न्यूट्रिशन आपके पेट में जा रहा है,
1: और आपके स्वाद में भी फर्क पड़ा।
0: तो जाहिर है खाने की रुचि बढ़ जाती, पाचनशीलता बढ़ जाती, सब कुछ बढ़ जाता है।
1: जी
0: दूसरा जो अप्रत्यक्ष रूप से यह है कि जब हमारे हवा, पानी, भूमि सब प्रदूषण रहित होंगे, स्वच्छ होंगे, तो हमें अच्छी हवा मिलेगी, सांस मिलेगी, पीने को अच्छा पानी मिलेगा बिना प्रदूषित, और जमीन मिलेगी तो हमारे कहीं से केमिकल से एक्सपोजर नहीं होगा। दोनों तरीके से मानव स्वास्थ्य पे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से लाभ ही लाभ है।
1: डॉक्टर साहब, बिल्कुल, जब आप लाभ की बात करते हैं, क्योंकि जब फसलों पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें लागत भी लगती है,
0: जी
1: और अगर वो प्राकृतिक या जैविक खेती अपनाते हैं तो उनकी लागत में भी तो कमी आती है।
0: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती इसमें निश्चित ही लागत कम लगती है, क्योंकि सारे उत्पाद या तो सस्ते हैं या हमारे खुद के उपलब्ध किए हुए होते हैं। हमें जो आज के समय में इतनी महंगी खाद और पेस्टिसाइड आते हैं तो एक बहुत बड़ी लागत का हिस्सा किसान भाई का उसमें चला जाता है, लेकिन जैविक खेती को और प्राकृतिक खेती लिए चूंकि हमें कुछ खरीदना ही नहीं है, तो जाहिर है हम अपना खुद तैयार करना है, अपना खुद तैयार करना है तो वो शुद्ध भी है और पैसे भी कम लगते हैं। तो इस तरीके से पूरी लागत देखी जाए तो इसमें कम होती है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को एक बड़ा भय रहता है कि जैविक खेती से और प्राकृतिक खेती से उत्पादन कम हो जाता है। जाहिर है कि अगर हम जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं पोषक तत्वों का और जितना पर्यावरण सबको नुकसान कर रहे हैं, तो परोक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप दोनों से अगर देखा जाए तो वो हम घाटे का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सबको सुरक्षित रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखते हुए, अगर थोड़ी पैदावार कम भी मिल रही है तो इसमें हमारे किसान भाइयों को संतोष कर लेना चाहिए। और आजकल सरकार की इतनी सारी परियोजनाएं हैं और इतने सारे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म हैं कि हमारा अगर सही उत्पाद है, उनका सही रजिस्ट्रेशन करा दिया है, तो आप उन उत्पादों को प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। जितनी आपकी पैदा

0: बार अगर कम भी हो जाती है तो आपकी उतनी प्राइस ज्यादा। आज बाजार में आप चले जाइए, अगर कोई सब्जी 10 रुपए किलो बिक रही है और उसको ये बता दो कि इसमें केमिकल भी हो सकता है, इसमें सब कुछ हो सकता है, और दूसरी सब्जी 15 रुपए किलो कह रहे इसमें कुछ नहीं है, ना केमिकल है ना कुछ है, तो कोई भी कंज्यूमर है वो जाके 15 रुपए वाली खरीदेगा, 10 रुपए वाली नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को फायदा भी है और जो कंज्यूमर है उनको भी फायदा है।
1: कहने का मतलब यह है कि किसी

0: किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती पे आता है तो कितना समय उसको लगता है उत्पादन को मेंटेन करने में, या जो उत्पाद मिल रहा है वो केमिकल फ्री होने में?
1: इसके दो पहलू हैं, एक तो उत्पादन की बात है और दूसरे स्विच ओवर करने की बात है, मतलब आप इसमें
0: जी
1: कैसे
0: जी
1: करें। तो एक लीगल पॉइंट और जो लाइसेंस के हिसाब से अगर देखें जो स्विच ओवर करने के लिए, तो 3 साल का समय पर्याप्त होता है। 3 साल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं,
0: धीरे धीरे
1: रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक में आ सकते हैं। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल माना जाता है, 3 साल तक जैविक करेंगे तभी वो जैविक होगा, रासायनिक से अगर स्विच ओवर करते हैं। दूसरा यह है कि जो उत्पाद का स्तर है, जब हम ऑर्गेनिक का शुरू शुरू में डालते हैं तो जमीन में भी चेंज होते हैं, हो सकता है कोई पोषक तत्व कम हो गया हो, ज्यादा हो गया हो, कि आपकी जमीन नेचुरल वाली तो रही नहीं, आप पहले से ही पोषक तत्व जो रासायनिक डालते रहे तो इससे माइनिंग हो ही चुकी है, उसको कन्वर्ट करने में हो सकता है किसी पोषक तत्व की कमी रही हो, तो वो धीरे धीरे करके उसकी भरपाई जब हम लगातार डालते रहेंगे जैविक खादें या जैविक पोषक तत्व, तो उससे उसकी भरपाई होगी, फिर उसी स्तर पर हम पहुंच सकते हैं 4-5 साल में।
0: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं वो जैविक और प्राकृतिक खेती करें, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
1: मेरा संदेश यही है कि अपने में विश्वास विकसित करने के लिए सबसे पहले अगर आप बड़े किसान हैं
0: जी
1: तो 1 एकड़ से शुरू करें, 2 एकड़ से शुरू करें, 3 एकड़ से शुरू करें, जैसी आपके पास जोत है, और छोटे किसानों से मैं कहूँगा कि सीधे सीधे स्विच ओवर कर जाएं, ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।
0: और जो हमारे बाजार में उत्पाद खरीदते हैं उपभोक्ता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: उपभोक्ता तो सजग ही है, वो थोड़ा सा और ध्यान दे कि हमारे इन किसान भाइयों जो जैविक खेती और वो कर रहे हैं उनके उत्पाद को प्रायोरिटी पे ले, और ज्यादा पैसे देने के लिए भी मुझे लग रहा है उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी।
0: डॉक्टर साहब, कहने का मतलब हमारा यह है कि जो रासायनिक उत्पाद होते हैं वो चमकीले उस तरीके के होते हैं, और जैविक और प्राकृतिक उत्पाद उतने देखने में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन पौष्टिकता से भरपूर होते
1: जी,
0: हैं।
1: इसका ये कारण, आप बाजार में जब जाते हैं तो आप जैसे भिंडी ले लीजिए, भिंडी को आप खरीदने जाएंगे तो आप बहुत हरी हरी जो दिखाई पड़ेगी उसमें कोई भी खराब नहीं, सभी अच्छी भिंडी रखे हुए, तो सभी भिंडियां एकदम स्वस्थ दिखाई पड़ेंगी। जबकि आप ऑर्गेनिक वाला देखें तो हो सकता है हल्की पीले रंग की हो सकता है उसमें टेढ़ी मेढ़ी भी हो एक आध, तो आप ये देखिए जो बहुत अच्छा दिखने में होता है कोई जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी अच्छा ही हो,
0: जी
1: तो एकदम एस्थेटिक वैल्यू पे ना जाएं और ये समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात, आजकल सरकार ने भी बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, तो जो ऑलरेडी जिन्होंने जैविक खेती का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो अपने लोगो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं उत्पादों के साथ, हमारे किसान भाई, तो किसान डायरेक्ट भी मार्केट में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं।
0: यानी कहने का मतलब यह है कि आप उत्पादन के साथ साथ अगर मार्केटिंग भी सही तरीके से करते हैं
1: जी
0: तभी आप फायदा ले पाएंगे।
1: जी
0: डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी, आपने जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे आप द्वारा दी गई जानकारी का किसान भाई फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे, जैविक एवं प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी कैसे,
3: और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शिवाधार मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
2: बिल्कुल, और अब वक्त है मनोरंजन का, क्योंकि किसान भाइयों को इंतजार रहता है कि भाई आज कौन सा गीत है, लोकगीत है, भजन है, उपदेश है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ते हैं और हमारे मन से भी जुड़ते हैं।
3: तो मित्रों, आइए आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक रागिणी।

0: अभी आप सुन रहे थे ये रागिनी।
1: मित्रों, मनोरंजन के बाद हमारी कोशिश होती है कि किसान भाइयों के लिए हम मौसम का पूर्वानुमान दें, जिससे वो अपने कृषि कार्य को समय पर कर सकें। तो बताते चलें कि नई दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ एवं धूप रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
0: बहुत सही जानकारी दी। और देखिए, अगर मौसम का हाल उनको पता होगा तो वो अपनी कृषि और तमाम कार्य जो है वो बड़ी सुनिश्चितता के साथ कर पाएंगे।
1: जी।
0: और अमित, हमारे किसान भाइयों को इंतजार रहता है कृषि सलाह का, तो क्यों ना कृषि सलाह भी दे दें।
1: जी।
0: वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों जैसे कि दलहनी फसलों, मक्का आदि व सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें। साथ ही हम किसान भाइयों से ये साझा करना चाहेंगे कि इस मौसम में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इसी प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा।
1: बिल्कुल। और मित्रों, ध्यान रखें कि जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है, यदि इसका प्रयोग हम कृषि में करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वहीं इस मौसम में धान में पत्ती लपेटक कीट के आने की संभावना रहती है। किसान भाइयों को सलाह है कि वे धान के खेत को 2 सेंटीमीटर तक पानी से भर दें। एक रस्सी के दोनों कोनों को दो व्यक्ति खेत के दोनों कोनों पर खड़े होकर पकड़ें और इस तरह आगे बढ़ें ताकि रस्सी फसल को छूते हुए पत्तियों को झुका दे। इस प्रक्रिया से कीट पानी में झड़कर गिर जाते हैं। इसके उपरांत खेत से पानी निकाल दें और कीटों

0: को एकत्र कर मार दें। वहीं इस मौसम में सरसों साग, पूसा साग वन, मूली, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक, ऑल ग्रीन तथा धनिया, पंत, हरितिमा या संकर किस्मों की बुवाई आप मेंढों पर कर सकते हैं।
1: देखिए कितनी अच्छी सलाह है हमारे कृषि वैज्ञानिकों की, और अमित हमें भी अपने किसान भाइयों के बहुत से सुझावों का, उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। तो किसान भाई बहनों अपने फीडबैक हमें जरूर भेजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
0: मित्रों आज के कार्यक्रम किसान वाणी में केवल इतना ही।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: फिल्म तुम बिन से जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने एक खूबसूरत गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के माफ़ कीजिएगा, 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरा निस्तारण संयंत्रों का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित एक ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। और जापान एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरे के निस्तारण संयंत्रों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में बायोडिग्रेडेबल कचरे के निस्तारण के लिए 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायोगैस संयंत्र का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कचरा निस्तारण की वर्तमान स्थिति, साइट पर उपलब्ध क्षेत्र और नई प्रोसेसिंग सुविधाओं की क्षमता को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पुराने कूड़े को हटाना नहीं बल्कि नए वेस्ट को भी वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर उसे दोबारा कूड़े का पहाड़ बनने से रोकना भी है। उन्होंने बताया कि ओखला में 1400 टन प्रतिदिन, सिंघोला में 700 टन प्रतिदिन और गाजीपुर में 800 टन प्रतिदिन क्षमता वाले संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पुराने कचरे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं।

0: ही रोजाना आने वाले कचरे को भी प्रोसेस किया जा सके, इसके लिए भी काम चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से तय समय सीमा के अनुरूप काम में तेजी बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से नई प्रोसेसिंग क्षमता, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, वेस्ट टू रिसोर्स और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक साथ काम किया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसी उद्देश्य से नई प्रोसेसिंग सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1.5 वर्षों में ओखला, भलसवा और गाजीपुर में 217.17 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण कर लगभग 100 एकड़ भूमि को मुक्त जा चुका है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि नए प्लांटों के शुरू होने से कूड़े के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण की गति को और बढ़ाया जा सकेगा।
2: हमने 100 एकड़ जमीन जो है तीनों जो हमारी लैंडफिल साइट थी वहाँ से रिक्लेम कर ली है। फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ पे आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि जितना फ्रेश वेस्ट आए वो भी प्रोसेस हो, जितना सीएनडी वेस्ट आए वो भी प्रोसेस हो और आने वाली जनरेशन के लिए फिर कोई नया कूड़े का पहाड़ ना लगे। दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हम पे जताया आज उसको हम चरितार्थ कर पा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से पूरी तरह मुक्ति दिलानी है। इसके लिए पूरी टीम मिशन मोड में दिन रात काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी और जुलूस तथा प्रदर्शन और धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है। उन्होंने कहा कि आज के लिए किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और न ही नई दिल्ली जिला पुलिस को ऐसे किसी प्रदर्शन के बारे में पहले से कोई सूचना मिली है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से आदेश का सख्ती से पालन करने और सहयोग करने का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि नवाचार चुनौती के अंतर्गत चुने गए उपकरणों का वाहन प्रदूषण नियंत्रण और परिवेशी वायु शुद्धिकरण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन उपकरणों को दिल्ली के प्रमुख प्रदूषण प्रभावित स्थानों पर लगाया गया है, जहां आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन समिति इनके प्रदर्शन और जरूरी मापदंडों की जांच कर रही है। श्री सिरसा ने बताया कि कुछ उपकरणों के क्षेत्रीय परीक्षण भी अभी चल रहे हैं, वहीं जिनके परीक्षण पूरे हो चुके हैं उनका प्रयोगशाला परीक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि नई तकनीक और नवाचार के माध्यम से ऐसे समाधानों को आगे लाया जाए जो जमीन पर प्रभावी साबित हों और दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने में मदद करें। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु आज संजय वन में हेरिटेज वॉक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित एक ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि यह इतिहास और सभ्यतागत विरासत का एक जीवंत संग्रह है। उन्होंने कहा कि 8 प्रमुख रास्तों पर फैली 243 ऐतिहासिक संरचनाओं के डिजिटल दस्तावेजीकरण के माध्यम से तकनीक इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। श्री संधु ने कहा कि सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाएं, विरासत की रक्षा करें और इन दोनों को आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। उपराज्यपाल ने दिल्ली वासियों को शानदार जगहों को खोजने और उनका आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही शहर की पारिस्थितिकी विरासत को बचाने में इनकी अहम भूमिका को भी रेखांकित किया।
4: अगर आपको पता है कि इस एरिया में दिस इज अ ग्रीनर प्लेस, यू हैव समथिंग टू वॉक एंड फील नाइस, एंड स्पेशली फ्रॉम नाउ टिल मार्च अप्रैल यू विल हैव अ गुड एंड सन विल बी देयर, यू नो यू कैन कम सिट हियर इन द आफ्टरनून। वी हैव सच अ रिच हेरिटेज इन दिल्ली इटसेल्फ दैट वी डोंट नीड टू गो टू फार टू हैव और एंजॉय दैट।

0: इनरिच एनवायरनमेंट, हम उसको यहाँ पे ही इंजॉय कर सकते हैं।
1: हेरिटेज वॉक के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सम्मान और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ एक ऐसी दिल्ली बना सकते हैं जहां हर महिला सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी महसूस करे और आगे बढ़कर नेतृत्व कर सके। उपराज्यपाल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स से संवाद भी किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान मेडिकल शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लेकर विद्यार्थियों की उम्मीदों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा हुई। विशेष रूप से महिला मेडिकल स्टूडेंट और रेजिडेंट डॉक्टर्स को होने वाली दिक्कतों को भी उन्होंने गंभीरता से सुना। श्री संधु ने आश्वस्त किया कि इन चिंताओं के समाधान और सभी के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी सेक्टर 8 स्थित केंद्रीय विद्यालय में सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सार्थकता तभी है जब उसकी जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता बिना किसी अनावश्यक बाधा के लोगों तक पहुंचे। श्री गुप्ता ने कैंप में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत की और नागरिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों से कैंप में नागरिकों को दी जा रही सहायता के संबंध में जानकारी ली। सेवा सेतु कैंप को नागरिकों के लिए एक एकल सुविधा केंद्र के रूप में तैयार किया गया है, जहां दिल्ली सरकार के विभिन्न सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कैंप में आने वाले नागरिकों से बातचीत की और विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने के उनके अनुभवों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अलग अलग सरकारी विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने से नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। कैंप में विभिन्न विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार की रिफॉर्म उत्सव पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने विद्यार्थियों को नमो भारत से परिचित कराने के लिए फेमिलाइजेशन आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम नागरिक केंद्रित सेवा वितरण, संस्थागत सुधारों और जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनकारी उपायों से जनता को परिचित कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को नमो भारत प्रणाली के परिचालन, इसकी प्रमुख विशेषताओं और इसके सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आवश्यक यात्रा दिशा निर्देशों से परिचित कराना था। वहीं प्रतिभागियों ने भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली के परिचालन संबंधी जानकारी प्रत्यक्ष प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों ने सराय कालेखा स्टेशन सहित स्टेशन कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। उन्हें स्टेशन संचालन, यात्रियों की आवाजाही और आधुनिक ट्रेनों के परिचालन से संबंधित दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन में प्रयोग की जाने वाली उन्नत प्रणालियों के बारे में जानकारी दी गई। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज मासिक सुविधा कैंप का आयोजन किया। इस सुविधा कैंप में NDMC सचिव राहुल सिंह ने 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम का नेतृत्व किया और शिकायतों के निस्तारण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। उन्होंने कहा कि नागरिक संतुष्टि सेवा वितरण का मूल्य आधार होना चाहिए। उन्होंने त्वरित और अधिक पारदर्शी समाधान के लिए जन सुविधा पोर्टल का लाभ उठाने पर बल दिया। वहीं NDMC अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि ये सुविधा कैंप सूचना सुविधा और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा है, जो निवासियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करती है। ये पहल निवासियों और सेवा उपयोगकर्ता के लिए जानकारी प्राप्त करने, शिकायतें दर्ज करने और नागरिक मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे संवाद करने के लिए एक प्रभावी सुविधा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 5 स्वर्ण,

0: दो रजत और दो कांस्य पदक हासिल किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरा निस्तारण संयंत्रों का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
3: सामेईन की खिदमत में सरफराज आलम का सलामो आदाब। हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा लेकर। सामेईन, मुशायरे हमारी तहजीब का अहम हिस्सा हैं। इसने माजी में भी जबान व अदब के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया है और असर हाजिर में भी इल्म व अदब और तहजीब व सकाफत को परवान चढ़ाने में इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुशायरे उर्दू जबान व तहजीब की एक ऐसी खूबसूरत रिवायत हैं जिसकी मिसाल दुनिया की दूसरी जबानों के अदब और सकाफत में मुश्किल से ही मिलेगी। मुशायरे की ऐसी ही एक खूबसूरत महफिल लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के मुशायरे में जिन शुअरा को आप सुनेंगे उनमें शामिल हैं जनाब शाहरुख अबीर, जनाब अहमद नदीम और मोहतरमा खुशबू परवीन। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब मुमताज इकबाल। तो आइए समाप्त कीजिए ये मुशायरा।
4: आज की इस महफिल के जो शोराए कराम हैं उनमें शामिल हैं जनाब शाहरुख अबीर साहब, मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा और अहमद नदीम साहब और मैं मुमताज़ इकबाल। तो इस खूबसूरत महफिल की शुरुआत करते हैं और पहुँचते हैं जनाब शाहरुख अबीर के हुजूर कि वो अपना कलाम पेश करें।
5: गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा करें।
4: जी यता।
5: गज़ल का मतलब है कि होता है जैसे पहले पहल का मुआशका।
4: होता है जैसे पहले पहल का मुआशका।
5: होता है जैसे पहले पहल का मुआशका। खुश फहमियों के साथ था मेरा मुआशका।
6: क्या खूबसूरत।
5: होता है जैसे पहले पहल का मुआशका। खुश फहमियों के साथ था मेरा मुआशका और मेरे नाकाम आई उदासी की चाशनी।
4: वाह।
5: मेरे नाकाम आई उदासी की चाशनी। मेरा है जिंदगी से अनोखा मुआशका। मेरे नाकाम आई उदासी की चाशनी। मेरा है जिंदगी से अनोखा मुआशका। जंजीर पीटता हूँ जमी पर जुनून में।
4: जंजीर पीटता हूँ जमी पर जुनून में।
5: जंजीर पीटता हूँ जमी पर जुनून में। सहरा से चल रहा है अधूरा मुआशका।
6: क्या कहने।
5: زنجیر پیٹتا ہوں زمین

0: पर जुनून में सहरा से चल रहा है अधूरा मुआशका, और अब सोच लो ये कारे हवस कारे इश्क है।
1: अब सोच लो ये कारे हवस कारे इश्क है।
0: अब सोच लो ये कारे हवस कारे इश्क है। लगता है तुमको जान से प्यारा मुआशका।
2: क्या बात है।
0: अब सोच लो ये कारे हवस कारे इश्क है। लगता है तुमको जान से प्यारा मुआशका। और शेर है के ए चांद की चकोर मुझे भी दिखा बहिश्त।
1: ए चांद की चकोर मुझे भी दिखा बहिश्त।
0: ए चांद की चकोर मुझे भी दिखा बहिश्त। मेरा है चांदनी से पुराना मुआशका। ए चांद की चकोर मुझे भी दिखा बहिश्त। मेरा है चांदनी से पुराना मुआशका। और बज़्मे तहय्युरात में आंखें बदल गईं।
1: बज़्मे तहय्युरात में आंखें बदल गईं।
0: बज़्मे तहय्युरात में आंखें बदल गईं। जलवों की ताब लाए तो छूटा मुआशका। बज़्मे तहय्युरात में आंखें बदल गईं। जलवों की ताब लाए तो छूटा मुआशका। और कब आई इख्तियार में मजनू की ख्वाहिशें।
1: कब आई
0: इख्तियार में मजनू की ख्वाहिशें। पत्थर को पूजता है ये खस्ता मुआशका। कब आई इख्तियार में मजनू की ख्वाहिशें। पत्थर को पूजता है ये खस्ता मुआशका। और कर दीजिए तार तार अभी वहशते बदन। कर दीजिए तार तार अभी वहशते बदन। आंखों को चुभ रहा है हमारा मुआशका। कर दीजिए तार तार अभी वहशते बदन। आंखों को चुभ रहा है हमारा मुआशका। और महवे ख्याले यार हैं दफ्तर में हम अबीर।
1: महवे ख्याले यार हैं दफ्तर में हम अबीर।
0: महवे ख्याले यार हैं दफ्तर में हम अबीर। बारिश को तक रहा है बेचारा मुआशका। महवे ख्याले यार हैं दफ्तर में हम अबीर। बारिश को तक रहा है बेचारा मुआशका। और शेर है कि एक गजल से चंद शेर और देख लें। गजल का मतलब है कि करूंगा कैसे अदा में किसास लफ्जों का।
1: करूंगा कैसे अदा में किसास लफ्जों का।
0: करूंगा कैसे अदा में किसास लफ्जों का। बुना है जाल मेरे आस पास लफ्जों का। करूंगा कैसे अदा में किसास लफ्जों का। बुना है जाल मेरे आस पास लफ्जों का। कहीं गिरफ्त में आता नहीं बयाने वजूद।
1: कहीं गिरफ्त में आता नहीं बयाने वजूद।
0: कहीं गिरफ्त में आता नहीं बयाने वजूद। बदन को चुभने लगा है लिबास लफ्जों का। कहीं गिरफ्त में आता नहीं बयाने वजूद। बदन को चुभने लगा है लिबास लफ्जों का। और हुई जो इश्क के दौरान गुफ्तगु तुमसे।
1: हुई जो इश्क के दौरान गुफ्तगु तुमसे।
0: हुई जो इश्क के दौरान गुफ्तगु तुमसे। करूंगा नज्म वही इक्तिबास लफ्जों का।
3: वाह वाह बहुत खूब।
0: और शेर है कि फिर उसके बाद तो आंखों से खून बरसेगा।
1: फिर उसके बाद
0: तो आंखों से खून बरसेगा। सुनाऊंगा जो मैं किस्सा उदास लफ्जों का।
3: क्या कहने बहुत
0: शुक्रिया। फिर उसके बाद तो आंखों से खून बरसेगा। सुनाऊंगा जो मैं किस्सा उदास लफ्जों का। और शेर है के जो लफ्ज अक्स बनाते हैं तेरा आंखों में। जो लफ्ज अक्स बनाते हैं तेरा आंखों में। है इंतखाब मेरे खास खास लफ्जों का। जो लफ्ज अक्स बनाते हैं तेरा आंखों में। है इंतखाब मेरे खास खास लफ्जों का। शेर है के मेरे ख्याल की वुसअत जमी से गहरी है।
1: मेरे ख्याल
0: की वुसअत जमी से गहरी है। लगा रहे हो अभी तुम कयास लफ्जों का।
3: बहुत खूब।
0: शेर है के हर एक समत उभरते नकूश देखोगे। हर एक समत उभरते नकूश देखोगे। बदल रहा हूँ अभी मैं लिबास लफ्जों का।
3: क्या कहने
0: बहुत शुक्रिया। और तसव्वुरात से गहरी अबीर वो आंखें। तसव्वुरात से गहरी अबीर वो आंखें। हर एक सजन को बनाती हैं दास लफ्जों का। तसव्वुरात से गहरी अबीर वो आंखें। हर एक सजन को बनाती हैं दास लफ्जों का। फिर उसके बाद तो आंखों से खून बरसेगा। सुनाऊंगा जो मैं किस्सा उदास लफ्जों का। और एक गजल से चंद शेर और देखें। गजल का मतलब है कि कर रहे हो बात इतने प्यार से।
1: कर रहे हो बात इतने

0: प्यार से
1: कर रहे हो बात इतने प्यार से, डर रहे हो इश्क के इजहार से।
2: वाह
1: कर
2: क्या बात
1: रहे
2: है,
1: हो बात इतने प्यार से,
2: डर रहे हो
1: डर
2: इश्क के
1: रहे
2: इजहार
1: हो
2: से।
1: इश्क के इजहार से। मेरी आंखों में वो आंखें जम गईं,
0: मेरी आंखों में वो आंखें जम गईं।
1: मेरी आंखों में वो आंखें जम गईं जिनको मतलब ही नहीं इनकार से।
2: वाह
1: बहुत
2: वाह
1: शुक्रिया।
2: वाह वाह,
1: मेरी आंखों में वो आंखें जम गईं
2: जिनको मतलब ही नहीं इनकार
1: जिनको
2: से।
1: मतलब ही नहीं इनकार से। और कुश्तगां के मिसल हैं दर पर तेरे,
0: कुश्तगा के मिसल हैं दर पर तेरे,
1: कुश्तगां के मिसल हैं दर पर तेरे, छू के जिंदा कर हमें तलवार से।
2: वाह
0: वाह
2: क्या
1: वाह
2: कहने,
1: जी
2: वाह वाह
1: शुक्रिया।
2: वाह, अच्छा है, वाह
1: कुश्तगां
2: वाह।
1: के मिसल हैं दर पर तेरे, छू के जिंदा कर हमें तलवार से। और इश्क आतिश से ये अंदाजा हुआ,
2: इश्क आतिश,
1: इश्क आतिश से ये अंदाजा हुआ, दिल को हमदर्दी हुई अगयार से।
2: वाह वाह
0: वाह,
1: इश्क आतिश से ये अंदाजा हुआ,
2: दिल को हमदर्दी
1: दिल
2: हुई
1: को
2: अगयार से।
1: हमदर्दी हुई अगयार से। कर रहा था उनको फूलों में शुमार, कर रहा था उनको फूलों
2: फूलों
1: में
2: में शुमार,
1: शुमार, छिल गए फिर हाथ मेरे खार से।
0: वाह
2: वाह
0: वाह वाह
1: कर
2: वाह
1: रहा
2: वाह
1: था उनको
2: वाह वाह,
1: फूलों में शुमार,
2: छिल
1: छिल
2: गए
1: गए
2: फिर
1: फिर
2: हाथ
1: हाथ
2: मेरे
1: मेरे
2: खार
1: खार
2: से।
1: से। और फूटने को है घुटन की कोपलें,
0: फूटने को
2: क्या
0: है
1: बात,
0: घुटन की
1: फूटने को
0: कोपलें,
1: है घुटन की कोपलें, धीरे धीरे होंगे पुरअसरार से।
2: वाह वाह
0: वाह,
2: वाह,
1: फूटने को है घुटन की कोपलें,
2: धीरे धीरे
1: धीरे
2: होंगे
1: धीरे होंगे
2: पुरअसरार से।
1: पुरअसरार से। और शेर है कि अजनबी पन छा रहा है शहर पर,
0: अजनबी पन छा रहा है शहर
1: अजनबी
0: पर,
1: पन छा रहा है शहर पर, जानिए सब आदतों इतवार से।
2: क्या बात है, वाह
1: अजनबी
2: वाह
1: पन
2: वाह,
1: छा रहा है शहर पर, जानिए सब आदतों इतवार से। और बेच दीजिए ख्वाहिशें बाजार में, ख्वाहिशें ले आइए बाजार से।
2: वाह वाह
0: वाह,
1: बेच दीजिए ख्वाहिशें बाजार में,
0: बहुत अच्छा शेर
1: ख्वाहिशें
0: है।
1: ले आइए बाजार से। और शेर है कि अपनी ही दीवानगी में खो गए, अपनी ही दीवानगी में खो गए, लग रहे थे जो बहुत होशियार से।
2: वाह वाह
1: अपनी
2: वाह,
1: ही दीवानगी में खो
0: खो गए
1: गए, लग रहे थे जो बहुत होशियार
2: होशियार से,
1: से।
0: बहुत खूब।
1: और टोकता रहता है मुझको हर घड़ी, टोकता रहता है मुझको हर घड़ी, बोलता रहता है वो दीवार से।
2: वाह वाह वाह, बोलता
1: टोकता रहता है मुझको हर घड़ी, बोलता रहता
2: रहता
1: है
2: है
1: वो
2: वो
1: दीवार
2: दीवार
1: से।
2: से,
1: मेरी आंखों में वो आंखें जम गईं जिनको मतलब ही नहीं इनकार से।
2: इनकार से, क्या
1: वाह,
2: बात।
3: बहुत शुक्रिया शाहरुख कबीर साहब। अभी आपके सामने कलाम पेश कर रहे थे जनाब शाहरुख कबीर। अब हम चलते हैं मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा के हुजूर कि वो अपना कलाम पेश करें।
4: बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतला है
2: इरशाद,
4: कि मेरी हयात में शामिल भी है नहीं भी है,
3: मेरी हयात में शामिल भी
2: शामिल
3: है
2: भी है
3: नहीं भी
4: मेरी
3: है।
4: हयात में शामिल भी है नहीं भी है, तलब है उसकी जो हासिल भी है नहीं
2: नहीं
4: भी
2: भी है,
4: है।
2: वाह
4: बहुत शुक्रिया। मेरी हयात में शामिल भी है
2: नहीं
4: नहीं
2: भी
4: भी
2: है,
4: है, तलब है उसकी जो हासिल भी है
2: नहीं भी
4: नहीं भी है। और ये शेर की, अजब हूँ मैं भी मुसलसल उसी की फ़िक्र में हूँ,
3: क्या बात।
4: अजब हूँ मैं भी मुसलसल उसी की फ़िक्र में हूँ, वो है कि मुझसे जो गाफिल भी है
2: नहीं
4: नहीं
2: भी
4: भी
2: है,
4: है।
2: वाह वाह
3: वाह
4: बहुत शुक्रिया। वो है कि मुझसे जो गाफिल भी है
2: नहीं
4: नहीं
2: भी
4: भी
2: है,
4: है,
2: क्या
4: उसी के नक्शे कदम पर तो चल रही हूँ मैं,
3: क्या बात।
4: उसी के नक्शे कदम पर तो चल रही हूँ मैं, जो अजनबी मेरी मंजिल भी है नहीं
2: नहीं
4: भी
2: भी,
4: है।
2: वाह
4: वाह
2: वाह वाह वाह
4: बहुत शुक्रिया। जो
2: वाह,
4: अजनबी मेरी मंजिल भी है
2: नहीं भी है,
4: नहीं भी है। और ये शेर की, वो देख कर भी मुझे देखता नहीं शायद,
3: क्या बात है।
4: वो देख कर भी मुझे देखता नहीं शायद, वो अजनबी ज़रा संगदिल भी है नहीं
2: नहीं
4: भी
2: भी है,
4: है।
3: वाह क्या
4: बहुत
3: बात।
4: शुक्रिया। मक्ते का शेर है कि जो खुशबू चाह के इजहार कर नहीं सकती,
3: क्या बात,
4: जो खुशबू चाह के इजहार कर नहीं सकती, वो लड़की प्यार में बुज़दिल भी है
2: नहीं
4: नहीं
2: नहीं
4: भी
2: भी है,
4: है,
2: वाह वाह वाह वाह
4: वो लड़की प्यार में बुज़दिल भी है
2: नहीं भी
4: नहीं
2: है।
4: भी है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर और कि
3: जी
4: ज़बाने हाल में माजी का किस्सा हो गई हूँ ना, ज़बाने हाल में माजी का किस्सा हो गई हूँ ना, मैं उसके साथ रहकर और तन्हा हो गई हूँ ना।
2: वाह
3: वाह
4: बहुत शुक्रिया। ज़बाने हाल में माजी का किस्सा हो गई हूँ ना, میں اس کے ساتھ رہ کر اور

0: और तन्हा हो गई हूँ ना।
1: हम्म,
0: और ये शेर की मुसलसल खुश्क दरिया से लगी चलती रही शायद,
1: वाह,
0: मुसलसल खुश्क दरिया से लगी चलती
1: चलती
0: रही
1: रही
0: शायद,
1: शायद।
0: तो अब लगता है मैं मानू से सहरा हो गई हूँ ना।
1: वाह वाह
0: तो
1: वाह वाह,
0: अब लगता है मैं मानू
1: मानू
0: से
1: से
0: सहरा
1: सहरा
0: हो
1: हो गई
0: गई हूँ
1: हूँ।
0: ना। और ये शेर के घने बादल तो हैं लेकिन नहीं आसार बारिश के,
1: घने बादल
0: घने
1: तो हैं
0: बादल तो हैं
1: लेकिन
0: लेकिन
1: नहीं
0: नहीं
1: आसार
0: आसार बारिश
1: बारिश
0: के,
1: के। क्या
0: अजब सा हिजर मौसम है, मैं तश्ना हो गई हूँ ना।
1: बात,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया। घने बादल तो हैं लेकिन नहीं आसार बारिश के, अजब सा हिजर मौसम है, मैं
1: मैं
0: तश्ना
1: तश्ना
0: हो
1: हो गई
0: गई
1: हूँ
0: हूँ
1: ना।
0: ना। और ये शेर की दिलाती है यकीन क्यों मेरे होने का भरी दुनिया,
1: आहा, क्या बात,
0: दिलाती है यकीन क्यों मेरे होने का भरी दुनिया, गुमा से पूछती हूँ कोई धोखा हो गई हूँ ना।
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: अच्छा
0: शुक्रिया।
1: है, वाह
0: गुमा
1: वाह,
0: से पूछती हूँ कोई धोखा हो
1: हो
0: गई
1: गई
0: हूँ
1: हूँ
0: ना।
1: ना।
0: और ये शेर की समंदर तक पहुँचना है मगर उफ धूप की शिद्दत,
1: आह,
0: समंदर तक पहुँचना है
1: मगर
0: मगर
1: उफ
0: उफ धूप
1: धूप
0: की
1: की
0: शिद्दत,
1: शिद्दत।
0: मैं अपनी ज़ात में खुद खुश्क दरिया हो गई हूँ
1: क्या
0: ना।
1: क्या
0: क्या
1: कहने,
0: बात है,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। मैं अपनी ज़ात में खुद खुश्क दरिया हो गई हूँ ना। और लगता है कि सबब शायद किसी का याद आ जाना बना खुशबू, सबब
1: सबब
0: शायद
1: शायद किसी
0: किसी
1: का
0: का याद
1: याद
0: आ
1: आना।
0: जाना बना खुशबू, मैं खुद में मर चुकी थी फिर से जिंदा हो गई हूँ ना।
1: वाह वाह वाह
0: वाह
1: वाह वाह, वाह, तो
0: बहुत
1: क्या
0: शुक्रिया।
1: खूबसूरत
0: सबब
1: मकतब है,
0: शायद किसी का
1: वाह
0: याद आ जाना बना खुशबू, मैं खुद में मर चुकी थी फिर से जिंदा हो गई हूँ ना। और एक रुबाई कि कोई तो मुकद्दर का सितारा होता,
1: वाह। कोई तो मुकद्दर का
0: कोई
1: सितारा,
0: तो मुकद्दर का सितारा होता, कोई दिले मुफलिस का सहारा होता, कोई तो मुकद्दर का सितारा होता, कोई दिले मुफलिस का सहारा होता, हम भीड़ में होते हुए तन्हा हैं बहुत, हम भीड़ में होते हुए तन्हा हैं बहुत, इस शहर में कोई तो हमारा होता।
1: वाह वाह वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। इस शहर में कोई
1: कोई
0: तो
1: तो हमारा
0: हमारा
1: होता।
0: होता। और एक गज़ल के चंद शेर और की,
1: जी बताओ।
0: इश्क तफसील तलब था उसे समझा न गया,
1: वाह, क्या
0: इश्क
1: बात है, क्या
0: तफसील
1: बात
0: तलब
1: है, उसे समझा न गया,
0: इश्क तफसील तलब था
1: उसे
0: उसे
1: समझा
0: समझा
1: न
0: न
1: गया,
0: गया, मुझसे उस शख्स का यूं देखना देखा
1: देखा
0: न
1: न गया।
0: गया।
1: क्या
0: क्या
1: बात,
0: बात,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया। इश्क तफसील तलब था उसे समझा न गया, मुझसे उस शख्स का यूं देखना
1: देखा
0: देखा
1: न
0: न
1: गया।
0: गया। और ये शेर कि तश्नगी जाएगी मौजों की तरफ खुद चलकर, तश्नगी जाएगी मौजों की तरफ खुद चलकर, प्यास के सामने चलकर कभी दरिया न गया।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: बात
1: वाह
0: है,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया।
1: क्या
0: प्यास
1: कहने,
0: के सामने चलकर कभी
1: दरिया
0: दरिया
1: न
0: न
1: गया,
0: गया।
1: बहुत अंदर,
0: क्या
1: वाह
0: बहुत
1: क्या बात
0: शुक्रिया। और
1: है।
0: ये शेर की, उसने बस एक झलक अपनी दिखाई थी मुझे,
1: हम्म,
0: उसने बस एक झलक अपनी दिखाई थी मुझे, उम्र भर दीद की हसरत लिए सदमा न गया।
1: वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। उम्र भर दीद की हसरत लिए सदमा
1: सदमा
0: न
1: न गया।
0: गया। और ये शेर की, कुछ बचा होता तो मैं पेश तुझे कर देती,
1: क्या बात
0: वाह
1: है, वाह
0: कुछ
1: वाह,
0: बचा होता तो मैं पेश तुझे कर देती, क्या बताऊं कि तेरे इश्क में क्या क्या न गया।
1: क्या बात,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कुछ
1: तुम्हारा बहुत
0: बचा
1: अच्छा है,
0: होता तो मैं पेश तुझे कर
1: क्या
0: देती,
1: कहने,
0: क्या बताऊं कि तेरे इश्क में
1: क्या
0: क्या
1: क्या
0: क्या
1: न
0: न
1: गया,
0: गया।
1: क्या
0: वाह।
1: कहने, वाह वाह
0: और
1: वाह।
0: एक गज़ल के दो तीन शेर और
1: जी आता हूँ।
0: कि देखने वाले थे पर सरफे नज़र होती रही,
1: हाँ,
0: देखने
1: देखने वाले
0: वाले
1: थे
0: थे
1: पर
0: पर
1: सरफे
0: सरफे
1: नजर
0: नज़र होती
1: होती
0: रही,
1: रही, वाह वाह,
0: देखने वाले थे पर सरफे नज़र होती रही, जाने शोरीदा लिए मैं दर बदर होती रही।
1: हाय हाय,
0: वाह।
1: वाह वाह,
0: देखने वाले थे
1: क्या बात,
0: पर सरफे नज़र होती रही, जाने शोरीदा लिए मैं दर
1: दर
0: बदर
1: बदर होती
0: होती रही।
1: रही।
0: और ये शेर की, अपनी शर्तों पर मुझे जीने नहीं देते हैं लोग,
1: अपनी शर्तों पर मुझे जीने नहीं देते हैं लोग,
0: अपनी शर्तों पर मुझे जीने नहीं देते हैं लोग, मैं हूँ औरत इसलिए जेरो जबर होती
1: वाह
0: रही।
1: वाह वाह वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। मैं हूँ औरत इसलिए
1: जेरो
0: जेरो
1: जबर
0: जबर
1: होती
0: होती
1: रही।
0: रही, और घर के अंदर कैद थी गोया कोई बुझता चराग, घर के अंदर कैद थी गोया कोई बुझता चराग, बस मिसालों के लिए शमसो कमर होती रही।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह,
0: ये
1: क्या
0: शेर की, बेहुनर लोगों को बिन मांगे मिला है बेहिसाब,
1: बात,
0: बेहुनर
1: बेहुनर।

0: मांगे मिला है बेहिसाब।
1: बेहुनर लोगों को बिन मांगे मिला है बेहिसाब, और एक मेरी दुआ थी बेअसर होती रही।
2: वाह
0: वाह
2: वाह क्या बात।
1: बेहुनर लोगों को बिन मांगे मिला है बेहिसाब, और एक मेरी दुआ थी
2: बेअसर
1: बेअसर
2: होती
1: होती
2: रही।
1: रही। बहुत शुक्रिया। और मक्ता है कि दे दिया जाता बहुत कुछ सर झुकाने के इवज़।
0: दे दिया जाता बहुत कुछ सर
2: सर
0: झुकाने के
1: झुकाने दे
0: बस।
1: दिया जाता बहुत कुछ सर झुकाने के इवज़, मैं ही ये खुशबू थी जो सीना सिपर होती रही।
2: क्या बात
0: वाह
2: है,
1: बहुत
2: वाह वाह
1: शुक्रिया।
2: क्या बात है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा। अब मैं अपना कलाम आपको सुनाना चाहता हूँ। मतलब देखें, उम्र भर इश्क ना करने का इरादा ना करो।
2: वाह,
3: उम्र भर
2: इश्क ना करने का
3: इश्क ना
2: इरादा।
3: करने का इरादा ना करो, नशे हिज्र करो इतना ज्यादा ना करो।
2: वाह
1: वाह
2: वाह वाह
1: वाह
2: वाह
3: उम्र
2: क्या
3: भर
2: बात।
3: इश्क ना करने का इरादा ना करो, नशे
2: नशे
3: हिज्र
2: हिज्र करो
3: करो
2: इतना ज्यादा ना
3: इतना
2: करो।
3: ज्यादा ना करो, इश्क में एक बड़ा एजाज है गिरिया करना।
2: वाह वाह वाह
1: वाह
2: वाह वाह
1: वाह
3: इश्क में
1: वाह
3: एक
2: बड़ा
3: बड़ा एजाज
2: एजाज
3: है
2: है गिरिया
3: गिरिया करना,
2: करना।
3: आँख शर्माए तो फिर शोर शराबा ना करो।
2: वाह वाह
1: वाह
2: वाह वाह क्या बात है
3: आँख
2: भाई।
3: शर्माए तो फिर शोर शराबा ना करो। और एक मतलब यूँ देखें कि बहुत से नूर को देखा था, अंधे हो गए थे हम।
2: अच्छा,
3: बहुत से नूर को देखा था,
2: अंधे
3: अंधे
2: हो
3: हो
2: गए थे
3: गए थे
2: हम।
3: हम। वो चेहरा था खुदा का, उसके बंदे हो गए थे हम।
1: वाह
2: अच्छा, वाह
1: वाह
2: वाह वाह
3: वो चेहरा था खुदा
2: खुदा का,
3: का,
2: उसके
3: उसके
2: बंदे हो
3: उसके
2: गए।
3: बंदे हो गए थे हम। हमारा गुस्ल करना खाक में बेहद ज़रूरी था।
2: हमारा गुस्ल करना खाक में बेहद ज़रूरी था।
3: हमारा गुस्ल करना खाक में बेहद ज़रूरी था, ज़्यादा ज़िंदगी जीने से गंदे हो गए थे हम।
2: अच्छा
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: बहुत खूब,
2: क्या
1: अच्छा
2: कहने हैं
1: शेर है।
2: मुमताज़ भाई।
3: हमारा गुस्ल करना खाक में बेहद ज़रूरी था, ज़्यादा ज़िंदगी जीने से गंदे हो गए थे हम। खामोशी ऐसा सच थी जिसने गूंगा कर दिया हमको।
2: खामोशी ऐसा सच थी जिसने गूंगा कर दिया।
3: खामोशी
2: क्या
3: ऐसा सच थी जिसने गूंगा कर दिया हमको, बहुत बकबक से झूठों के पुलंदे हो गए थे हम।
2: क्या बात,
3: वाह
2: वाह
3: वाह
2: वाह
3: बहुत बकबक से झूठों के पुलंदे हो गए थे हम। और एक मतलब चंद शेर देखें। क्या साल गिरा कैसी खुशी, कैसा बड़ा दिन। क्या साल गिरा
2: कैसी खुशी
3: कैसी
2: कैसा
3: खुशी,
2: बड़ा
3: कैसा
2: दिन।
3: बड़ा दिन, वादे की तरह टूट गया आज मेरा दिन।
2: वाह
1: वाह
2: वाह वाह
3: क्या साल गिरा कैसी
2: कैसी
3: खुशी,
2: खुशी
3: कैसा
2: कैसा
3: बड़ा
2: बड़ा
3: दिन,
2: दिन।
3: वादे की तरह टूट
2: टूट
3: गया
2: गया आज
3: आज
2: मेरा दिन।
1: मेरा
3: मेरा दिन। हालांकि उसे रात की ख्वाहिश भी बहुत थी, हालांकि उसे रात की ख्वाहिश भी बहुत थी, वो जब भी मिला हमने उसे नज़र किया दिन।
2: वाह वाह
1: वाह
2: वाह
3: हालांकि
2: क्या
3: उसे
2: कहने,
3: रात की
2: क्या
3: ख्वाहिश
2: बात।
3: भी बहुत थी, वो जब भी मिला हमने उसे नज़र
2: नजर
3: किया
2: किया दिन
3: दिन।
2: क्या कहने।
3: मुझ जैसी अधूरी है मुलाकात की एक शाम,
2: आह
3: मुझ जैसी अधूरी है
2: मुलाकात
3: मुलाकात
2: की
3: की
2: एक
3: एक
2: शाम।
3: शाम, एक याद का हिस्सा है कोई भूला हुआ
2: क्या
3: दिन।
2: बात। अरे वाह
1: वाह
2: वाह वाह वाह
1: वाह
2: क्या
1: वाह
2: उम्दा
3: एक
2: गजल भाई।
3: याद का हिस्सा है कोई भूला हुआ दिन, वो रात के यूं मेरे बदन से हुई रोशन।
2: वो रात के यूं
3: वो रात के यूं मेरे बदन से हुई रोशन, सूरज की तरह सुबह को निकला हो नया दिन।
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह वाह
1: वाह
3: वाह
1: वाह बहुत खूब,
2: क्या बात
3: सूरज
2: भाई।
3: की तरह सुबह को निकला हो नया दिन। और एक शेर यूं है कि पूछा कि कोई रात के इस दोस्त का दुश्मन, पूछा कि कोई रात के इस दोस्त का दुश्मन, सोचा रहूं चुप फिर बड़े गुस्से में कहा
2: दिन।
3: दिन।
2: अरे
3: वाह
2: वाह
3: क्या
2: वाह
3: बात है।
2: वाह वाह
3: पूछा कि कोई रात के इस
2: क्या
3: दोस्त का
2: बात,
3: दुश्मन,
2: क्या बात भाई,
3: सोचा रहूं चुप फिर बड़े गुस्से में कहा दिन।
1: बहुत अच्छा,
3: और
2: क्या
3: एक
2: बात।
3: मतलब और चंद शेर यूं है कि खाक होकर कसरते तामीर का गम है मुझे।
2: वाह वाह
3: खाक होकर कसरते
2: कसरते
3: तामीर
2: तामीर का
3: का
2: गम
3: गम
2: है
3: है
2: मुझे।
3: मुझे, शहर की तौसी की तासीर का गम है मुझे।
2: वाह वाह
3: खाक
2: वाह
3: होकर कसरते तामीर का गम
2: दिख
3: है
2: गम है
3: मुझे,
2: मुझे।
3: शहर की तौसी की तासीर का गम है मुझे, इसलिए रांझे का गम है हीर के गम से बड़ा। इसलिए
2: रांझे
3: रांझे
2: के
3: का गम
2: गम है
3: है
2: हीर
3: हीर
2: के
3: के
2: गम
3: गम
2: से
3: से
2: बड़ा।
3: बड़ा, चीख कर कहता था रांझा, हीर का गम है मुझे।

0: अच्छा
1: वाह वाह,
2: इसलिए रांझे का गम है हीर के गम से बड़ा, चीख कर कहता था रांझा हीर का गम है मुझे। और बतौर खास शेर देखें, मीर के शेरों को पढ़कर किस कदर रोता हूँ मैं, मीर के शेरों को पढ़कर किस कदर रोता हूँ मैं, इस कदर रोता हूँ जैसे मीर का गम है मुझे।

0: इस कदर तहजीब की तस्खीर का गम है मुझे।
1: अच्छा है भाई, वाह वाह
2: वाह, बहुत अच्छा शेर है,
0: बहुत शुक्रिया। जंगलों में दंदनाते शहर दाखिल हो गए, इस कदर तहजीब की तस्खीर का गम है मुझे। और एक शेर अलग अंदाज का, नादिर तानीस वो मर्दाने दिल्ली क्या हुए।
1: अच्छा।
0: नादिर तानीस वो मर्दाने दिल्ली क्या हुए, बोल उस गुम कर दए तस्कीर का गम है मुझे। नादिर तानीस, शुक्रिया। वो मर्दाने दिल्ली क्या हुए, बोल उस गुम कर दए तस्कीर का गम है मुझे। और एक शेर है यूं, रूहो बदन को छोड़िए कुछ काम का नहीं रहा, रूहो बदन को छोड़िए कुछ काम का नहीं रहा, अब मेरी चश्मे खाक में नूर खुदा नहीं रहा। रूहो बदन को छोड़िए कुछ काम का नहीं रहा, अब मेरी चश्मे खाक में नूरे खुदा नहीं रहा। किसको सुनाऊं अपना गम, किसको दिखाऊं अपने जख्म, किसको सुनाऊं अपना गम, किसको दिखाऊं अपने जख्म, कोई मसीहा दहर में इंसान का नहीं रहा। कोई मसीहा दहर में इंसान का नहीं रहा। उसने तो मेरी खाक को रखा हुआ है चाक पर,
1: उसने तो मेरी खाक को रखा हुआ है चाक पर।
0: वो क्या करे मैं जब किसी सूरत में आ नहीं रहा। उसने तो मेरी खाक को रखा हुआ है चाक पर, वो क्या करे मैं जब किसी, उसने तो मेरी खाक को रखा हुआ है चाक पर, वो क्या करे मैं जब किसी सूरत में आ नहीं रहा। और आखिरी शेर देखें, तूफान रात शहर को ऐसा तहस नहस किया, तूफान रात शहर को ऐसा तहस नहस किया, सुबह को अब्र खुल गया शोरे हवा नहीं रहा। तूफान रात शहर को कैसा तहस नहस किया, सुबह को अब्र खुल गया शोरे हवा नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जनाब अहमद नदीम साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें।
3: एक मतला और एक शेर
0: जी आता,
3: मुलाहिजा कीजिए कि ऐसा नहीं कि पहले कभी आशना न था, ऐसा नहीं कि पहले कभी आशना न था, शायद मैं अपने आप से अब तक मिला न था।
1: वाह,
3: तुम थे तुम्हारी तरह कई और भी तो थे।
0: वाह, तुम दा क्या मिसरा है।
3: तुम थे तुम्हारी तरह कई और भी तो थे, हम थे हमारी तरह कोई दूसरा न था।
0: वाह, क्या कहने मुकर्रर।
3: तुम थे तुम्हारी तरह कोई कई और भी तो थे, हम थे हमारी तरह कोई दूसरा न था। एक मतला और दो शेर
0: जी।
3: और मुलाहिजा कीजिए कि सहरा को गुलिस्तान बनाने में लगी है,
1: सहरा को गुलिस्तान बनाने में लगी है,
3: सहरा को गुलिस्तान बनाने में लगी है, ये सिन्फ़ गजल खाक उड़ाने में लगी है।
1: अच्छा, वाह।
3: सहरा को गुलिस्तान बनाने में लगी है, ये सिन्फ़ गजल खाक उड़ाने में लगी है, हर दौर को तारीख बनाती रही जो कौम,
0: हर दौर को
1: तारीख बनाती रही जो
3: हर दौर को तारीख बनाती रही जो कौम, असलाफ के किस्सों को सुनाने में लगी।
1: अच्छा
3: है। हर दौर को तारीख बनाती रही जो कौम, शुक्रिया। असलाफ के किस्सों को सुनाने में लगी है, एक तेरे ही कहने से तुझे भूला हूँ लेकिन,
1: तेरे ही कहने से तुझे भूला हूँ लेकिन,
3: तेरे ही कहने से तुझे भूला हूँ लेकिन, एक उम्र मेरी जान भुलाने में लगी है।
1: वाह वाह वाह।
3: एक तेरे ही कहने से तुझे भूला हूँ लेकिन, एक उम्र मेरी जान भुलाने में लगी है। एक मतला और दो शेर और, हर एक सदा पे यही सोच कर दीवाने गए,
1: हर एक सदा पे यही सोच के दीवाने गए,
3: सदा पे यही सोच कर दीवाने गए, कोई तो नाम हमारा था जो पुकारे गए।
1: वाह,
3: बड़ा कमाल था कुछ उनके साथ चलना भी।
1: क्या बात,
0: बड़ा कमाल था,
3: बड़ा कमाल था कुछ उनके साथ चलना भी, तो एक फासला हम दरमियां बनाते गए।
1: वाह वाह वाह।
3: और शेर सुने की, उतारो हुस्न का सदका कि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे चाहने वाले भी खूब चाहे गए।
1: क्या कहने, क्या
3: उतारो हुस्न का

0: और अच्छा
1: चाहता कि सिर्फ तुम ही नहीं,
2: वाह वाह वाह,
1: तुम्हारे चाहने वाले भी खूब चाहे गए।
3: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद नदीम साहब को, भी हम सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया सामईन। आज की इस महफिल का अख्तिताम यहाँ होता है। हमारे साथ के आज जो शोराए कराम यहाँ शामिल थे उनमें जनाब शाहरुख अबीर साहब, मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा, जनाब अहमद नदीम साहब और मैं मुमताज़ इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: सामईन, अभी आप मुशायरे की इस खूबसूरत महफिल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब मुमताज़ इकबाल और तरतीब पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। मुशायरों की ऐसी ही खूबसूरत महफिल लेकर आपकी खिदमत में हम आइंदा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म मिशन कश्मीर से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:00 बजकर पूरे 35 मिनट हुए हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
2: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
1: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।

0: प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
4: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
1: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
0: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
2: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
0: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
3: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
5: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।

कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहन और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Games. The Prime Minister congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57-kilogram freestyle wrestling event. He expressed happiness that 6 decades later, India's back on the podium in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event at the Asian Games. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow, IMD said. Conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbh, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior, Karnataka during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India's economic strength and resilience have been built over past decade through fiscal prudence, infrastructure investment and consistent reforms. Union Minister Amit Shah says full implementation of the Bharatiya Nyaya Sanhita will transform India's criminal justice system. In Andhra Pradesh, 4 workers killed in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City. At the Asian Games, Indian men's hockey and cricket teams win gold medals. Wrestler Aman Sehrawat, archer Kumkum Mohod and golfer Pranavi Urs also clinch gold. India win 5 gold, 2 silver, 2 bronze medals today, climb to 4th place in medal tally with 85 medals, including 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के मुकम्मल नफाज से भारत के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में यकसर तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में एक निजी सनती यूनिट में बॉयलर फटने के हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने सोने के तमगे जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। इसके साथ ही भारत सोने के 21 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर तमगों की फहरिस्त में 4th मकाम पर पहुंच गया है। और अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, बैंककारी इस्लाहात, खिदमात की फराहमी के बेहतर निज़ाम और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। नई दिल्ली में मुनक़िदा 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ने GST, दिवालिया और दिवालियापन से मुतअल्लिक ज़ाबते और 4 लेबर कोड्स के ज़रिए मुल्क के इक्तसादी निज़ाम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 4 बरसों के इक्तसादी सतह पर नामसायद हालात का सामना मजबूत बुनियादी इक्तसादी हालात के साथ किया है। उन्होंने इस ज़िम्न में माली साल 2026-27 की पहली समाही में हकीकी GDP की 7.8% शरह तरक्की का जिक्र किया। वजीर ख़जाना ने कहा कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर कर्ज में इजाफे के रुझान के बरअक्स भारत के मजमूई सरकारी कर्ज का तनासुब GDP के मुकाबले में 2026 में 83.4% से कम होकर 2031 में 77.7% रहने का इम्कान है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मवेशी परवरी के शोबे के लिए एक मुकम्मल इको निज़ाम तैयार कर रही है। इसके तहत गोबर से बायोगैस और नामियाती खाद तैयार करने से लेकर डेयरी मसनूआत की प्रोसेसिंग और उन्हें मंडी तक पहुंचाने की सहूलत फराहम की जा रही है, ताकि देही मईशत को नई रफ्तार फराहम की जा सके। भोपाल में रियासती सतह के गौपालक सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मवेशी पालने वाले अफराद इमदाद

चीन की सदारत की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और रूस के दरमियान कसीर जहती तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इनमें तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, राबिताकारी, सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबी जैसे शोबे शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए भारत की हिमायत को उजागर किया।

क्लासिकी पाली और क्लासिकी प्राकृत जबानों के लिए कायम किए जाएंगे। इन मराकज़ का मकसद इन जबानों पर आला सतह की तहकीक, कदीम जबान व अदब को डिजिटल शक्ल में महफूज करना और इन जबानों के बारे में मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली ज़िले में आवाम की हिफाजत, अमनो अमान और गाड़ियों की बिला रुकावट आमद व रफ्त को यकीनी बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की दफ़ा 163 नाफिज है। एक अवामी नोटिस में नई दिल्ली के DCP ने कहा कि गैर मजाज इज्तिमाआत, अवामी तकारीर, नारेबाजी, जुलूस, मुजाहरे, धरने और दिगर मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। पुलिस ने मजीद कहा कि आज के लिए किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई है और न ही ऐसे किसी एहतजाज के बारे में नई दिल्ली ज़िला पुलिस को पहले से कोई इत्तला मौसूल हुई है। दिल्ली पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो मस्कूरा हुक्म की सख्ती से पाबंदी करें और पुलिस के साथ ताउन करें। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी के हमराह हरियाणा के तमाम BJP अरकान असम्बली ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अहम मौजूदात पर बामानी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान आवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत करने और अवामी फलाह बहबूद की खातिर मजीद मौसर अंदाज में काम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने 50 ऐसे मुल्कों की फहरिस्त जारी की है जिनके शहरियों को सियाहती वीज़ा और कारोबारी वीज़ा के लिए $20,000 तक वीज़ा बॉन्ड देना होगा। भारत को इससे मुस्तस्ना रखा गया है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे जुनूबी एशियाई ममालिक इसमें शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कल इन मुल्कों की एक तब्दील शुदा फहरिस्त जारी की जिनके शहरियों को B1-B2 वीज़ा के लिए क्वालिफाई करने पर मालियाती बॉन्ड जमा करने होंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा कि अगले 2 दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बाकी इलाकों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक के शुमाली अंदरूनी इलाकों से जनूब मगरबी मानसून के ख़त्म होने का इम्कान है। भारत ने जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं।

भारत ने जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सोने के 5 चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। हॉकी में भारत ने मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता और 2028 में लॉस एंजलिस में मुनक़िदा होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने T20 फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मर्दों के 57 किलोग्राम के जुमरे में शुमाली कोरिया के आलमी चैंपियन चुंग सॉन्ग हान को फाइनल में 11-7 से शिकस्त दी। खवातीन के इनफरादी तीरंदाजी मुकाबले में कुमकुम महोद ने सोने का तमगा जीता। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने खवातीन के इनफरादी खिताब में एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने भी टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। पहलवान अंतिम अंगल ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। दीपक पुनिया ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे में मंगोलिया के गैन कुआंग बतार को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया है। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत तमगों की फहरिस्त में भारत चौथे मकाम पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद 85 हो गई है, जिसमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये कामयाबी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि मर्द और खवातीन दोनों टीमें चैंपियन हो गई हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुलांपुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अलावी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। केएल राहुल ने बगैर आउट हुए 87 गेंदों में शानदार 129 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 92 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। अंशुल कंबोज ने अपना पहला एक रोजा बैन अलावी मैच खेला। इसी तरह नीतीश रेड्डी की टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद सिराज भी सीरीज में अपना

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने

0: जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं के सामने चुनौती विनियमन और विकास में से किसी एक को चुनने की नहीं है, बल्कि ऐसे नियम विकसित करने की है जो नवाचार, प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ावा देते हुए जोखिमों का प्रबंधन करें। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि 3 लोग भारतीय इलाके में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। हालांकि कल तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे वेस्टइंडीज ने 48 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ 4th स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन यस्टरडे सेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस हैव बीन बिल्ट ओवर द पास्ट डेकेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग रिफॉर्म्स, इम्प्रूव डिलीवरी मैकेनिज्म्स एंड कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। एड्रेसिंग द 5th कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली, मिसेस सीतारमन सेड

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा सा गीत और लगन मोरे मन की बाबुल फिल्म से शानदार रचना, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में शानदार रचना, 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है, संगीत नौशाद का था। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार।

सुनवाते हैं एक और सुंदर और बहुत ही खूबसूरत मस्ती भरा गीत लेकर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, लेके पहला पहला प्यार फिल्म CID से आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ में शानदार रचना। 1958 प्रदर्शित फिल्म रही है CID और गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है OP नैयर ने। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मस्ती भरा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। जी हाँ दोस्तों, एक गीत आ रहा है, बड़ा ही प्यारा गीत है और ये बड़ा ही मस्ती भरा गीत है। एगो एगो ये क्या हो गया। जी हाँ, आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रोमांटिक खूबसूरत गीत है। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म 1961 प्रदर्शित फिल्म रही है, फिल्म बॉयफ्रेंड से। जी हाँ दोस्तों, सुनवाते हैं शानदार मस्ती भरा खूबसूरत रोमांटिक गीत।

0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
2: जी हाँ दोस्तों, आई गो ये क्या हो गया। वाकई बहुत ही मस्ती भरा रोमांटिक लाजवाब गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉयफ्रेंड से। सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना। ये रचना आ रही है बड़ी ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत रचना है, यारो सूरत मेरी। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत शायद हमने प्ले कर दिया है, और ये रात बड़ा ही सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है, और ये रात भीगी भीगी ऑल टाइम फेवरेट बेहतरीन खूबसूरत गीत है ये, और इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। ये रात भीगी भीगी फिल्म चोरी चोरी से 1958 प्रदर्शित फिल्म रही है, माफ़ कीजिएगा 56 1956 प्रसारित, जी हाँ 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है, और फिल्म चोरी चोरी ये रात भीगी भीगी गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, वो दिन याद करो फिल्म हमराही से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शानदार रचना। यह हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, और यह गीत आ रहा है बड़ा ही प्यारा। जी हाँ, ये गीत ऐसे गीत होते हैं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक से एक बेहतरीन सुंदर लाजवाब रचनाएं होती हैं। अब एक और गीत आ रहा है, गुजरे हैं आज इश्क में। जी हाँ, बहुत ही प्यारी रचना है, दिल दिया दर्द लिया फिल्म से, जो 1966 प्रदर्शित फिल्म रही है, रफ़ी की आवाज़ में शानदार रचना। गीत के प्रोडक्शन के हैं और संगीत से सजाया है नौशाद ने। आइए सुनते हैं ये एक और सुंदर रचना।

साथियों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम गीत सुनहरे के अंतर्गत शानदार रचना। साथियों, आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम खूबसूरत रचना आ रही है और छोड़े जा रहा हूँ इस सुंदर गीत के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, गीत बहार कार्यक्रम अब माफ कीजिएगा, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। समय 2 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।

0: In quarter one, gross NPAs of banks are at multi-decadal low.
1: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि 3 लोग भारतीय इलाके में घुस आए थे। सीमा सुरक्षा बल BSF की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने मुंबई की कंपनी हंसर बायोटेक एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रबंधकों और जमानतियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस धोखाधड़ी से पंजाब नेशनल बैंक PNB को कथित तौर पर 93,44,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को मुंबई में कंपनी के प्रबंधकों से संबंधित कई स्थानों पर तलाशी ली। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। एशियाई खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रणवी ओट्स को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके अलावा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
4: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter one

0: अरे इसीलिए तो कह गए हैं, जति सती कर्म ही गति, आए मिले जो संग पिशाच का, सदा मिले बुरी मति बुरी मति।
1: But where is Bhanumati?
0: भानुमती, अरे भानु

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: In quarter one, gross NPAs of banks are at multi-decadal low.
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण

0: इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए। और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ. काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि 3 लोग भारतीय इलाके में घुस आए थे। सीमा सुरक्षा बल BSF की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। एशिया खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रणवी ओट्स को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके अलावा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। जापान में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms, and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the 4 labor codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
3: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low. And foreign exchange reserves stand about $766 billion.
2: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल में। सबसे पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।

कभी कभी कोई गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता, सीधे दिल में उतर जाता है। उसकी धुन में जैसे हमारी कोई पुरानी याद छुपी होती है। तो आइए ऐसी ये खूबसूरत धुन के साथ कुछ पल अपने नाम करते हैं रात के 3:17:36 पर सोनू निगम जी की आवाज़ में।

मोहब्बत में लफ्ज़ कम पड़ जाएं तो अक्सर संगीत काम आता है। जो बात हम कह नहीं पाते उसे कोई गज़ल बड़ी खूबसूरती से कह देती है। सुनिए और महसूस कीजिए।

कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तो नहीं होता, फिर भी उन्हें सुनते ही लगता है जैसे ये आवाज़ हमारी ही कहानी सुना रही है। शायद यही तो है संगीत का जादू।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें बहुत छोटी होती हैं, मगर उनकी याद बहुत लंबी, और कभी कोई गीत उसी याद का पता बन जाता है। चलिए आज ऐसी ही याद के नाम ये नगमा सुनते हैं, लता जी की खूबसूरत आवाज़ में।

कहते हैं खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और जब खामोशी को सुर मिल जाए तो ये खूबसूरत गज़ल जन्म लेती है। और जब आवाज़ हो जगजीत सिंह की तो जाहिर सी बात है कि दिल उन पुरानी यादों में कहीं खामोश सा हो ही जाता है।

हर गीत की अपनी एक कहानी होती है। किसी गीत में इश्क है, किसी में इंतज़ार, किसी में जुदाई और किसी में ज़िंदगी से मिली एक छोटी सी खुशी। अगला गीत क्या कहते हैं ये आपको बताएंगे। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब इस नगमे को आप पूरे एतबार के साथ सुनेंगे भूपेंद्र सिंह जी की आवाज़ में।

इश्क अगर मुकम्मल हो तो खुशी देता है, और अधूरा रह जाए तो शायरी। शायद इसीलिए दुनिया की इतनी खूबसूरत गज़लें अधूरी मोहब्बतों से निकलती हैं। सुनते हैं एक और खूबसूरत एहसास।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज हमारे कलाकार हैं वाणी जयराम जी, राजकुमार भारती जी और साथी।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। प्रस्तुत है कुछ ही देर में कार्यक्रम, कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार हैं TV मणिकंदन और रागम पूर्वी कल्याण के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 4:53 और 37 सेकेंड्स हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और आइए आज अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति का विवरण आपको दे देते हैं। पाँच बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और उसके बाद 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें और आज का विषय रहेगा योग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति का संगीत हिंदी फिल्मों से। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। बांसुरी पर राग नाथ भैरव लेकर आज हमारे साथ रहेंगे रोहित प्रसाना जी। 6:00 प्रस्तुति रहेगी हिंदी समाचारों की और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। 6:40

0: मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, दया और मानवता पर मदर टेरेसा जी के विचार। 6:45 पर आप अयोध्या कांड का भाग 68वां सुन सकते हैं रामचरितमानस में। 6:55 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे प्रस्तुति रहेगी हिंदी समाचारों की और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। सात बजकर 10 बजे की प्रस्तुति रहेगी कार्यक्रम संगीतिका की। 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग आपके लिए रहेगी। 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, समाचार प्रभात में। और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे मॉर्निंग न्यूज में। 8:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू में समाचार और 8:45 पर कार्यक्रम रहेगी आपके लिए साहित्य की। हिंदी आलोचना रहेगी रामचंद्र शुक्ल के से राम विलास शर्मा जी तक की। 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
2: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
1: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ. काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

0: इसराइल की प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन मच्छार को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanism and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27. Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan in Bhopal yesterday.
2: After the full implementation of the law, our criminal justice system will become the most modern criminal justice system in the world. Within this law, we have incorporated science, online hearings, video conferencing, provisions for FSL, and linked many modern scientific advancements. There are arrangements for protection against all these issues, including women's safety, missing children, terrorism, and lynching.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartrihari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from lower house and 10 from upper house. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Ulaka.

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते

हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है, हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी कि प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है।